सुप्रभात। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 25 जून साल 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो चुके हैं।

0: आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन।
1: आत्मबुद्धि प्रसाद से प्राप्त होने वाला शांति सुखी वो सच्चा ध्येय है, परंतु आध्यात्मिक सुखी यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है, और इसलिए सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर तुमसे न ये कहता है कि कर्म करो और न ये कहता है कि उनका त्याग कर दो। ये तो सब प्रकृति की क्रीड़ा है और बंधन मन का धर्म है। इसलिए जो मनुष्य सम्बुद्धि से अथवा सर्वभूतांतरात्मा होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। एकमात्र कर्म ही हमारा मार्ग प्रदर्शक होना चाहिए। हमारा कर्म निष्काम और पूरी तरह से सोचा समझा हुआ हो। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि प्रभुसत्ता किसे मिलेगी। यही पर्याप्त है कि हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ सर्वोत्तम ढंग से कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। यही निष्प्रही धर्म है। जो कर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभ कर्म है, और जो कर्म उसके प्रतिकूल हो, वही पाप अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य शब्दों का ही अधिक उपयोग करते हैं। आपके धर्म का सिद्धांत है, आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। सब कर्म एक से ही हैं। दोष केवल कर्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में। इसलिए बुद्धि को कम करके यदि सब कर्म किए जाएं, तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुखमय हैं, अर्थात जन्म मरण के भव चक्र से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिए मन निष्काम और विरक्त करना चाहिए, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहने वाले आत्मस्वरूपी नित्य परम ब्रह्म में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है। इस आत्मनिष्ठ स्थिति में ही सदा निमग्न रहना संन्यास धर्म का मुख्य तत्व है। संसार में कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्मफल उतनी शीघ्रता से नहीं मिलता जितनी शीघ्रता से कहा जाता है। हो सकता है इस कर्मफल से लाभान्वित हम हो पाए या न हो पाए, परंतु इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य नियम उन सभी श्रेष्ठ बातों का समुच्चय है जो अध्यात्म शास्त्र यथार्थ कर्म और निष्काम उपासना से परिपूर्ण जीवन से प्राप्त होती है। इस सार्वभौमिक नियम के अनुपालन से मानव संप्रेषित आदर्शों की प्राप्ति होती है। कर्मयोग इस संसार को निरर्थक नहीं मानता। कर्मयोग चाहता है कि आपके उद्देश्य स्वार्थ परता और भोग वासना से अछूते हों। यह व्यवहारिक वेदांत का सच्चा दृष्टिकोण और कुंजी है। कर्मयोग और कुछ नहीं वरन धर्म या भौतिक अथवा आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त करने की प्रेरक पद्धति है। हमें याद रखना चाहिए कि कर्मयोग हमारी पवित्र वंश परंपरा है जो उस अति प्राचीन स्मरणातीत काल से चली आ रही है, जब हम भारतीय यश और समृद्धि के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित थे।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। वाचन स्वर थे विनय ध्यानी के। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, जिसकी शुरुआत करते हैं मातृवंदना से।

जो विष को भी अपने भीतर रोक ले और दुनिया को अमृत दे दे, वही शिव है। शिव केवल देवता नहीं, जीवन को संतुलित रखने की कला है।

जब मन में करुणा, वाणी में सत्य और कर्म में सेवा आ जाती है, तब ईश्वर किसी मूर्ति या तस्वीर में नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है।

ईश्वर किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है, वह प्रेम, सत्य और करुणा के रूप में हर हृदय में निवास करता है।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायन स्वर थे सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंद की। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: दोपहर 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात्रि 9:15 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनना ना भूलिएगा सुबह 8:30 पर। सुबह 7:30 पर शैल संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बहादुर सिंह के गाए जौनसारी लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे मोहन सिंह डोलिया के गाए कुमाऊनी लोकगीत सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा शीना भटनागर के स्वर में भजन। कार्यक्रम महिला जगत में आज आप सुनेंगे महिलाओं की ताकत छोटी छोटी बचत विषय पर फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी। समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत में आज आप सुनेंगे चिट्ठी पत्री। समय रहेगा शाम 5:45 पर। शाम 7:00 किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे। सुबह 9:00 आप सुनिएगा आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। शाम 7:50 पर आरएनयू देहरादून का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 समय रहेगा स्वास्थ्य चर्चा का। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 11 से दोपहर 12:00 तक और आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात्रि 10:00 से 11:00 तक। कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे की विजय गाथा। सदाबहार फिल्मी गीत आप आनंद उठा सकते हैं सुबह 9:05 पर और गाने नए तराने का आप आनंद उठा सकते हैं दोपहर 3:02 पर। तो श्रोताओं ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 25वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानाम् आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासम क्षेत्रीय संपर्कम औद्योगिक विकासम तथा जनकल्याणम वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलंबित विषयानां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्यतावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा पञ्चसप्तत्युत्तर ऊनविंशतितम वर्षस्य जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य 30 दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदातृसूचीनां विशेषगहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रममभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम् आम आदमी पार्टी इति दलं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदातृसूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु झारखण्ड महाराष्ट्र ओडिशा उपहिमालय पश्चिमबङ्ग तेलङ्गना तटीय कर्नाटक कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारं अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानम् अपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं नभ भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू संप्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today, marking the completion of 50 years since the imposition of the emergency. The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipu Lake Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. Trade officer and Dharchula Subdivisional Magistrate Ashish Joshi said 26 trade passes have been issued, which include 17 traders and 9 helpers. A customs office has also been opened at Gunji to facilitate the process. Mr. Joshi informed that traders have already stored their goods in warehouses at villages near the Lipu Lake Pass. The India-China border trade originally resumed in 1991 but was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic. House-to-house enumeration of Special Intensive Revision SIR of electoral rolls is set to start in Delhi from the 30th of this month. In this regard, the Chief Electoral Officer, CEO of Delhi, chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. The CEO office said representatives of various political parties, including Bharatiya Janata Party, Aam Aadmi Party and Indian National Congress, attended the meeting. The CEO informed them about the main objective of the SIR: no eligible citizen is left out while no illegible person is included in the electoral roll. The Department of Rural Development will organize a national workshop on leveraging AI in rural development in New Delhi today. The Ministry of Rural Development said that the day-long event will serve as a collaborative platform to align cutting-edge technological innovations with the grassroots developmental needs of rural India. Key stakeholders like Niti Aayog, the India AI Mission, leading industry consultancies, technology startups, academia and knowledge partners will deliberate on the transformative potential of artificial intelligence in accelerating rural development outcomes. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections. Mr. Modi received a call from his Armenian counterpart yesterday. Prime Minister Modi thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. In a social media post, Prime Minister Modi said they reaffirmed the shared commitment to further strengthen the warm and multifaceted partnership between India and Armenia across key sectors. In men's cricket, a two-match multi-day series between India A and Sri Lanka A will begin at Gore International Stadium in Sri Lanka this morning. The match will begin at 10 a.m. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 हो चुके हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

अभी आप सुन रहे थे ड्रीम गर्ल फिल्म से ये खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है दिल दे के देखो, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म में संगीत दिया है उषा खन्ना ने और शब्द रचना मजरू की।

0: इसी गीत के साथ शीर्षक गीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प है। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 31 अगस्त तक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प बन चुका है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब हम कर सकते हैं और हम करेंगे की भावना विकसित हुई है, जिसने विकास और सुशासन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहले जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का मुख्य ध्यान केवल बीमारियों के उपचार पर केंद्रित था, वहीं अब उपचार के साथ साथ बीमारी की रोकथाम आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र मंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में 124 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किया गया है। इसके अलावा अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 नए मेडिकल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और मजबूत होगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू कराने और मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड की स्टेट मिशन निदेशक रीना जोशी ने बताया कि 1 सितंबर 2026 से केवल उन्हीं अनुबंधित अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जाएगा, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक सभी आवश्यक मानकों का पालन कर लिया होगा। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के भीतर आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पताल प्रोत्साहन राशि के पात्र नहीं होंगे। वित्त सचिव एवं उत्तरकाशी के प्रभारी सचिव डॉ. वी षणमुगम ने जिले में संचालित स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें जिले में संचालित विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने रिप परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन वे साइड अमेनिटीज का जायजा लिया और इसे ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय उद्यमिता तथा रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता पूर्वक ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड डुंडा के बीरपुर स्थित सांची ग्राम संगठन द्वारा संचालित हिमालय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एवं उलन ग्रोथ सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार हस्तशिल्प और ऊनी उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर षणमुगम ने चिनारसौड़ स्थित मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण कर मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और विपणन गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मिलेट आधारित उत्पाद किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को स्वरोजगार, उद्यमिता विकास और स्थानीय उत्पादों के विपणन से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी समन्वयन के निर्देश दिए ताकि जिले में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
1: उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने और सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों और यात्रियों की विभिन्न स्थानों पर नियमित जांच की जा रही है। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और चारधाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने आमजन से भी किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उन्होंने दुग्ध उत्पादन, विपणन, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। श्री चौधरी ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विस्तार, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मनरेगा की समीक्षा के दौरान ग्रामोद्योग मंत्री ने 1 जुलाई से कार्य शुरू होने से पहले सभी लंबित भुगतानों का निस्तारण करने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ गुरु के नाम अभियान चलाने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने और किसी भी जरूरतमंद को योजना से वंचित न रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा कृषि भूमि संरक्षण के लिए घेरबाड़ योजना संचालित करने, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन में सुधार लाने तथा लखपति दीदी योजना के तहत अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के अनुसार स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों के लिए समर्थ पोर्टल पर प्रवेश पंजीकरण अब 30 जून तक किया जा सकेगा। वहीं बीए एलएलबी, बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 जुलाई निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के देहरादून में आयोजित कार्यक्रम की खबर पर अमर उजाला ने लिखा है, विकसित भारत तभी सार्थक जब हर नागरिक हो स्वस्थ। देहरादून लाल पुल हादसे के बाद परिवहन संबंधी नियमों को सख्त कर दिया गया है। दैनिक जागरण इस खबर पर लिखता है, बसों की होगी पड़ताल, चालकों की मेडिकल स्क्रीनिंग। कोलकाता में निर्माणाधीन हादसों के समाचार को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, दुखद, कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरा, 5 लोगों की मौत। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स ने लिखा है, कोलकाता में मजदूरों पर टूटी मौत। प्रदेश में एकल महिला स्वरोजगार को लेकर दैनिक जागरण लिखता है, 2000 महिलाओं को मिलेगा एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प है। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 31 अगस्त तक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य। खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए और कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं।

0: ईसाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाए,
0: झगड़ा मिटाए,
1: विश्वास जगाए।
2: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
3: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
2: सच में? क्या क्या है उसमें?
3: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी, अधिकार भी।
4: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शल संगीत के कार्यक्रम में बहादुर सिंह के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: इसी के साथ शल संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपके साथ अभी आप सुन रहे थे बहादुर सिंह के स्वर में जौनसारी लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे नानक चंद, ढोल पर ठेचकू, दमाऊ पर हेमचंद, बांसुरी पर नीरज, हारमोनियम पर रजत और रणसिंघा पर प्रेम दास। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमेरिका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत

0: का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजुला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26

0: व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुंचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गयी है।
1: गुंजी में जितनी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू है। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
2: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया, देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed four major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
8: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed four major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
7: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipu Lake Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. According to the Dharchula administration in Pithoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Takla Court market in Tibet tomorrow. More from our correspondent.
0: Dharchula Subdivisional Magistrate and Trade Officer Ashish Joshi said that 26 trade passes have been issued in the first phase, including 17 traders and 9 assistants. A customs office has also been set up at Gunji to ensure the smooth conduct of trade. He said that more than 103 traders have applied for trade passes. In the second phase, another 25 traders will be granted permission. It may be recalled that the border trade between India and China was suspended in 2019-22 due to the COVID-19 pandemic. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
7: Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will launch the country's first hub-and-spoke international air service from Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi, today. After starting of this service by Air India, Varanasi will be the first spoke city to be connected to the airline's international network through Delhi. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the country's constitution was trampled over in 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. A report.
9: On this day in 1975, then President Fakhruddin Ali Ahmad proclaimed a national emergency under Article 352 of Constitution, citing threats arising from internal disturbances. The emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. As a result, the executive assumed sweeping powers and greater central control was exercised over state authority. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. Citizens were denied the right to seek judicial remedies for violations of these rights. Pre-censorship was imposed on newspapers and even the Press Council of India, the statutory body responsible for safeguarding press freedom, was abolished. Constitutional amendments during that period barred the courts from questioning the president's decision to declare emergency and excluded the election of the Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha from judicial scrutiny. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
7: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the two-day meeting to strengthen cooperation in key areas. India's BRICS chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app.
10: A federal judge has permanently barred President Donald Trump's administration from implementing most of his first executive order on elections, including a proposal requiring documentary proof of citizenship for voter registration. The ruling by U.S. District Court Judge Denise Casper in Boston effectively converts a preliminary injunction she issued a year ago, in which she temporarily blocked many of Trump's efforts to overhaul elections into a permanent ban. Judge Casper ruled that the Constitution gives states and Congress, not the president, the authority to regulate elections, adding that Trump's requirements violated the separation of powers. International Atomic Energy Agency has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the US. Talking to reporters in Japan, Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, said they will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The head of the Global Nuclear Watchdog said the agreement signed last week explicitly mentioned that the dilution of Iran's highly enriched uranium would be carried out under International Atomic Energy Agency's supervision. However, Iran's deputy foreign minister said access to its damaged nuclear facilities and nuclear material would only be addressed within the framework of a final deal with the US. In Venezuela, a powerful earthquake of magnitude 7.5 hit Yumari town in the state of Yaraqui this morning. According to the U.S. Geological Survey, this earthquake was the second event in a doublet. Earlier, an earthquake of magnitude 7.2 hit San Felipe in Venezuela, which was the first event in a doublet. This magnitude 7.2 foreshock was followed just 39 seconds later by a larger 7.5 main shock. As per initial reports, multiple structures have collapsed in Caracas, Venezuela. The quake was strongly felt across a large part of Venezuelan territory, triggering alerts in the civil protection systems of the South American nation. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will embark on a three-day official visit to London, United Kingdom, today. The Commerce and Industry Ministry said that the visit comes ahead of the entry into force of the landmark India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and the companion Double Contribution Convention on 15th of next month. During the visit, Mr. Goyal will hold a high-level bilateral meeting with the United Kingdom's Secretary of State for Business and Trade, Peter Kyle. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections. During a telephone call received from Mr. Pashinyan, Prime Minister Modi also thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. The two leaders reaffirmed their commitment to further strengthen the warm and multifaceted partnership between India and Armenia. BJP National President Nitin Naveen has sent specially curated boxes of premium Indian mangoes to diplomats from 82 countries posted in the national capital as part of a unique cultural outreach initiative. The hampers featured four of India's most celebrated varieties, including Gir Kesar, Banganpalli, Dasheri and Banarasi, each known for its distinctive taste, aroma and regional identity. Mr. Naveen sent a personal note conveying greetings and underlining the cultural significance of the fruit, which he described as a symbol of hospitality, friendship and India's agricultural legacy. Moving on to the world of sports, India will take on Bangladesh in the Group A clash of the ICC Women's T20 World Cup at Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Here is more in the sports roundup.
11: Harmanpreet Kaur-led women in blue are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. India began their T20 World Cup campaign with consecutive wins against arch-rivals Pakistan and Netherlands before they lost against South Africa in their last match. On to men's cricket, a 2-match multi-day series between India A and Sri Lanka A will begin in Galle, Sri Lanka this morning. Dhruv Jurel has been entrusted to lead India A side, who finished a brilliant IPL campaign recently for Rajasthan Royals. Next we have from football, where Morocco stormed into the knockout rounds, beating Haiti 4-2 in an entertaining Group C clash in Atlanta this morning. Haiti will exit the tournament frustrated to not have come up with more. Earlier, Vinicius Jr.'s 2 goals helped 5-time World Cup champion Brazil beat Scotland 3-0 in Miami to advance to the knockout stage as the Group C winner. Meanwhile, Qatar got eliminated from the World Cup after a 3-1 defeat against Bosnia and Herzegovina in Seattle. With this win, Bosnia have kept their World Cup campaign campaign alive, relying on other groups to reach the round of 32 for the first time in their history. Earlier today, Ruben Vargas and Johan Manzambi scored to guide Switzerland to a 2-1 victory over Canada in their Group B match in Vancouver. Last, we have from hockey, where a 24-member Indian junior women's squad has been announced for the exposure tour to United Kingdom scheduled for next month. Under its new coach Tim White, the team will play 7 matches across Scotland and England as part of its preparations for upcoming international competitions, including the Junior Asia Cup. The young squad will be led by captain Khedem Shilema Chanu. Chirag Jha from Sports Desk.
12: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan and Goa, Maharashtra, Telangana, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The weather agency has forecast thunder squalls over Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Marathwada, West Madhya Pradesh and West Rajasthan. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Uttarakhand and parts of the northeastern region during the next 2 to 3 days. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
13: Thanks, Shagun. All dailies lead with Iranian President Masoud Pezeshkian's formal invitation to Prime Minister Modi to attend the former Supreme Leader's funeral. Iran invites Prime Minister for Khamenei's July funeral. India yet to decide, writes the Tribune. Shiv Sena UBT to lose Parliament office, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC-1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June, the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
12: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lippu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. US federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: Akashwani Sepe FM 100.5 MHz पर Akashwani का देहरादून केंद्र है. स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हो चुके हैं. आइए अब सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून.

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी दानुपुंडी। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर मनाया जा रहा है। ये दिन उन नाविकों और समुद्री कर्मियों को सम्मान देने के लिए मनाया

तेज तूफान, खराब मौसम और समुद्री जोखिमों के बीच भी वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। समुद्र में कई कई महीने तक रहकर वो वैश्विक व्यापार की निरंतरता को बनाए रखते हैं। तभी तो इस वर्ष की थीम भी है कैरिंग वर्ल्ड ट्रेड कैरिंग द रिस्क, यानी कि विश्व व्यापार को आगे बढ़ाना और उनके जोखिम को भी उठाना। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पर हम सब उनके समर्पण, साहस और मेहनत को सलाम करें, उनका धन्यवाद करें और उनके योगदान को याद करें। कार्यक्रम में बढ़ते हैं, कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों का। आयुष्मान से जुड़े अस्पतालों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य, 31 अगस्त तक ABDM आधारित डिजिटल व्यवस्था लागू करनी होगी। दून में ड्रेनेज सिस्टम का गला घोंट रहा कूड़ा, मुख्य मार्गों से लेकर गली मोहल्ले तक सफाई अधूरी, बारिश में जल भराव और गंदगी फैलने का खतरा। वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म से उत्तराखंड के विकास को मिलेगा नया आधार। निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर राज्य आज से शुरू होंगे प्रवेश। परिवहन विभाग ने चलाया अभियान, 35 वाहनों का चालान 8 सीज। राजाजी में गूंजेगी दहाड़, कार्बेट से 5 बाघ लाने की मिली मंजूरी। और अब खबर मौसम से जुड़ी। राज्य के पर्वतीय जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना। तो ये तो थे आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। 25 जून का दिन क्यों है खास? तो श्रोताओं, आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फरुखद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस अवधि में कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई थी। और साल 2024 में भारत सरकार ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान और लोकतंत्र के दमन की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया था। बात करें 1983 की, तो आज ही के दिन लॉर्ड्स के मैदान पर कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहला एक दिवसीय विश्व कप जीता था। और साल 1947 की बात करें तो आज ही के दिन यहूदी लड़की एनी फ्रैंक की प्रसिद्ध डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पहली बार प्रकाशित हुई थी। 1950 की बात करें तो आज ही के दिन उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था, जिसके बाद कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1975 की बात करें तो पुर्तगाल से मोजाम्बिक देश को आजादी मिली थी। और साल 2004 की बात करें तो आज के दिन यानी कि 25 जून को रूस द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। और साल 2008 की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान व प्लॉट की रजिस्ट्री सस्ती कर उस पर कर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क 8% से घटाकर 5% कर दिया था। और साल 2017 की बात करें तो श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था। तो ये तो था इतिहास के पन्नों पर 25 जून का दिन क्यों है खास। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी की जयंती है। स्वतंत्रता संग्राम में कृपलानी महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगियों में से एक रही थी। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महिला स्वयं सेवक दल का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक समानता और महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक है। भारत की आजादी के बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सुचिता कृपलानी उसमें प्रमुख महिला सदस्य के रूप में चुनी गई। वे संविधान सभा के सचिव के रूप में भी रही। उन्होंने मौलिक अधिकार, महिला समानता और सामाजिक न्याय पर अपने विचार रखे। उनके पति आचार्य जे बी कृपलानी और उन्होंने मिलकर गांधीवादी विचारधारा, ईमानदारी और सेवा को ही अपना धर्म माना था। 1963 की में वे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। कन्या विद्यालयों की स्थापना कराई। किसानों के लिए उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा दिया। सिंचाई योजना शुरू की। वे एक लेखिका भी थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वावलंबन और नैतिक नेतृत्व पर कई लेख लिखे। उनका मानना था कि समाज में समानता तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और आत्मसम्मान मिले। तो आज उनकी जयंती पर आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर।

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकार मदन मोहन की जयंती है।

श्रोताओ, मदन मोहन ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत 1950 में फिल्म आंखें से की थी। इसके बाद उन्होंने अनपढ़, वो कौन थी, हकीकत, मेरा साया, दस्तक, मौसम और लैला मजनू जैसे अनेक फिल्मों में यादगार संगीत दिया। उनकी रचनाओं में आपकी नजरों ने समझा, लग जा गले, नैना बरसे रिम झिम, तू जहाँ जहाँ चलेगा और होके मजबूर मुझे जैसे गीत आज भी अमर हैं। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत, गजल और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। वर्ष 1970 में फिल्म दस्तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का नेशनल फिल्म अवार्ड सम्मान प्राप्त हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उनके निधन के लगभग 30 साल बाद निदेशक यश चोपड़ा ने उनकी धुनों का उपयोग फिल्म वीर जारा में किया और वे धुनें एक बार फिर करोड़ों दिलों तक पहुंची। मदन मोहन का संगीत समय की सीमाओं से परे है। उनकी धुनें आने वाली पीढ़ियों को भी सुरों की मिठास का एहसास कराती रहेंगी। उनकी जयंती पर आज पूरा आकाशवाणी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उन्हीं का ही बनाया ये अगला गीत आप तक पहुंचाकर।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजें हमारा व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और अपने मैसेज लिखने से पहले आपका पत्र मिला ज़रूर लिखें, और जिससे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपकी प्रतिक्रियाएं शामिल की जाएंगी। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है namaskar@gmail.com। तो इसी के साथ अपनी दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष उनियाल एक बार फिर हाजिर हूँ जिले की चिट्ठी के साथ। इस बार चिट्ठी है चंपावत जिले की और आलेख है चंपावत जिले से हमारे जिला संवाददाता चंद्र बल्लभ ओली का। जून का महीना समाप्त होने को है, ऐसे में चंपावत जिले की चिट्ठी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों और जनहित से जुड़ी खबरों का एक सारगर्भित विवरण आपके लिए लेकर आई है। ये महीना चंपावत के लिए स्वास्थ्य, योग, युवा, युवा सशक्तिकरण, सुशासन, धार्मिक आस्था और जनकल्याण योजनाओं की दृष्टि से विशेष रहा। आइए एक नजर डालते हैं चंपावत जिले की हाल खबर पर। चंद राजाओं की राजधानी व न्यायकारी देवता गोलजू की भूमि चंपावत मैदानी, तराई, भाबर व पर्वतीय क्षेत्रों का एक ऐसा संगम है जो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आदर्श जिले के रूप में विकसित हो रहा है। चंपावत में मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जैसी तकनीकी के माध्यम से जिले के चौमुखी विकास की जानकारी मात्र एक क्लिक में उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि इसे मॉडल जिले के रूप में पेश कर उत्तराखंड को देश का आदर्श प्रदेश बनाया जा सके। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा में प्रदेश स्तरीय मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बनबसा मिनी स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान, योग साधक, छात्र छात्राएं, युवा, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सामूहिक योगाभ्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। योग नीति के अंतर्गत योग एवं ध्यान केंद्रों की स्थापना, शोध को प्रोत्साहन तथा नए योग हब विकसित करने की दिशा में कार्य जारी है। युवा सशक्तिकरण की दिशा में भी चंपावत ने महत्वपूर्ण पहल देखी। टनकपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से सीधे संवाद किया। शिवम फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, तकनीक और विकास से जुड़े प्रश्न पूछे। चंपावत में साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, पुस्तकालय, ज्ञान सेतु केंद्र, ओपन जिम, बास्केटबॉल एवं बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाओं का विकास युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा। प्रशासनिक मोर्चे पर भी जिले में सुशासन को मजबूत करने के प्रयास तेज रहे। उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में 22 जून को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व वसूली, लंबित वादों, LR एक्ट के मामलों तथा विभागीय रिक्त पदों की समीक्षा की गई। आयुक्त ने 6 माह से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया। यह पहल डिजिटल प्रशासन और तेज सेवा वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धार्मिक आस्था और पर्यटन के केंद्र मां पूर्णागिरी धाम में भी इस माह एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का विधिवत समापन हो गया। 27 फरवरी से शुरू होकर लगभग 3.5 माह तक चले इस मेले में इस वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी जिले में सक्रिय प्रयास जारी रहे। 100 दिन टीबी कैंपेन के तहत जिले के हाई रिस्क गांव डांडाबिस्ट और कुलेठी में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और टीबी जैसी गंभीर बीमारी की समय रहते पहचान करना है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की टीबी स्क्रीनिंग और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही यह अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी चंपावत आगे रहा। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों के तहत जिले के विभिन्न निकायों में रोस्टर के आधार पर स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 1 जून से 24 जून तक चल रहे इस अभियान के तहत लोक कल्याण मेले और स्वनिधि शिविरों का आयोजन कर स्ट्रीट वेंडरों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिला मुख्यालय की नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इससे छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। श्रोताओं, इसी आशा के साथ कि आने वाला समय जिले के लिए और अधिक प्रगति व समृद्धि लेकर आएगा, आज की जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। अब अपने साथी आशुतोष उनियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे चंपावत जिले की चिट्ठी, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आखिरी खत फिल्म से, आवाज है भूपेंद्र सिंह की।
1: जवान जवान

वक्त की रफ्तार में कुछ लम्हे कहीं खो जाते हैं, यादों के झरोकों से फिर चुपके चुपके लौट आते हैं। दिल चाहता है फिर वही सुकून, वही अपनापन मिले, जहां जिंदगी की भाग दौड़ नहीं, बस खुशियों के मौसम खिलें।

मोहब्बत की राह में कोई शर्त नहीं होती, दिल की बात कहने की कोई उम्र नहीं होती। जिसे दिल अपना मान ले एक बार, उसकी यादों से फिर कभी दूरी नहीं होती।

इश्क जब दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो हर मंजर में बस एक ही चेहरा नजर आता है। दुनिया की भीड़ में भी दिल तन्हा सा रह जाता है जब कोई अपना ख्यालों में इस कदर समा जाता है।

हर धड़कन एक खूबसूरत भविष्य का सपना देखती है, जहाँ साथ हो अपना कोई तो हर राह जन्नत सी लगती है।

0: किसी के आने से जिंदगी यूं भी बदल जाती है, किसी के आने से जिंदगी यूं भी बदल जाती है, सूनी राहों में जैसे बहार उतर आती है, चेहरे पर मुस्कान और दिल में उजाला छा जाता है जब कोई अपना बनकर जीवन में आ जाता है।
1: रोक लेती है वो राह में, कभी रूठ जाती है वो चाह में, कहीं पे वो बरखा कहीं पे बहार, सुनो मेहरबानों ये किस्सा है यार।

तेरा साथ होने का एहसास ही काफ़ी है, तेरा साथ होने का एहसास ही काफ़ी है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। न कोई बड़ी ख्वाहिश, न कोई और तमन्ना, बस तेरा साथ मिले हर पल मुस्कुराने के लिए।

चूड़ियों की खनक में भी एक प्यारा सा राज होता है। साजन का नाम जुड़ जाए तो हर रंग खास होता है। सजती है कलाइयां जब प्यार के रंगों से, तब हर मौसम जैसी खुशियों का आगाज होता है।

0: भोला भाला भीम बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कला।

0: गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना लू तुझे बाल मां।
1: जिंदगी अनमोल है, दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
2: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: The all-new Nissan Revive अब CNG में
5: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए निसान ग्रेविड CNG के साथ 7 सीटर, जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
4: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
2: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
6: आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। श्रोतो, कभी कभी कोई अजनबी यूं दिल में उतर जाता है कि उसकी एक मुस्कान ही जिंदगी का सहारा बन जाता है। न जाने कब नजरें मिलती है और कब दिल हार बैठता है।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीत यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प है। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार लगभग 6 वर्ष बाद कल फिर से शुरू होने की आशा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 31 अगस्त तक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड मोड से करवाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के लोक भवन में अतीत से वर्तमान तक नैनीताल का सफर और गौतिक राजभवन के निर्माण की अद्भुत गाथा पुस्तक का विमोचन किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। वित्त सचिव एवं उत्तरकाशी के प्रभारी सचिव डॉ. वी षणमुगम ने जिले में परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। देहरादून जिले के सभी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। चारधाम यात्रा के 67 दिन में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इसी के साथ आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:02 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तनकारी क्षमता रखता है, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति। चाहे आप यात्रा कर रहे हो, सैर कर रहे हो या बस शांति के आपके पल का आनंद ले रहे हो, यह जानने के लिए एक यात्रा शुरू करें कि तनाव को प्रबंधित करने में माइंडफुलनेस कैसे गेम चेंजर हो सकती है। फ्रेंड्स, इन दिनों जीवन वास्तव में एक अराजक भवंडर जैसा महसूस हो सकता है ना? आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ अक्सर तनाव के साथ साथ आती है, जो रोजमर्रा की परेशानियों में हमारा निरंतर साथी है। लेकिन यह आशा की कारण है, माइंडफुलनेस दर्ज करें, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण जो आपके अनुभव को बदलने का क्षमता रखता है। ऐसा एक शांत, अधिक केंद्रित अस्तित्व के लिए अपने टिकट के रूप में कल्पना करें। दोस्तों, आपको आश्चर्य हो सकता है कि वास्तव में ये क्या है। खैर, माइंडफुलनेस का मतलब है पल में मौजूद रहना, टू लिव इन द मोमेंट। अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना, ये तनाव और चिंता के चुंगुल से मुक्त होकर वर्तमान को अपनाने का एक सचेत प्रयास है। ये प्रथा प्राचीन परंपराओं में निहित है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसने हमारा तेज गति वाले जीवन के लिए एक औषधि के रूप में अपनी जगह बना ली। जैसे कि हम माइंडफुलनेस के जादू को उजागर कर रहे हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये तनाव को कम करने में कैसे अद्भुत काम करता है। हमारे विचारों के बारे में गैर निर्णयात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करके माइंडफुलनेस हमें तनावों का निरीक्षण करने और उसमें अलग होने की अनुमति देती है। ये एक मानसिक स्थान को बनाने जैसी, जो हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देती है। और जोनिंग आउट के बारे में नहीं है, ये आपके अनुभवों को एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ ट्यून करने के बारे में है। पहला सवाल आता है कि माइंडफुलनेस है क्या? क्या है? कोई मेडिटेशन है जिसमें बैठकर कई मिनट या घंटे तक ध्यान लगाना? आपको बता दें कि माइंडफुलनेस ध्यान का एक छोटा रूप है, इतना छोटा कि आपको इसके लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए होता है। बस ये 5 मिनट अपने लिए रोज निकाले और ऐसे समय पर निकालें जब आप शांत मन यानी पीसफुल माइंड से सिर्फ अपने साथ बैठ सके। ये समय सोने से ठीक पहले, बिफोर बेड टाइम, या फिर सुबह जागने के तुरंत बाद का समय भी हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर इन समय पर व्यक्ति का मन शांत होता है और वो किसी हड़बड़ाहट नॉट इन अ हरी में होता है। यदि आपके साथ ये समय संभव नहीं होता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय चुन सकते हैं। आप शांत होकर पालती लगाकर यानी सुखासन में बैठ जाएं, आंखें धीरे धीरे से बंद करें, मन शांत करें। इसके लिए गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। बैठने के समय अपनी कमर को एकदम सीधा रखें। सांस भरते समय पेट फुलाएं और सांस छोड़ते समय पेट अंदर खींच लें। इस दौरान खुद को शांत रखें और कोई हड़बड़ी न करें। अपने आसपास की हवा, ऊर्जा, आवाज सभी को अनुभव करें। मतलब खुद को शांत रखते हुए इस बात पर ध्यान देना है कि आपके चारों ओर क्या घट रहा है। जो घट रहा है उसे सिर्फ अनुभव करना है, उसके बारे में अपना कोई विचार नहीं बनाना है, ना ही इन आवाजों से कोई जुड़ाव महसूस करना है। फिर चाहे वो बच्चे के रोने की आवाज हो या हंसने की या चिड़िया के चहकाने की, इन आवाजों को सिर्फ सुनना है। खुद को इनसे अलग रखते हुए आपका ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए। 3 से 4 मिनट ऐसा करने के बाद आप चाहे तो अगले 1 मिनट अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए रखें। ध्यान दें, आपको अपनी किसी आदत को सुधारने ही, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करना है, दूसरों को कोई दुख न हो और आपका भी कोई नुकसान न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करें। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों शांत होते हैं, खासतौर पर जब आप इस एक्सरसाइज को सुबह के समय करते हैं तो पूरा दिन बहुत शांत और आरामदायक बीतता है।

0: आपको अपने निर्णय लेने में आसानी होती है। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को ऑफिस में थोड़ा समय निकालकर कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और अपने अंदर के नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करना है। माइंडफुलनेस की नियमता प्रैक्टिस से मन शांत होता है, गुस्से पर नियंत्रण रहता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, ऊर्जा का विकास होता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप अधिक खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और वो ये है कि माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या है और कैसे होता है। दरअसल दोस्तों, माइंडफुलनेस ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए हम अपने अंदर, अपने आसपास हो रही घटनाएं या स्थितियों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। ये एक तरह से ध्यान ही है, बस फर्क यह है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग से कोशिश करने के बजाय माइंडफुलनेस में हम जिस लम्हा जहां होते हैं अपना पूरा ध्यान वही लगाना होता है और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करना और जीना है। माना जाता है कि माइंडफुलनेस तकनीक की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हम खुश रहना सीख जाते हैं। दरअसल इसके जरिए हम मौजूद लम्हे में जुड़ सकते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे यह डर खत्म हो जाती है कि इस लम्हे ऐसा होता है तो क्या होता है, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि वैसा नहीं हुआ आदि। जब हम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो खराब स्थितियां भी हमें परेशान नहीं करती है। हमें मान लेना चाहिए कि हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना सकते हैं। अपने रिएक्शन या प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। इसे धीरे धीरे हम स्थिति को स्वीकार करना और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस के कई फायदे हैं दोस्तों। तनाव से मुक्ति, याद करने की शक्ति में इजाफा, एकाग्रता का बढ़ना, भावनात्मक स्टेबिलिटी होना, शांति और खुशी का एहसास बढ़ना, हाइपर एक्टिविटी कम होना, गुस्सा कम आना, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ना, फैसले लेने की क्षमता में इजाफा, नींद का बेहतर होना। माइंडफुलनेस थेरेपी को करना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप जिस वक्त जहां हो पूरी तरह वही ध्यान लगाना होता है। इसके लिए कमर सीधा रखकर कुर्सी पर बैठे या फिर आराम से नीचे बैठ सकते हैं। आप सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं, अपना ध्यान सांस पर लगाए, अपने अंदर आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, सहज रूप से महसूस करें, सांस के उतार चढ़ाव को महसूस करें, एक हाथ पेट पर रखें और गौर करें कि जब सांस ले तो पेट बाहर की तरफ जाए और जब सांस छोड़ते तो पेट अंदर की तरफ जाए। ये भी गौर कर सकते हैं कि सांस ठंडी या गर्म है। जब भी ध्यान सांस से हटकर इधर उधर जाए, घबराए नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। हमारा मन बहुत चंचल है और एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, लेकिन भटकावा के बाद फिर से अपने मन को सांस पर केंद्रित करना है। आप सांस के प्रति सजग रहे और जब भी मन भटके उसे लौटकर फिर से सांस पर लेकर आए। ऐसा करते हुए सांस सामान्यता तरीका से ही ले, सांस गहरी न ले। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस को इस क्रमिक विकास के रूप में सोचें, ना कि अंतिम रेखा तक पहुंचने की दौड़ के रूप में। ये इसे आपके जीवन में धीरे धीरे इस तरह से बुनने के बारे में है जो आपके लिए बिल्कुल सही लगता है। इसीलिए इसे एक बड़ा उत्पादन बनाने के बारे में तनाव न ले, इसे करने दे। सचेतनता को अपने जीवन में सहजता से प्रवेश देने के लिए तैयार रहे, इसे सरल और तनाव मुक्त रखे। प्रिय श्रोताओं, तनाव कम करने में दिमागीपन की शक्ति की इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, सचेतनता का आजीवन यात्रा है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रता और लचीले आत्मा के करीब लाता है और प्रत्येक सचेतन सांस आपके अधिक केंद्रित और लचीले आत्म के करीब लाती है। दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वयं वर्तमान क्षणों में व्यस्त रहे और जब तक हम दोबारा न मिले, आपके दिन सचेतन अनुभवों और आंतरिक शांति से भरे रहे। अलविदा और अच्छा ख्याल रखना। नमस्कार, आपका चेतन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, FM 100.5 MHz पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन से। ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिनचोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार लगभग 6 वर्ष बाद कल फिर से शुरू होने की आशा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला प्रशासन के अनुसार भारतीय व्यापारियों का पहला दल 26 जून को तिब्बत के तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। धारचूला के उपजिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों तक पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया है। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुंचाने के लिए नाभि ढांग के निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने

0: वाली नीट यूजी की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने पर जोर देते हुए स्पष्ट किया है कि देवभूमि में किसी भी प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि यात्रा मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए। यदि कोई व्यक्ति या समूह प्रदेश की सामाजिक और धार्मिक शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना में चार लंबे पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग आठवां वृत्त नई टिहरी ने इस कार्य के लिए रुचि अभिव्यक्त करने के लिए कंसल्टेंट से आवेदन आमंत्रित किए हैं। टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। इन सभी पुलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, जिसमें केबल स्टेड, सस्पेंशन और आर्क जैसी उन्नत ब्रिज तकनीक का उपयोग, हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र को देखते हुए भूकंप रोधी संरचना, तीन लेन हाई कैपेसिटी इको फ्रेंडली डिजाइन तथा पर्यटन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल होगा। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने और सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों और यात्रियों की विभिन्न स्थानों पर नियमित जांच की जा रही है। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। समाचारों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:35 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत के कार्यक्रम में मोहन सिंह डोलिया के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: सफाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
3: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
4: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
3: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
5: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
6: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
5: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
6: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
5: और परिणाम?
6: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
5: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे हैं मोहन सिंह डोलिया के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: मोहन सिंह डोलिया के इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियोज की घड़ी में ठीक 11 बजे हैं और ये वक्त है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं आज फिर आपकी पसंद के गीतों और आपके संदेशों के साथ। पहला मैसेज हमें लिख रहे हैं राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल, कृष्णा और राकेश जैन। साथ ही हमें मैसेज मिला है, श्रोता है धामणगांव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे, लक्ष्मी देठे, कुमारी सानिका, बफर गांव नादुरा से शिवाजी उगले, राहुल उगले। और अगला मैसेज हमें मिला है, ये श्रोता है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। और आप हैं गांव उमेदा निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेदा, आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय है हिमाक्ष। मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट बिजनौर से है मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत फिल्म वो कौन थी से।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म से। सुनना चाहा है आप श्रोता है कवर कॉलोनी बड़वाहा खरगोन मध्य प्रदेश के प्रवीण और मीना श्रीमाली। साथी महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धांडे वल्मी वकील वाल्मीक नेनाजी और स्वप्निल धांडे। प्रशांत शिंदे सुनीता यशराज ऋषि कृष्णा घोड़के हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से। और गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी अच्छेलाल राय बुल्की वाली और फलना झा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन बीना आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशु खुराना। सहारनपुर से हैं सोनाली आशा और सुरेश नारंग। कुम्हार गली श्रीरामपुर महाराष्ट्र से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका और सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने। मजनू कटीला से कमल बालूजा मधु सागर बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। गांव फ्रासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और अगला मैसेज हमें मिला है ये श्रोता है गांव हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा और सार्थक शर्मा का। डी अशोक कुम्हार आविका जीविका सानू कुम्हार और अर्चना कुम्हार है श्री रामपुर से। और कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोनवने करिश्मा अविका और सायसा सोनवने। राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ये श्रोता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। मुसरत जहां नाज तलत जहां फरज जहां रिफत जहां नुजहत जहां नाज साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज ये श्रोता है सीतामढ़ी बिहार से। मोहल्ला हलवाया शेरकुट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी मोहम्मद इकबाल सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कौसर। तत्री की भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। उत्तम कुमार बघेल रुखमणी साहिल भारती बघेल लधान पंढरिया छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं। शब्बीर हुसैन शहजाद हुसैन मुज्जू बाबा आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन है सब्जी मंडी बुलढाणा से। श्रोताओ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं काजल फिल्म से। सुनना चाहा है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। जमशेदपुर झारखंड से हैं सुपाही साई गांव के निशा कुमारी, रेशमा और देवेन जी। और आप हैं श्रोता सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार और चंद्रकला रेवाड़, उत्तम नगर दिल्ली से जॉन सिन्हा, बी आर टेलर और सुमन सरिता, शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी हैं गंज डुडवारा से, राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से विनोद और संतोष खड़से, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, तनुजा देवांगर और ईशांत देवांगन हैं पलारी छत्तीसगढ़ से, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम आदिवा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून, सहारनपुर कुमारहेड़ा से है सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और आदिब, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, गंज डुडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी, मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये श्रोता हमारे हैं टोरोवाल नवाशहर पंजाब के गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बामिका और वाणी थांदी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा, कमल बालूजा ये नाम शामिल हो चुका है, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश और करुणा वर्मा। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत काजल फिल्म से।

जीने की राह फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये श्रोता हमारे सुनना चाह रहे हैं कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। साथी हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुजान, अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाज शेख, दानिश अमन आफरीदी और राधा नामदेव हैं गंज डुडवारा यूपी से। किशोर वानखेड़े, उषा विशाल वानखेड़े हैं गांव चांदूर बिश्वा बिल्ढाणा महाराष्ट्र से, और राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज और राजवीर गवई। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। विरमगांव गुजरात से हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावेश और सनी भावसार। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। खलीफा की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद वर्मा और राजेंद्र मनहरन वर्मा हैं बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आप श्रोता हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी घटे, जयश्री, अंजलि, बाबा साहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टिब्यूल और पीबी कुल थे। करणवीर हाउस भुचो कैंची और बटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दफिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू एकम और दमन अभिजोत। विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीके पुरी कैलाश, नीलम और रामापुरी, पालीपुरी सुनील पाठक, और ये श्रोता हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली बेबी निसा और इनके मित्रगण। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख हैं सांगली जिले के जत शहर से। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन वर्मा, ये हैं श्रोता राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ग्राम दुलापुर यूपी से है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। रमा रावत पौड़ी गढ़वाल से मैसेज कर रही हैं, और आप श्रोता हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सिंधौली मीरगंज से बरेली के श्रोता हैं जीशान वारसी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म जीने की राह से।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोता इस समय सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सहरा फिल्म से। सुनना चाहा है बिरनी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमकर ने। साथ ही हमें मैसेज लिख रहे हैं ये श्रोता है हमारे पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंह हड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता। अगला मैसेज मिला है ये श्रोता है हमारे नाम शामिल हो चुका है। अगला मैसेज मिला है नयापारा भिरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई, ईश्वर राज और पप्पू ठाकुर का। गांव कैरो तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल, हर्ष, मनीष, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल हैं शास्त्री नगर बीड़ शहर से। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। राही नगर गंज डुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान, फैजान और ताबिश खान। फाजिलका पंजाब से हीरावाली गांव के हमारे श्रोता हैं सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा और ये श्रोता हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम, रेलवे रोड गंज डुडवारा से। ये हैं अगला मैसेज हमें लिखने वाले श्रोता हैं गाँव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और हरमन। जय ये श्रोता जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे हैं गाड़वे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ निवान और शायना शर्मा। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब लड्डू। अगला मैसेज लिख रहे हैं यवतमाल महाराष्ट्र से आनंद देवधरे, छबु, विद्या तलेगांवकर, गिरिजा देवधरे और गजानन सिंघे। गंज डुडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी। अगले ये मैसेज हमें लिख रहे हैं राजेश वर्मा, मंजू, निशांत वर्मा, कौशिकी, दीपाली, सचिन युवान और आर के राजा, लाल कुर्ती, रुड़की, कैंट से। रामपुर से हमारे श्रोता हैं वेदांश, सारांश और सुनील सक्सेना। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

एक अगला मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं, हमें ये मैसेज मिला है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का, रघुवीर नगर दिल्ली से, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से, गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एम रामगढ़िया, और आप श्रोता हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता, अरुणा, चेतन, सुलोचना भगत, फौजिया, रोशनी, शयान, काजल और शहजाद अली हैं रामपुर से, बागरी मोहल्ला रटलाई से हैं मनमोहन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, कुंदीबाई, बागरी, और अगला मैसेज हमें मिला है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मारावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मारावी का, नलगुंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरुसा हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं धर्मवीर फिल्म से। सुनना चाहा है संदीप कुमार, दिव्या, अनुदेव, गांव रामाशियावाला, जिला सहारनपुर, यूपी से। और ये श्रोता हमारे मैसेज कर रहे हैं, आप श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकल, रतनमाला, ओम कुमारी और आरती कुमारी। फरुखाबाद साहेबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक हैं। ये हमें मैसेज मिला है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक, जिया उल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे का। ये हमें मैसेज लिख रहे हैं आप श्रोता हैं बोरखेड़ा पीतरामल उज्जैन से, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त और चेतन नहटा। कस्बा चिलकाना के हमारे श्रोता हैं नदीम अंसारी, आयशा नजीम, अजीम शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी। निम्नामाद जिला हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर हैं। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और पूरा नामदेव परिवार है, ग्राम सोरई ललितपुर यूपी से। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार। लक्सर रोड गांव सुबहेड़ी कस्बा पुरगा काजी से है मुजफ्फरनगर के श्रोता मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब कहकशा और इनका पूरा परिवार। दरिया प्रभावली महाराष्ट्र से गजानन एले, नवदीप, विश्वदीप एले और अशोक एले। शेरी वर्णेर अकोला से हैं अरुणा दामोदर, आदित्य दामोदर। और आप श्रोता हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी, नई बस्ती गंज डुडवारा से। और ये मैसेज हमें लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू है रोहासी छत्तीसगढ़ से। निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, अयान बाबू हैं धनोरी तेलीवाला से। छोटूपल तेलंगाना से कस्तूरी, रामेंदु, बूमा देवी, पृथ्वी और नारायणा हैं। रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से चेतन साहू, गायत्री, खुशी, रेशमा और वर्षा साहू। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश, पायल जोशी, वैदेही जोशी, बेबी हंसिका और कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयंती केवट जी। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत फिल्म धर्मवीर से।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक आपको सूचना दे दें। आप श्रोता हमें पत्र लिख सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, और इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के साथ पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आप इस पर हमें पत्र लिखकर अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, ये आप हमें अवश्य लिखिए। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली फरमाइश, जिसे हमें भेजा है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंद भूषण, संस्कृति, पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने। ये श्रोता है तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान सामायरा और आजमीन गुड़िया। गांधी बाग अकोला से है रमेश कटनकर वैशाली और धनंजय कटनकर। सरोख चौक अमरावती से कबरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम। ये श्रोता लिख रहे हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर। दतरेंगी से श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा और रुद्र वर्मा। निजामाबाद तेलंगाना से शेख अब्दुल अली, निगार, परवीन, हफ्जानम, समरा, नमीन, मुनज़ा, महवीन, आयजा मनाल, मोहम्मद मिसवाउल्लाह और मोहम्मद उजेफा अजलान। अगला मैसेज हमें मिला है श्रोता है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश का। ललन मिश्रा, नूतन, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित है नरहन स्टेट से। सुनीता शिंदे, यशराज, प्रशांत ऋषि शिंदे हैं रोहिदास चौक पंढरपुर शहर से, साथ में है कृष्णा घोड़के। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील, डब्बू बब्बू और राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान छीपा और पूजा परिहार। गांव पुटपाक तेलंगाना भवानी वेंकट से हैं भवानी वेंकटेश, मास्टर मिथुन और महादेव। आप श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री और अल्तमश खत्री हैं। वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दोरनाला बालाजी, रेणुका, बद्री, हरणी, लोकेश और साई कृपा है। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ममता फिल्म का ये गाना। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में पाकीज़ा फिल्म से ये गीत। सुनना चाहा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश और दिनेश ने। साथ ही मैसेज लिख रहे हैं रानीगंज से रवि और इंदर, दिल्ली से ध्वनि और सानवी। प्रोग्राम में अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं श्रोता हैं अमरावती महाराष्ट्र से लेही गांव के कल्पना कुरहाड़े, वंदना, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े। आप श्रोता हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। कानुगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश हैं रंगारेड्डी जिला तेलंगाना कड़ताल से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया। कस्बा मुड़िया से नवी वक्ष, मास्टर फारूक अहमद, तहसील मोहम्मद हारून, मोहम्मद अवेश और मोहम्मद रुवेद। मोटा का माफी खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, पाकीज़ा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति

0: और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Authorities are continuing rescue and recovery operations in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression and the arrest of political leaders, journalists and social workers. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub and spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world and vice versa. Speaking on the occasion, the minister said the new hub and spoke model paves the way for a monumental shift in how citizens travel.
2: This has been long pending reform that we wanted to bring in Indian civil aviation. India has become the third largest domestic aviation hub in the whole world. Now we want to take it to the next level. In the next 6 weeks, just like how we have started Varanasi here today, we are connecting it to Delhi Airport as the hub. And from there, they can connect to 17 cities across the world. And now, taking the similar concept, in the next 6 weeks, we want to start it in 6 new more airports.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jayashankar said the inclination to assert differentials is greater and capabilities too are deployed with less hesitation. He stated that technology advancement is itself encouraging such traits.
3: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey this morning. Meanwhile, Morocco also stormed into the knockout rounds, beating Haiti 4-2 in an entertaining Group C clash in Atlanta this morning. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in forenoon trade today. The Sensex rose 560 points to 77,550, while the Nifty advanced 170 points to 24,191 when reports last came in. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan and Goa, Maharashtra, Telangana, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The weather agency has forecast thunder squalls over Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Marathwada, West Madhya Pradesh and West Rajasthan. And with that, we end this news bulletin.
4: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है FM न्यूज़ हेडलाइंस।
5: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार लगभग 6 वर्ष बाद कल फिर से शुरू होने की आशा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन व मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। आज निर्जला एकादशी स्नान पर्व के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले को देखते हुए स्नान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब पूरे देश का साझा संकल्प है। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 31 अगस्त तक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत चौधरी ने नैनीताल में जिले की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड मोड से करवाने का निर्णय लिया है। टिहरी झील के पर्यटन विकास के लिए झील पर 4 नए पुल निर्मित किए जाएंगे। SCERT अब 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के पुस्तक में आपातकाल शामिल करेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के लोकभवन में अतीत से वर्तमान तक नैनीताल का सफर और गौथिक राजभवन के निर्माण की अद्भुत गाथा पुस्तक का विमोचन किया और कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
4: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं शीला भट्टनागर के गाए हुए भजन। तबले पर संगत दे रहे हैं हेमंत मोहित कांठा और हारमोनियम पर है सुनील मुखर्जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत शीना भटनागर के गाए हुए भजन। तबले पर संगत दे रहे थे हेमंत मोहित कांठा और हारमोनियम पर थे सुनील मुखर्जी। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब हमारी बहनें सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: आप सभी सखियों को अभिज्ञा का नमस्कार, प्रणाम, आदाब। महिला जगत के खास अंक कार्यक्रम रेडियो सखी में आपका स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले बात करते हैं आज के विशेष दिन की। सखियों, 25 जून 1975 की रात भारत में आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हुई और अनेक राजनीतिक नेताओं व नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा का अधिकार देता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए संविधान ने शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समान अवसरों का मार्ग दिखाया है। इसलिए संविधान के मूल्यों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए हम सभी संविधान के आदर्शों का सम्मान करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे छोटी छोटी बचत के बारे में, जो महिलाओं की ताकत है। मिलते हैं आपसे और सुनते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल।
1: हेलो,
0: हेलो रेडियो सखी, किससे बात हो रही है?
1: सानिया मलिक।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए सानिया, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जिला सारण।
0: और कैसे हैं आप?
1: हम अच्छा, बताइए विज्ञा मैम कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आप हमें पहचान लेते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है।
1: आपसे बात करके हमें बहुत खुशी होती है, और आप तो काफी दिन बाद आए हो।
0: हाँ, बस आपने याद किया और हम आ गए। ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम घर पे रहती हूँ, सिलाई करती हूँ।
0: आज हम बात करें हैं बचत के बारे में। बचत तो आप करती होंगी ना?
1: जी मैम बिल्कुल, बचत तो हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि बचत एक अच्छी आदत है।
0: और कब जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते, है ना?
1: जी मैम, और फिर हमारे काम आते हैं बचत।
0: आपको नहीं लगता जो हम छोटी छोटी बचत करते हैं ना, तो वो महिलाओं की ताकत है?
1: जी मैम बिल्कुल, तो महिलाएं किचन से भी बचत करती है, मार्केट से भी बचत करती है, हर जगह बचत करती है।
0: आप कैसे बचत करती हैं ये बताइए।
1: जी मैम, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, घर से लिस्ट बना के सामान की, तो कुछ सामान लेते हैं, फिर पैसे बच जाते हैं, अपनी किट में जमा कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर काम आ जाते हैं।
0: इसी तरह थोड़ा थोड़ा आप बचत करके जमा करती हैं, है ना?
1: जी मैम, और फिर जैसे कि कोई फेरी वाला आ जाता है सूट वाला, या फिर मार्केट जाता है सरसावा में हमारा कस्बा लगता है, तो मैम मैं सूट बना लेती हूँ।
0: और वैसे भी कभी ऐसी कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए, तब भी हम अपनी बचत का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना?
1: हाँ जी मैम बिल्कुल।
0: चलिए अच्छी बात है। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: शाम भी खूब है पास में गुम है, कर्ज मूवी का शौक है मैम।
0: कर्ज मूवी से, ठीक है, सुनवा दें आपको आपकी पसंद का गीत। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो सखी,
0: मैम, मैं महराज बात कर रही हूँ,
1: महराज कहाँ से बात कर रही हैं?
0: गांव इब्राहिमपुर जिला सहारनपुर।
1: बताइए क्या हो रहा था?
0: मैं मतलब अभी खाना खाया और मेरी तबीयत सही नहीं चल रही।
1: अरे, और फिर भी आपने हमें याद किया और ध्यान रखा कि आपको हमसे बात करनी है।
0: जी मैम, भी आप सोफा में रहकर भी आ रहा आज।
1: चलिए अच्छी बात है। देखिए, तबीयत भी खराब हो तब भी आपको हमारी याद आ ही जाती है।
0: जी मैम, आपका दिन हर पल रखती।
1: चलिए अच्छा लगा जान के। आप घर परिवार तो संभालती ही है ना?
0: हाँ जी
1: तो आज हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी बचत के बारे में। आप भी
0: हाँ
1: बचत
0: जी
1: करती
0: जी
1: होंगी?
0: मैम, कर ले
1: हाँ, तो बताइए किस तरह बचाती हैं आप?
0: जैसे हस्बैंड सामान खरीदते आए और 500 रुपए बच गए, मैं कहती हूँ आपके पास तो वहां से भी आ जाएंगे, मतलब ये मुझे दे दो फिर ये दे देते हैं, या फिर 10-20 रुपए किसी सामान पर बचते हैं खरीद के, वे भी मेरे पास ही रहते हैं, फिर वह बचत हमारे है ना भीड़ छीड़ में काम आ जाती है।
1: सही है, उनसे आप लेके बचत करती हो और उसके बाद उन्हें भी जरूरत पड़ती है तो वो आपसे ही लेते हैं, है ना?
0: जी मैम, ये मेरे से ही मांग लेते हैं, या फिर जैसे मेरी तबीयत खराब चल रही है, उधर दवाइयों में पैसा जा रहा, फिर ऐसी जगह काम आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, अचानक से कभी जरूरत पड़े तो हमारी बचत ही काम आती है ना?
0: मैम
1: और इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि ये हमारी ताकत है। ये महिलाएं बहुत बखूबी कर सकती हैं, है ना?
0: जी मैम, महिलाओं के तो आत्मा होना, सारा घर संभालना।
1: इस तरह वो थोड़ी थोड़ी बचत करें तो फिर कभी भी किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकती हैं, है ना?
0: जी मैम, कभी भी काम आ सकती है घर में रखी बचत है।
1: चलिए बताइए गीत कौन सा सुनना चाहेंगी?
0: मैम आज राजा हिंदुस्तानी का सुनवा दो कोई भी सॉन्ग।
1: कोई भी गीत
0: जी मैम।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हेलो।
5: हेलो,
4: आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम अनीता
4: है। अनीता, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: तो मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
4: अच्छा, ये बताइए अनीता जी, आप क्या करती हैं?
5: मैं एक टीचर हूँ।
4: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आज हम बात कर रहे हैं बचत के बारे में। छोटी छोटी बचत हम करते ही हैं, है ना?
5: हाँ जी, बिल्कुल।
4: तो घर के खर्चों के बीच बचत के लिए आप कौन से तरीके अपनाती हैं?
5: वैसे तो देखिए, हर घर में महिलाएं किसी न किसी तरह से बचत करती रहती हैं। कुछ लोग अपना छोटा सा पिगी बैंक रखते हैं, गुल्लक रखते हैं, कुछ बैंक में सेविंग करते हैं। तो मैं भी करती हूँ छोटी मोटी बचत, जैसे बैंक में कुछ पैसे रख लेते हैं, एक गुल्लक भी है जिसके जरिए पार डाल देती हूँ।
4: हाँ, और अक्सर हमारी ये बचत कभी ना कभी काम आ ही जाती है ना?
5: बिल्कुल, बचत हमेशा वक्त पर काम आती है, तो ये बहुत जरूरी है। बचत करना एक अच्छी आदत है
4: जी। क्या लगते हैं आपको, क्या ये हमारे आत्मविश्वास में भी बदलाव लाती है?
5: ये एक अच्छी आदत है जो मुझे लगता है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि बचत जिंदगी में आड़े वक्त में काम आती है। आज के दौर में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ता है
4: जी। अच्छा लगा आपसे जानकर। वैसे भी ये बचत करना हम महिलाओं की एक ताकत बन जाती है ना?
5: बिल्कुल।
4: बताइए, गीत संगीत का शौक है आपको?
5: हाँ जी, कभी कभी सुन लेती हूँ।
4: आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
5: कोई भी पुराना लता मंगेशकर सा गाना सुना दीजिए।
4: ठीक है, सुनवाते हैं आपको एक बेहद प्यारा सा गीत। हमसे बात करने के लिए आपका

0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: आयशा बात कर रही हूँ, गाँव
0: आयशा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: टाइगर जिला सहारनपुर से। अच्छा
0: कैसी हैं आप?
1: मैम, आप बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं। बताइए, क्या करती हैं आप
1: मैम पढ़ाई करती हूँ,
0: और क्या पढ़ रही हैं?
1: बीए कर रही मैम।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करना आपको अच्छा लगता है?
1: जी मैम,
0: अच्छा लगा जानकर। बताइए, बचत के
1: मैम
0: बारे में क्या ख्याल है आपका?
1: मैम जिस तरह की कुछ चीज है मैम, कोई सामान ले रहे, कोई भी कुछ भी देख रहे या कोई भी खरीद रहे, तो उसमें हम थोड़ी बहुत अपने बचत पे निकाल लेंगे।
0: हाँ बिल्कुल। आप क्या सोचती हैं, छोटी छोटी बचत करने से आपको क्या फायदा होता है?
1: मैम फायदा होता है
0: तो आप किस तरह से बचत करती हैं?
1: मैम, बस बचत तो करती हूँ
0: मुझे लगता
1: जी।
0: है कि हर कोई बचत करता है ना, खासतौर पे हम महिलाएं। जब भी आपके हाथ में पैसा आता है तो आप हमेशा बचाने का सोचती हैं ना,
1: जी मैम,
0: तो उसे पूरा खर्च नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा उसमें से बचा लेती हैं। ये हमारे अंदर एक आदत होती है ना,
1: जी मैम,
0: आप में भी ये जरूर होगी।
1: यस मैम, जी
0: हाँ, तो आप भी बचत करके रखती हैं ना,
1: मैम,
0: और कभी चाहे अपने लिए ही सही, लेकिन उसका इस्तेमाल हम कर ही लेते हैं।
1: बचत करते हुए मैम कुछ भी सामान लेने पड़ जाए, कुछ भी प्रोसेस करनी पड़ जाए मैम, टाइम बहुत करनी, इसलिए बचत तो करनी जरूरी है मैम।
0: हाँ चलिए, अच्छा लगा जान के। बताइए, कौन से गीत की फरमाइश है आज?
1: मैम कृष्ण फिल्म का पहली पहली बार मोहब्बत,
0: खूबसूरत गीत। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन और मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरकाशी के 9 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने सतोपंत चोटी पर सफल आरोहण किया, पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। और निर्जला एकादशी स्नान पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे सभी लोगों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की और उस काल को भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गईं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और संविधान में निहित आदर्शों को कायम रखा। श्री मोदी ने कहा कि संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। लोक निर्माण विभाग के सचिव और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन व मॉनसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सचिव को जिले में की गई तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण, कंट्रोल रूम की स्थापना, विभागीय नोडल अधिकारियों की तैनाती, मशीनरी की व्यवस्था, खाद्यान्न और दवाओं का अग्रिम भंडारण तथा वैकल्पिक मार्गों की पहचान के कार्यों पर पूरा ध्यान दिया गया है। प्रभारी सचिव ने प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मॉनसून की तैयारियों को लेकर सभी जिलों के प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं।
3: जी के निर्देश हैं कि प्रभारी सचिव हर एक जनपद में जाके अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाके मॉनसून की तैयारियों के बारे में रिव्यू करें और देखें कि क्या क्या तैयारी हो रही है, जिससे कि आम जनमानस को कम परेशानी हो, क्या प्रिपेयरनेस करनी चाहिए, रोड बंद होने की स्थिति में क्या काम करेंगे, बिजली पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी तरह की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अल्मोड़ा।
2: राजधानी देहरादून में किराए की बाइक के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि देहरादून में रेंटल बाइक के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंस जारी किए गए हैं, लेकिन कई संचालकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। RTO की टीम ने अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
4: रेंटा बाइक जो चल रही हैं उनके संबंध में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि देहरादून के अंतर्गत रेंटा बाइक के काफ़ी लाइसेंस दिए गए हैं और जनरल शिकायतें ये थी कि जहां पर बिजनेस चल रहा है वहां पर बिजनेस नहीं किया जा रहा है, कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं, साथ ही जो गाड़ियां चल रही हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और जो लोग रेंट पर लेते हैं उनको प्रॉपर हेलमेट भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और मसूरी से ये शिकायतें विशेष करा रही थी। तो ये अभियान हमने कल भी चलाया था, आज भी चलाया है। तो कल लगभग 35 ऐसी गाड़ियों के चलान किए थे जो कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके थे और साथ में कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या प्राइवेट गाड़ियां भी संचालित पाई गई लाइसेंस पर। तो ऐसी 9 गाड़ियों को सीज भी किया गया और आगे भी अभियान जारी है और ऐसे लाइसेंसेस को चिन्हित करके उनके अगेंस्ट निलंबन की या फिर उनको निरस्त करने की संस्तुति भी की जाएगी।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: हिमालय संरक्षण, स्वच्छता और जिम्मेदार पर्वतारोहण का संदेश लेकर उत्तरकाशी के पर्वतारोहियों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समुद्र तल से करीब 7,075 मीटर ऊंची माउंट सतोपंत चोटी पर 9 सदस्यीय दल ने सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। भीषण ठंड, बर्फीले तूफानों और शून्य से नीचे तापमान जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए टीम ने शिखर फतह किया। पर्वतारोही प्रवीण राणा ने बताया कि 3 सप्ताह तक चले इस अभियान में दल ने कठिन हिमालयी मार्गों को पार करते हुए सफलता हासिल की।
6: इसमें जो कि अभी माउंट सतोपंत गंगोत्री एरिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक और चैलेंजिंग पीक है उसको क्लाइम किया है अल्पाइन स्टाइल में। तो ये हमारा ध्येय क्या था, मेन मकसद था कि क्यों ना हम अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है इस तरह का एक मैसेज दें हिमालय में कि लोग गंदगी कम करें। तो इसी हिसाब से हमने जो है अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम किया। तो उसके लिए हमने खुद पूरा सामान खुद लेके गए, राशन खुद लेके गए और कम से कम रिसोर्सेज हमने इसको क्लाइम किया। तो ये जो है एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस। हमने गंगोत्री से शुरू किया और जो फाइनली जो हमारा समिट कैंप तक जो प्लान किया हुआ था 10-12 दिन का, बट उसमें बर्फ ज्यादा गिर गई और जिसकी वजह से 6-7 दिन हमको और ज्यादा लग गए उसमें। और फाइनली हमने 18 तारीख को जो है 6:30 बजे जो है पीक को क्लाइम किया और सेफली वापस आए।
2: वहीं पर्वतारोही आजाद सिंह राणा ने बताया कि अभियान के दौरान दल के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए क्षेत्र से 15 किलो कचरा इकट्ठा कर उसे वापस लाया।
7: हमने जो ये एक्सपीडिशन अपना शुरू किया था 2 जून से गंगोत्री से शुरू किया था, जहाँ से गंगोत्री से और समीर तक का जो हमारा ये सफर रहा है ये हमने 3 जो हमने बेस कैंप तक इसमें कैंप लगाए थे। जब समीट करके हम नीचे आए तो जो हमने मुहिम लेके चली थी अपनी स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो उसमें हमने क्या किया 15 kg कूड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क तक लाया।
2: निर्जला एकादशी स्नान पर्व के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मेला क्षेत्र को विभिन्न जोनों और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। BDS टीम और डॉग स्क्वाड रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख घाटों की निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के माध्यम से भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात हैं जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अफवाहों पर रोक लगाने, भीड़ नियंत्रण, यातायात डायवर्जन और श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने पौड़ी में मंडल के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से मुहर्रम और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि देहरादून और हरिद्वार जिलों में विभिन्न स्थानों पर मुहर्रम जुलूस प्रस्तावित हैं, जबकि टिहरी गढ़वाल में 1 स्थान पर जुलूस निकाला जाएगा। आयुक्त ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, ताजिया कमेटियों, धर्मगुरुओं और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को होटल, अस्पताल, मॉल, कोचिंग संस्थानों, कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करने और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन और मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरकाशी के 9 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने सतोपंत चोटी पर सफल आरोहण किया, पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश और निर्जला एकादशी स्नान पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना अनुपमा फिल्म से। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने और लिखा था कैफी आजमी ने, संगीत से सवारा हेमंत कुमार ने। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आए दिन बहार के से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। गीत आनंद बख्शी का लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज दी है SP बाला सुब्रमण्यम और अनुपमा ने। गीत आनंद बख्शी का लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: ये क्या? लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर, वो इंग्लिश।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए बात करते हैं आखिर

0: के आकर्षण का केंद्र है। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIETNCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधे का जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम।
1: हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है।
0: बिजू

0: तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
3: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधु, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
3: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
3: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
3: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
3: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
3: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
3: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
3: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
3: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
3: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
3: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
3: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
3: अच्छा
7: जी।
3: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
3: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजुभाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
3: गिजुभाई के अनुसार
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
3: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजुभाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: विकास सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी यही इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP Radhakrishnan और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं। देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे को।

साथियों, कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कहा था कि मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देगी तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं मौत को भी मार डालूंगा। ये कहने वाले कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के

0: साथियों, कैप्टन मनोज का मानना था कि सिविल में तो हर कोई नौकरी कर लेता है, लेकिन उन्हें तो जैसे सेना में ही शामिल होना था और उन्हें धुन सवार थी कि वो सेना में शामिल होंगे। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई थी वो लखनऊ से पूरी की, उसके बाद आर्मी स्कूल में एडमिशन ले लिया। खेल और पढ़ाई दोनों में ही वो काफ़ी होशियार थे और NDA की परीक्षा पास करने के बाद जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आर्म फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए। उनका जवाब सुनकर जो इंटरव्यू पैनल के लोग थे वो हंसने लगे। फिर उनके जवाब से एक अधिकारी ने उनसे पूछा, क्या जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है? इस पर कैप्टन मनोज ने कहा कि ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जीवित लेकर आऊँगा।
1: नहीं क्यों दूसरा कुछ बात।

कैप्टन मनोज पांडे तो पैदा ही परमवीर हुए थे, इसलिए उन्होंने उस बटालियन को चुना जिसे बहादुर से भी बहादुर कहा जाता है, यानी कि गोरखा राइफल्स। 6 जून 1995 को 111 गोरखा राइफल्स में उन्हें कमीशन मिला और उनकी पहली पोस्टिंग श्रीनगर कश्मीर में हुई थी। उसके बाद उन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन भेजा गया। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को कारगिल जाने का ऑर्डर मिला।

साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे की, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यूँ तो मनोज पांडे ने लगातार कई खतरनाक मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन खालूबार का जो मिशन सबके सामने था, वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गोरखाओं के लिए भी बड़ी चुनौती था। पहाड़ों पर सिर्फ दुश्मन से ही लड़ाई नहीं लड़नी होती है, वहाँ पर जवानों को लड़ना होता है ऊंचाई से, मौसम से और बेहताशा ठंड से, जहाँ तापमान बार बार बदलता रहता है, 0 डिग्री से बहुत कम तापमान होता है, और उन्हें ऐसे में लड़ाई लड़नी पड़ती है। 2 जुलाई 1999 को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गोरखा राइफल्स को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन को क्लियर करने का ऑर्डर मिला, और यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित रॉय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। और युद्ध के मैदान पर आमतौर पर इतने सीनियर ऑफिसर खुद मोर्चा नहीं संभालते, लेकिन कर्नल रॉय को सिपाहियों से आगे पहाड़ पर चढ़ते हुए मनोज ने देखा और अपने ऑफिसर से काफ़ी प्रभावित हुए, और उनसे युद्ध की उन्होंने बारीकियां सीखी। और 22 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी गोरखाओं से पहले खालूबार भेजी गई थी। 3 दिन तक उनका कोई सुराग नहीं मिला और उनकी खबर जानने के लिए 3रे दिन उनकी मदद के लिए एक सिग्नल आया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कर्नल ललित रॉय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बेड़ा उठा लिया और मनोज पांडे की प्लाटून ने खालूबार की चोटियों पर बाईपास करके पीछे से हमला किया, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। और इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गोरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद आखिरी चोटी की करीब 400 मीटर की दूरी थी और दोनों दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगीं, और रुकना वहां बिल्कुल भी सही नहीं था और पलटना भी नहीं चाहते थे। तो सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गोरखा आगे बढ़ते रहे और कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ लेते और गोलियां दागते हुए आगे चढ़ते रहे, और उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों की जमीन खिसक गई और उन्होंने अपनी तोप का मुंह भारतीय सैनिकों की तरफ खोल दिया। लेकिन मनोज पांडे अपने साथियों के साथ बहादुरी से आगे बढ़ते रहे और उन्होंने आगे बढ़ते हुए 2 जो बंकर थे उनका सफाया किया। उसके बाद जब वो आगे जा रहे थे तो उन्हें लगा कि ये पाकिस्तानी सैनिक जो हैं कि वो पीछे से गोली चला सकते हैं, उन्हें कुछ शक हुआ और भारतीय जवान वहाँ पर पहुँच गए। दुश्मन की तरफ से कुछ मिनट बाद एन्यूमुलेटिंग राउंड फायर शुरू हो गई थी और इससे फायर करने के करीब 3 मिनट तक रोशनी रहती है, और वो जो फायर हो रहा था अंधेरे में भी रोशनी कर रहा था। ऐसे में मनोज पांडे रुकते और उन्होंने रुकने का फैसला किया तो सवेरा हो जाता। युद्ध के मैदान में वो सोचे कि अब क्या किया जाए, और 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को बड़ी सी चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकल गए। गोलियों की बरसात होने लगी और वापस चट्टान के पीछे लौटे, लेकिन तब तक उन्हें गोलियां लग गई थी, और उन्होंने जय महाकाली के युद्ध घोष के साथ बाहर निकलकर फिर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और थोड़ी सी जानकारी हम बात करेंगे इस इनके जीवन से जुड़ी इस गीत के बाद।

साथियों, कैप्टन मनोज पांडे ने जब उनका पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया, तब उन्होंने तीसरे बंकर के पीछे से जाकर देखा कि पाकिस्तानी सैनिक गोली चलाने वाले थे और उन्होंने अपनी खुकरी निकाली, उनकी गर्दन काट दी। पाकिस्तानी सैनिकों को चोटी से भागने का मौका भी नहीं मिला और उन्होंने दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा और खालू बार पर कब्जा कर लिया, लेकिन स्वयं शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं और भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। लीजिए प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने DBT के माध्यम से इन बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर वहां संचालित आधुनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग की सराहना की। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित अपने आवास पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और आमजनों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने धुमाकोट, संगलिया और आसपास के गांवों का दौरा कर स्वास्थ्य व पेयजल व्यवस्थाओं, आजीविका गतिविधियों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आयोजित चौपालों में उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अनेकों मामलों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ विकास खंड के मक्कू गांव में 14 दिवसीय रिंगाल व बांस शिल्प प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक रिंगाल कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है। निर्जला एकादशी स्नान पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को विभिन्न जोनों और सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तीव्र दौर की बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोताओ, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म फन्ने खासे। आवाज़ थी सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार की। इरशाद कामिल के शब्दों को संगीतबद्ध किया था अमित त्रिवेदी ने। अब सुनते हैं जावेद अख्तर की शब्द रचना को प्रीतम का संगीत, और फिल्म का नाम है गोवा। इस गीत को गाया है दिलेर मेहंदी ने।

कार्यक्रम गाने नए तराने का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुंजन सक्सेना से। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने, शब्द रचना है कैसर मुनीर की और संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।

कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से प्यार जरूर होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी के लिए जरूर बना होता है। दिल में प्यार, प्यार की चाहत और

की दरमियां सांसों ने कुछ कहा, कुछ कहा, यादों की दास्तां अब कर रही है बयां, छोड़ न जाना मुझे।

आवाजें थी शान सुनिधि चौहान और राघव सचर की। आदित्य धर का लिखा गीत था, विशाल भारद्वाज और साथियों का संगीत। अब सुनते हैं सुखविंदर सिंह को। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है विशाल ददलानी ने।

हैदर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में। अब सुनवाते हैं आपको पापू की आवाज़ में इश्केरिया फिल्म का गाना।

अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

एक दीवाना था। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। क्लिंटन सेरजो और कल्याणी मैनन की आवाज़ में जावेद अख्तर के शब्दों को संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। अब सुनते हैं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल को फिल्म गजनी में। प्रसून जोशी को शब्दों को संगीतबद्ध किया है एक बार फिर A.R. रहमान ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।

श्रोताओं, ये अभी आपने जो गीत सुना ये हमने लिया था जैकपॉट फिल्म से। इस गीत को गाया था अरिजीत सिंह ने और लिखा था तुराज अजीम सिराजी ने, संगीत शारिब तोशी का था। श्रोताओं, ये कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गुरु फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कादिर खान, चिन्मय श्रीप्रदा, मुर्तजा खान और एआर रहमान की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने। अब आपको सुनवाते हैं जुनूनियत फिल्म का गाना अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाज़ में, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीतबद्ध किया है अंकित तिवारी ने।

कार्यक्रम गाने नए तराने का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म खाकी से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है राम संपत का।

खाकी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: 90.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: जाहिर हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और से जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग थ्री सन्स ऑफ माई पेरेंट्स।
0: जी,
1: तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान जाता था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर फॉर आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन क्लियर फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हाँ, ये रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाई हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा,
0: okay, मतलब पूरा वो
1: हाँ। तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में,
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफ़ी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहाँ से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई,
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा तो वापस
1: वो वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद की तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते।
0: अच्छा।
1: रहे हाँ जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स डिफिकल्ट नहीं
0: हो रहा। ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और चलते जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है। बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपाई VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085।

0: 106 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक आर्मी से जुड़ा नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी। मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाए, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: सो एक बार एक तो एक किसी स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेकर काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल व्हिच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वाज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
0: पूरा लाइफस्टाइल।
1: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होकर आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई टू वाइंड अप ओनली जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वाज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट पर भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्र घुस जाएंगे।
0: तो जबकि उस पर बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा
1: जी
0: गर्म
1: जी
0: इलाका है,
1: जी
0: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो
1: जी
0: ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा
1: जी
0: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ,
1: जी
0: तो क्या
1: जी
0: वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
0: तो एक बड़ी टीम हो गई
1: एक
0: वो।
1: बड़ी टीम हो गई, द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे
0: जी
1: सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में, टू
0: बिल्कुल
1: इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग, ना वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं,
0: अच्छा
1: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी, तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, और वो
1: जी
0: फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
1: बिल्कुल
0: तो ये जो सिचुएशन आपने वहाँ की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज़ सिखाना,
1: जी
0: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे, और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज?

0: किया, ऑर्गेनाइज किया?
1: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं। उसके साथ
0: अच्छा
1: साथ में पांच टीचर्स लिए आते हैं, पांच टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज पर 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
0: जी,
1: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं।
0: बस
1: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आँख
0: ओके
1: कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके,
0: बिल्कुल। और ये तो मतलब हमेशा के लिए
1: हमेशा के
0: एक
1: लिए।
0: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा? कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए,
1: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये
0: करना
1: एक
0: है?
1: टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक,
0: हमेशा के लिए वो
1: हमेशा
0: बन
1: के
0: गया और
1: लिए।
0: वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके
1: जी
0: आते
1: जी
0: रहेंगे।
1: जी जी
0: तो ये
1: जी
0: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह
1: मैं
0: रहा।
1: बिल्कुल आप बात मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का। और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
0: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे
1: जी
0: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको BSM से सम्मानित किया गया,
1: जी
0: तो वो जो मोमेंट था?
1: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा।
0: जी
1: हाँ ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे उन्होंने
0: जी
1: इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस
0: तो ये
1: अचीवमेंट।
0: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
1: जी
0: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है,
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है,
0: जी
1: तो अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
0: बिल्कुल
1: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
0: बिल्कुल
1: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: सर एक चीज यहां पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में
0: ओके
1: हैं,
0: जी
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन,
0: ओके
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई करें, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
0: जी
1: में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
0: ओके
1: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
0: जी
1: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर
0: जी
1: ये बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
0: जी
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
0: डिसिप्लिन
1: भावना डाली जाती है,
0: बिल्कुल
1: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर
0: बिल्कुल
1: वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग
0: या
1: महत्वाकांक्षाएं हो
0: जी
1: सकती हैं,
0: करियर को
1: चॉइस
0: लेकर
1: हो
0: के
1: सकती हैं,
0: जी
1: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
0: यानी
1: जाता
0: कि
1: है।
0: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
1: जी
0: मजबूत हो जाते
1: बिल्कुल
0: हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफ स्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
1: बिल्कुल
0: ऑर्गेनाइज हो जाता
1: यस
0: है।
1: यस
0: तो सर
1: यस
0: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशन्स की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
0: ठीक है
1: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है
0: ठीक
1: जिसपे
0: है
1: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पर चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
1: जी
0: प्रोसीजर सामने
1: जी
0: आ जाएगा
1: जी
0: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो, या
1: ये जो
0: जो
1: पास आउट हो चुके
0: हो
1: हैं,
0: चुके हैं
1: हाँ
0: वो
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल की
1: तो 10
0: लिमिट
1: से
0: है।
1: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहें हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माई हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टूडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स द कंट्री। आई गो माई हेड टू देम माई सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011-2342-1085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे के पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
1: संभालना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। उन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है।
0: ओके।
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
0: ओके।
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी।
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपीयर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं, जहां
0: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या आम आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो जो ये बता रहे हैं आप
1: संस्थान में, जैसे कि टर्शियरी केयर होता है जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों को उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
0: ओके।
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
0: सर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who were under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस है। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में एक तरीके से, जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहां पे जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
0: जी तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जॉशन आपको महसूस हुआ, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
1: फिर आगे बढ़ते हैं।
0: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, तो उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की है, जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था, और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो उस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए

0: ज्यादा से यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली.
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है,
1: जीवन शैली है, वो एक लाइफ
0: स्टाइल बिल्कुल अलग है
1: और बहुत ही स्पेशल है.
0: Absolutely,
1: समझता हूँ. तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो.
0: जी.
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं.
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ. सो कंपल्सरी जो कंसेप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है. आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स. 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं. तो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए. तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल. हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे,
1: बरकरार रहे.
0: तो वो एक बहुत बहुत वो
1: दुश्वार है.
0: एग्जैक्टली
1: सर, एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिसाब, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा.
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू से इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो. तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है. तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से.
1: अच्छा.
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है. बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है.
1: अच्छा.
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी. तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया.
1: अच्छा.
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
0: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट.
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज में बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश और जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा. हाँ भाई, क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है, उसका जान निछार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको.
0: जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक. आप भी इंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती कि उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट कैन यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है। तो ये किसी
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपियर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड RJ सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart, myself, Shankar Lord, from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
1: Bharat Mata Ki Jai.
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले ही बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
1: जी
0: उसी जिंदगी में लाइफ स्टाइल में,
1: जी
0: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके
0: जी
1: पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
0: जी
1: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं,
0: जी
1: बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है।
0: बिल्कुल
1: ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
0: जी
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके
1: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
0: जी
1: फोन पे ही, इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
0: जी
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
0: अपने अपने
1: पे,
0: फोन पर वो
1: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पर लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी
0: एग्जैक्टली
1: हिल रही
0: मैं
1: है बस
0: वही पूछने
1: खाली।
0: वाला था सर, ये
1: जी
0: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
1: जी
0: चुके
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचें इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया
0: बैन
1: है,
0: किए हैं जी
1: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज, सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
0: जी
1: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
0: एग्जैक्टली
1: जैसे मैंने
0: आपने जो
1: पहले
0: बताया
1: बोला,
0: जी
1: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
0: जी
1: निकल के
0: जी
1: आने
0: जी
1: में
0: जी
1: बड़ी
0: जी
1: तकलीफ हो रही है।
0: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता, प्रेफर करता है,
1: जी जी
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
1: जी
0: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है।
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए
0: जी
1: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
0: किताबें जो
1: देखिए
0: हैं
1: साहब,
0: ऑनलाइन
1: आप
0: अगर आ गई तो उसका क्या कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
0: जी
1: पढ़ते मिलते थे,
0: बिल्कुल
1: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो दे द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स।

0: टू अंडरस्टैंड कि नहीं पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उससे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए।
0: देखिए फौज में आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया
0: अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीज़ों से। प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना समझाना सिखाना बहुत जरूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है।
1: तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीजें तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
1: जी। तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर ये बहुत ही इंसाइटफुल रही, आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: तो समझ
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आने के लिए
0: जी।
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की समय संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। साथ ही शाम 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसमें हमारे श्रोता सुनेंगे जनपद उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के कोटगांव की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित ग्राम झांकी पर विनय ध्यानी की चर्चा। किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 7:00। गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। साथ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार हमारे श्रोता सुनेंगे शाम 7:30 पर। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा शाम 6:30 पर।

30 मिनट पर और साथ ही 9:30 पर आरएनयू देहरादून के विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण का समय रहेगा शाम 7:50 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। रात्रि 8:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात्रि 10 हमारे श्रोता सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, ये तो रही जानकारी हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब आपको जानकारी देते हैं कल की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6 हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। भक्ति संगीत वंदना कार्यक्रम का समय रहेगा 6:10 पर। प्रातः 6:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी कथा का।

कार्यक्रम अनुभव आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर, कार्यक्रम एक कलाकार आप सुनेंगे शाम 4:30 पर। कल के हमारे कलाकार हैं निर्देशक यश जौहर।

श्रोताओं, ये तो रही जानकारी हमारी आज और कल की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 होने को हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: शाम की चुप्पी में साज बने, हल्की हवाएं हमें कुछ कह जाएं,
1: रेडियो की मीठी धुन पर सपनों के पंख फिर लग जाएं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं सोनाली कठैत
0: और साथियों मैं हूं माना सुनियाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, अगर हम बात करें आजकल के युवाओं की, तो युवा स्टडीज़ के बारे में, करियर के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचते ही हैं, लेकिन साथ ही अपनी हेल्थ के बारे में आजकल वे कम ध्यान देने लग चुके हैं। और आज हम कुछ इन्हीं विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं आप सभी से।
1: जी हाँ, लेकिन उससे पहले चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म बचना है हसीनों से, लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।
2: Classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
5: मिलते हैं ना इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्था।
4: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
5: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
4: और परिणाम?
5: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
4: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
6: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
0: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के समय में हर उस छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने करियर और हायर एजुकेशन के सपनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, और वो है दोस्तों QS वर्ल्ड रैंकिंग।
7: तो सबसे पहले सुनाली, एक छोटा सा प्रश्न हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? और दोस्तों, फिर ये भी सोचने वाली बात है कि तय कैसे होता है कि यूनिवर्सिटी टॉप पर है या फिर बॉटम पर? इन्हीं सवालों का जवाब देता है QS वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम।
0: दोस्तों, QS वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जिसे क्वेकरली साइमंस नाम के संस्था हर साल जारी करती है। इसका मेन मोटिव है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को अलग अलग कैटेगरीज में परख कर उनकी क्वालिटी का इवैल्यूएशन करना।
7: साथियों, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट कार्ड है जो ये बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी शिक्षा, रिसर्च और अवसरों के मामले में कितनी आगे है। अब सवाल आता है कि इस रैंकिंग को बनाया कैसे जाता है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स शामिल होते हैं।
0: जैसे कि यूनिवर्सिटी की टीचिंग क्वालिटी, वहाँ होने वाला रिसर्च और इनोवेशन, फैकल्टी की स्पेशलिटी और इंडस्ट्री के साथ उनका जुड़ाव, और साथ ही ये भी देखा जाता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनका अनुभव कैसा रहा है, और ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को किस तरह के करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं।
7: यानी कि OS सिर्फ एक नंबर नहीं देता बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की गहराई से जांच करता है। और जब जरा कल्पना कीजिए कि दोस्तों कि अगर कोई यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में ऊपर आती है तो उसका मतलब ये माना जाता है कि वहाँ पर पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, रिसर्च का माहौल अच्छा है, छात्रों के लिए भविष्य के अवसर भी अधिक हैं, और इसी वजह से आज दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट्स QS रैंकिंग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन के रूप में देखते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन मानस, इस बात से तो हमारे दोस्त भी अग्री करेंगे कि कोई भी रैंकिंग आपकी सफलता की गारंटी नहीं देती। ये रैंकिंग आपको बस एक डायरेक्शन देती है, असली सफलता हमेशा आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है ना।
7: बिल्कुल, और दोस्तों QS वर्ल्ड रैंकिंग आपको विकल्पों की दुनिया दिखाती है, लेकिन उन विकल्पों में से सही रास्ता चुनना आप पर ही निर्भर करता है। तो अगली बार जब आप अपनी आगे की पढ़ाई को चुने, यूनिवर्सिटी को देखें, तो QS रैंकिंग पर आप अपना ध्यान जरूर प्रकाशित करें।
0: बिल्कुल, चलिए दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लैला मजनू से अरिजीत सिंह और जोनीता गांधी की आवाज़ में।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
5: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
4: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
5: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
4: और परिणाम?
5: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
4: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
6: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
7: दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जो आजकल हर दूसरी युवा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अक्सर हम खुलकर इस विषय पर बात नहीं कर पाते। और विषय है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। अगर आज के समय की बात करें तो सबकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। किसी को एग्जाम्स का स्ट्रेस है, किसी को करियर की चिंता, और किसी को और कोई कारण से स्ट्रेस।
8: सही का मानस। और इन सब के बीच में जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है वो है ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और इमोशनल एग्जॉशन। बाहर से भले ही सब नॉर्मल दिखता है, लोग कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और यहीं से ही शुरू होती है मेंटल हेल्थ की असली कहानी।
7: बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले जानना आवश्यक है कि स्ट्रेस, एनेक्सिटी, लो मूड या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, किसी कमजोरी का संकेत नहीं। लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ, पढ़ाई, रिश्तों और कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित कर सकते हैं।
8: और पता है मानस, मेंटल हेल्थ के बारे में हमें इतना कम नॉलेज है कि हम में से कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दो अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं।
7: हाँ दोस्तों, एक साइकोलॉजिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को समझते हैं और टॉक थेरेपी के साथ काउंसलिंग के जरिए आपकी मदद करते हैं।
8: मतलब हम उनसे बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और वो आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज देते हैं कि आप कैसे स्ट्रेस और इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं, पर वो जनरली दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं करते।
7: और वहीं दूसरी तरफ एक साइकियाट्रिस्ट एक प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर होते हैं जिन्होंने MBBS या फिर साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन करी होती है। वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस को एक मेंटल एंगल से देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं,
8: स्पेशली जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जैसे सीवियर डिप्रेशन या क्लिनिकल डिसऑर्डर, तो वहाँ साइकियाट्रिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। पर एक अच्छी मेंटल स्लेट होना आज के जनरेशन में बहुत ही ज़रूरी हो गया है मानस, इसीलिए सबसे पहले तो हमें इस इशू को दबाना नहीं चाहिए, है ना?
7: बिल्कुल। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच बात तो यह है साथियों कि बात करने से ना मन हल्का हो जाता है।
8: बिल्कुल।
7: तो आप अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर या किसी से भी आप बात कर सकते हैं जिसके कि आप क्लोज हो।
8: जी हाँ, और अगर आपको लगे कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से पीछे मत हटिए। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलना कोई शर्म की बात नहीं, आपकी फीलिंग्स जो हैं दोस्तों वो वैलिड होती है और थेरेपी लेना खुद को हील करने की दिशा में एक बहुत स्ट्रांग कदम है।
7: तो याद रखिए दोस्तों कि मेंटल हेल्थ कोई एक दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है, ये जर्नी है जिसमें धीरे धीरे आप खुद को बेहतर करते हैं, खुद को समझते हैं और अपनी परेशानियों को कम करते हैं। तो साथियों, उसी और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान रखेंगे। और अब आपको सुनाते हैं फिल्म प्लेयर्स से मोहित चौहान की आवाज़ में ये बेहतरीन सा गीत।

0: फ्रस्ट्रेशन बाइक के एक्सीलेटर पर क्यों?
1: यार 12वीं के बाद एडमिशन कहाँ लें? ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ करियर सच में बने।
0: मैंने तो चुन लिया राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून, 40+ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी और शानदार अवसर। अप्लाई नाउ admission@rbbsu.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8043541070।
2: सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेमनगर देहरादून। सफलता के कदम सुभारती के साथ।
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100+ AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: सुनाली, वैसे तुमने कभी ध्यान दिया है कि जो चीजें हमें सबसे अधिक पसंद होती हैं, जैसे कि चिप्स, बिस्किट या बाहर का तला भुना खाना, वही हमारी सेहत पर धीरे धीरे खराब असर भी डाल सकती है।
5: हाँ मानस, और इसकी वजह होती है इन स्नैक्स में पाए जाने वाला ट्रांस फैट। दोस्तों, ये एक ऐसा फैट होता है जो अक्सर प्रोसेस्ड फूड और पैकेज स्नैक, डिलीवरी प्रोडक्ट्स और तले हुए खाने में पाया जाता है, खासकर जब उसे बार बार रीहीट किए हुए तेल में बनाया जाता है।
4: बिल्कुल, और साइंटिफिक एंगल से देखें तो ये एक ऐसा फैट माना जाता है जो कि शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता, क्योंकि ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को बढ़ा सकता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को कम कर सकता है। इसका असर धीरे धीरे हमारी वेन्स और आर्टरीज पर पड़ सकता है, और इसके अलावा ओबेसिटी, एनर्जी में कमी जैसी प्रॉब्लम्स हमको

0: नहीं, खाना कभी कभार तो ठीक है, लेकिन हमें इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। साथ ही हमें प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट के साथ साथ हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं।
1: तो साथियों, बात कुछ ऐसी है कि ट्रांस फैट से बचना मतलब स्वाद को छोड़ना नहीं होता, बल्कि समझदारी से चुनना होता है कि धीरे धीरे आप कैसे हेल्दी फैट्स को अपनाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं।
0: जी हाँ, सही खाना, सही चुनाव और थोड़ा सा ध्यान, यही है एक हेल्दी लाइफ की असली शुरुआत। चलिए अब पेश करते हैं आपके लिए ये गीत फिल्म बैंड बाजा बारात से श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत लिखकर अवश्य बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम युवाणी द्वार निदेशक, कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट स्पिनर पुल, और हमारा पिन कोड है 248001।
3: जी हाँ दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपने विचार भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आज के लिए हमें यानी सोनाली और मानस को दीजिए इजाज़त।
2: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:45 होने को हैं। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम शून्यवाड़ी एक मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ आशीष चौहान सब का स्वागत करूं और स्वागत के साथ ही श्री महासु जी महाराज से ही प्रार्थना करूं कि हमारे जो इच्छे भी श्रोता है सह सोभिया राजी खुशी चाहिए रहे। श्रोताओं जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो कार्यक्रम है सार रोज की तरह ही हेला भी चलता है और हमारे साथ जो विज्ञापन है और जौनसारी गीत और गढ़वाली कुमाऊनी सब जो गीत है से हम आप लोगों क्षणों में और आप लोगों का जब भी पता कि ज्वेला का जो कार्यक्रम है सा है चिट्ठी पत्री अंक जो आप लोग अमुक चिट्ठियाँ भेजो सत के सुझाव तो और से जी हम जो है बात अलाव आपस मुझ की भाई कौश कार्यक्रम चाहिए चला और तत्के ऊपर हम हेला बातचीत करते हैं। तत्की आगे जो है हेला की जो बातचीत है सही है मौसम के ऊपर जो शाम है जो बात अलाव कि भाई मौसम आजकल कौश है तो आजकल कणिक सबूक लागी देखने को मिल दो कि कणिक राहत त्यौसम है और साथ ही साथ यांडी ते खैर जो शहर के इलाके है त्यांडी बजाई राहत है और जो सा हमारे जौनसारी मुझ बोलियात ना बोले आदि ते गोइणी बिदेरी आदि पानी है पानी बोल कोई की गांव में और कोई की पानी जो शहर आजकल हम लागी देख दे कि जो बाहर के क्षेत्र है त्यांडी कोणी सी ओसो गांव भी ओसो पूर है आज मार बिला पहाड़ों मुझ पानी के साथ जो शोर भी लागी आउंदी और जो शोर लई बजाई नुकसान भी लागी पहाड़ों बहुदा हम देखो जीव के स्याओ लाई कोसी के गेहूँ ते काटने के या आलू ते काटने के तो तुक भी कोणी सी दिक्कत हो लगी कि जो शोर वैसे बजाई तेजी से फसल खराब लगी आँधी तो एत लगी देख दो और प्रकृति कह जाए वो भी कि जो शाम यहाँ कामू काजकल कोणी की राहत तो सो जब पानी लगी लग दो तो जो गर्मी है से ही कोणी सी कम रही हुई और जो फसल है से ही भी घर के बिला खराब लगी आँधी पर कोई बात ना तीसरे तो प्रकृति के साथ आगे कोसी की ना चली से हमें भी बोलूँ आप लोग भी बोलूँ तो कणीशा आप लोगों की अब सावधानी की ज़रूरत है जैसे जैसे बाकाशा बरसात का समय होला तो आप लोगों को जो बारिश जाओ तो बजाई सारी जो सावधानी आमुख से ही बरतूनी चाहिए कि जैसे बारिश जाओ तो मौसम के से कणी इस चाहिए देखूँ कि पानी लागी लाग दो कि लागू ना लागी तो आमुख

जो सिफारिश चाहिए कि छोतरी या बरसाती किसी भी चीज़ है सही साथे चाहिए न्योनी। और बाकी और रुक भी जो हमारे नंदर लड़कोटे या जो अभी स्कूल आके जाते हैं अभी स्कूल जॉब खुल ले तो त्यों के साथ भी हम के जी चीज़ें साथ ही चाहिए होनी कि भाई एत का जो है ध्यान रखो जब भी बाहर से जाओ तो कोणी छोतरी छात्री रखे नहीं। और रुक भी आप लोग ए जी राय जरूर दिया। और श्रोताओं आओ आप लोगों को एत के बाद में जौनसार की तरफ जौनसारी गीत सुनाओ एक रेशमा शाह के स्वर मुझ।

0: नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
2: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
2: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
2: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
5: श्रोताओं अभिलेख सुनिए, आप लोगों ने रेबार और रेबार की आगे लेते सुनी जौनसारी गीत रेशमा के स्वर मुझ। श्रोताओं कार्यक्रम में एक और आगे बढ़ाऊँ और हमारे जो इलाका चिट्ठी पत्री का जो अंकन है सा सुनो आओ।

0: का आज का अंक मा आप अर्धगढ़ भी छो विनय ध्यानी नमस्कार और मैं अर्धगढ़ छन
1: हाँ है आशीष चौहान
0: चौहान जी खूब छन राजी खुशी
1: जी
0: हमारा भयबंद भी राजी खुशी होला उनकी चिट्ठियों में जरूर लिखी होलू सप्ताह भर हम इंतजार कर दें कि हमारा भयबंदों की चिट्ठी पत्री आले तो आया छन साहब है ना
1: जी
0: तो शुरू कर रहा आज एक पहली चिट्ठी
1: जी। और अगली जो चिट्ठी है सही है मनोरमा रावत विजय पार्क देहरादून और ये जो चिट्ठी है वह हमेशा ही चिट्ठी लिखो
0: जी जी
1: और ग्राम जगत कुटुमदारी को प्रमुख दस वासौली नमस्कार। ग्राम जगत पैठान वाले खूब आशीर्वाद।
0: अरे वाह
1: दगड़िया पौड़ी बटी पौने का किया हूँ बयाली फजूल पोईची हूँ बिखुनी दा प्रस्तुत करताओं का संदेश का दगड़ी उखी छबी बहुत ही आनंद लगी और सुंदर रसीले गीतों का रसा स्वादन करी साथ ही जौनसार की प्रमुख लोक परंपराओं पर जो बातचीत है सही व्यामुख बजाई बढ़िया लगी। कुल मिला के मैं बोल सक दो कि ग्राम जगत की जय हो सिमनिया चुगराज जिया रया सदानी।
0: क्या बात मनोरमा रावत जी देखा आप कोशिश और आज आशीष जी कोशिश कह बत गड़बल बना छिन कह बत जोनदारी बना छिन और ये जो हमारे उत्तराखंड है जखमा हम बहुत सारी भाषाओं बोलियों की बात करना उकमा जौनसारी माँ ये जो चिट्ठी पत्री पढ़ना छिन आशीष और आप गड़बल थे बिल्कुल हु बहु उतरने की कोशिश करना छिन आशीष बहुत बहुत बधाई भाई है ना और बधाई च मनोरमा जी था जो तक कि ब्याल को जो हमारे सीताराम तोमर जी की दगड़ बातचीत है कि जो जौनसार के लोक परंपराएं छिन उनका बाबत हमें जानकारी हासिल करी आप तो अच्छी लगी पौने खा के आगे आप यू हम तो सुंदर लगनो छे लेकिन बूढ़ा पकौड़ा अरसा कुछ हुंदा तो जरा भलो तो बहुत बहुत तो धन्यवाद जुगराज रे आप भी कि लगातार आप हमारा कार्यक्रम सुनना छिन पसंद करना छिन आभारी छो आपका और अब है चिट्ठी
1: अब जो की चिट्ठी है से पीताम्बर सिंह चौहान की है और ध्यान जी से बोलो कि जो बोले 24 तारीख जो

0: અમે સમાચાર પડા ગોઢવાડીમાં જ તો તું જો અમારે વાંચી કરતી ત્યાં જો નિઃશુલ્ક કી જાગે નિષ્કુલ દેનો બોલ્યો ઉચ્ચારણ દેનો કરી
1: વૈજાંત વૈજાંત સાહેબ કહેવા કહેવા વૈજાંત આપ 24 તારીખમાં જો અમારા સમાચાર વાચિકા છે અગર હું નિઃશુલ્ક તે નિષ્કુલ બોલ દેતા હા ભાઈ ગડબડ તો હોઈ ગયા અબ હમ સીધા સીધા આકાશવાણી કા તોર પર બોલ સકતા હમારો પૂરો પરિવાર છે હમ માફી માંગના ઓર ઉન ભી માંગોલ ઇન બાત નહીં છે કે લાઈક હમાર પરંપરાઓમાં શામિલ છે કે જબ ભી હમસે કોઈ ગલતી હું તો હમ તુરંત બોલતા ક્ષમા કીજીએ માફ કીજીએ તો અગર ગલતી હોઈ ગયા તો હુએ કા સુધાર કી પૂરી ગુંજાઈશ છે એત્ર બડે ધ્યાન હા ને હું છે કે લાઈક હમ કોશિશ કરતા ઓર કોશિશ કે લે એક પારંગત હું બહુ જરૂરી છે કે અગર કોઈ પ્રસ્તુત કરતા ગલત ઉચ્ચારણ કરું છે ઓર ખાસ કરી કે આકાશવાણી બેઠે કે તો વો ગલત લગદો છે હા ને
0: જી ઓર એ જી વાત ભી કી જશે અમાર બિલાઈ ગલતી હોય ન તો તો ભી અમાર જો આ વિપાર કા જો દોષ હે યા શ્રોતાઓ કે છો રાખી કી જો ભી કી સુજા હોય જો ભી અમાર બિલાઈ હોય ન તો ગલતી અમે તો તુક સુધારને કા પ્રયાસ તે કરો તો લાગી
1: બિલકુલ બિલકુલ
0: લેકિન જે કી છો ન તો તો ગુરુવારે કે સોચો કી ચલો ભાઈ અમુક જો એજા એ નોટા મિલી કી હા સુધાર કરના મુઈ
1: અબ યા ખાતર તો હમ બોલના આશે જી કે કુલ મિલા કે આપ અપણી બાત આલોચના આપ બિલકુલ નહીં સોચા કે આપ લખલા હમન ને પડું હમન પડે દેખા ને ઓર સીધા સીધા હમ પૂરા પરિવાર કે તોર પર માફી ભી માંગના છો લેકિન હા સમાચાર વાચી કા થા જરૂર બોલણ હોલ કે હા ભાઈ નિશુલ્ક હોંદ પીતાંબર સિંહ ચૌહાણ જી બહુ સુંદર લગી કે આપ છોટ છોટ બાત પકડના છે હમારી ગલતીઓ પર હમારી ભૂલ પર એક સુધાર કે ગુંજાઈશ હું જબ આપ હમતા ચિઠ્ઠી લખ દેન હમતા કતે ભી બુરુ નહીં લાગ ઓર બાકી શ્રોતાઓ સે ભી બને કે અગર આપ તે કખીમાં ભી લગત કે હમસે કોઈ ગલતી હોણી છે આપ જરૂર બતાવો તભી તો ઉ ગલતીઓ સે હમ બચ સકદા હે ને બહોત બહોત આભાર બહોત બહોત ધન્યવાદ ઓર અબ હેંક ચિઠ્ઠી આપા ખાતમાં દેખણો છું
0: હેવ જો ચિઠ્ઠી રહી આઈ સે હે બી કે એસ કારકી સિનિયર સિટીઝન નિયતિ શોર્ટર ડિફેન્સ કોલોની દેરાદૂન સે રહી આઈ
1: અચ્છા નિયમિત શ્રોતા છે અમારા
0: જી નિયમિત શ્રોતા હે ઓર સે ભી લિખો કે જો પ્રોગ્રામ કી સારે પ્રોગ્રામ આછે હું पर जो 23 तारीख की किलकारी थी राजकीय उचित प्राथमिक विद्यालय कोटगांव मोरी ब्लॉक बजाई अच्छा था कि और सभी प्रस्तुतकर्ताओं का आशीर्वाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि देखा हमारी खैर खई जब दूर बटे की मोरी सांकरी को गांव है ना उत्तरकाशी को सीमांत क्षेत्र और वका का बच्चों से जब हमन खिलकारी रिकॉर्ड कर तो हम तो भी बहुत सुंदर लगी खास बात में खिलकारी क्या छे पता कि आजकल वक्त छुट्टी नहीं होता
0: जी
1: पहले दा इन है कि एक हफ्ता छुट्टी दे दी बच्चों था है ना कि बाकी बच्चा छुट्टी करना चाहे अरे बच्चा बेचारा स्कूल जाना चाहे तो उन वाले जरे दो चार दिन ही था न तो वक्त जडो मां जब बर्फ पड़ दे बरखा पड़ दे तब छुट्टी होंगे तो हम यहाँ खातिर ही वक्त पहुंचा कि आज गाल हम तो किलकारे और जगह तो मिलने छे ना इन जगह जो ला जबकि आज गाल स्कूल खुले छे लेकिन जो हम गो आरती हूँ स्कूल छुट्टी लेकिन गुरु जी तो नहीं मिला स्कूल अगर चौ छोड़ी ना बच्चा खेलना चाहे तो मेरे वाल यू की स्कूल च ई बच्चा छे ना सिर्फ ये द्वार मोर नहीं खोलिया स्कूल लगा तो बच्चों था इकट्ठा करे और हमन बोल की समझ लिया कि आज स्कूल खुली छे और सुंदर खिलकारी हमन ने उखमा बटोल दी और वक्के बटे सुई चुटा दिया हमन यक है ना और हम बाद माना छुआ किलकारी हमसे पहल पहुंच गया तो किलकारी प्रसारित भी हुए ये का खातिर आपको बहुत बहुत आभार और हम हमेशा ये कोशिश करना कि आपक खातिर सुदूरवर्ती क्षेत्रों बटे की अपनी लोक कला लोक भाषा और लोक संस्कारों से रचिया बसिया कार्यक्रम प्रस्तुत करा और आप बस जगवाल कह रहा एक से बड़ी एक कार्यक्रम आप तक हम पहुंचोला कोटगांव की ही जो ग्राम झांके जो वो भी आप तक आने वाले दिन में इन्हें 26 तारीख में सुनक मिले ली और जितना वका का आसपास का सांकरी का लोग छन वका के खैरी छन ऊपर आधारित कार्यक्रम छन और भी बहुत कुछ बटो निकले हैं छुआ आप लगातार कार्यक्रम सुनना रहे आप तो पूर्व उत्तर काशी को मोरी ब्लॉक आने वाला दिनों में सुने जाल तो बहुत बहुत आभार कार्की जी आप हमारा नियमित श्रोता छन धन्यवाद
0: और ध्यान जी हमें जो हमारे कार्की जी है त्यों भी हमें सच बोलना और हमारे जो और श्रोता भी है कि हमारा जो आकाशवाणी का कार्यक्रम है या साथ तो भी इच्छा है कि हमें जो सोचो कि जो हमारा दूर दराज के गांव है दूर दराज के क्षेत्र है तेई के तो जाऊ ही पहुंचो जट सो आगे बोलना था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि पर ऐसे अमुक जे के कोई नु पहुंचो लेते ही आकाशवाणी वाले पहुंचो
1: बिल्कुल और बिल्कुल आप लोग की और खास कार्य की बात पर ये आछी कि वका का लोग भी बड़ा खुश होंदे
0: जी
1: कि रे बाकी कोई न्यादा ही कख बैठे है जी है ना और बहुत सुंदर लगद उकमा वका की जो बोली भाषा जो थोड़ा अलग छ अब उ सकुचाना छन हम गड़ो में बोना उ समझ में नहीं आनी फिर ऊ तमी समझ लू जन आप दगड़ हो जान ना लेकिन अब तो हम खूब बिगड़ मिट गए जौन सारी, लेकिन वो जौन सारी से भी अलग बोल देते उनका अपनी बोली भाषा च बंगाल क्षेत्र बोले जाते थे तो उनका बिल्कुल हिमाचल से लगे हुए और फिर वो या तो हिंदी बोल देने फिर अपने बोल देने, लेकिन जो हम ऊँग दगड़ छुई लगा तब उतर लगत ना वह वैसे अगर हम कुछ गलत कर दिया तो ये जो सकुचाहट छे ये भी नहीं होना चाहिए। आप बोना छे ना हम सब समझना चाहो अकेले कि बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं छा
0: जी जी।
1: जब आप बोलला एक चीज के बारे में तो पक्की बात है कि हम समझ जो लगे ये बारे में बात होने भैया क्या क्या अन्न होंद क्या क्या फसल होंद के बिंगना ही बात और आप अपने बात में अपने बोली में जवाब दे दिया वही ठीक है। और एक बात और मित्र तो बहुत सुंदर लग कि अगर हम ये क्षेत्र में चाहे वो जौनसार हो और जौनपुर हो या वैसे ऐंच रवाल्टी क्षेत्र हो या और फुंडकोट जितना जितना भी क्षेत्र और जग जग अलग अलग भाषाएं छन जब हम जन्ना ना तो एक भाषाई सेतु बनत
0: बिल्कुल सही बात।
1: और जब वो कार्यक्रम हम प्रसारित करना तो वे की मिठास और बढ़िया हो जान कि बाकी लोग खास करे की जन पौड़ी का या ओ पहार पल छोटी या और उन्नाखंड चल जाओ नाम कुमाऊनी कुमाऊं का छोड़ तो ऊ तभी पता चला लिया अरे कनपण बना चे नहीं
0: जी जी
1: है ना ये भाषा कन चे या बोली कन चे
0: बिल्कुल। और ये जी हमारे उत्तराखंड की जो है सुंदरता भी है कि
1: हमें
0: जो है जगह जगह इकट्ठे हो करी और जगह जगह की जो अब कोई पौड़ी वाला कोई चौनसार मुझ बैठी कोई रवाई मुझ बैठी तो सबुक एक मंचे चलाने का काम भी हमारा आकाशवाणी का है।
1: हाँ बिल्कुल समूचा उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व भाई
0: बिल्कुल।
1: और ये कुनी बोले जान ना कि बाट बाट पर क्या बदले जान और घाट घाट पर पेड़ बदले जान पेड़ भी बदले जान
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत बहुत आभार हमारा यूं श्रोताओं को कि जो कि हमारे दगड़ रहे उनके छुई हुआ हमें भी अपने छुई रड़ा दें लेकिन अब फिर चिट्ठी
0: अब जो चिट्ठी रही ऐसे ही दिनेश चंद्र थपलियाल जागृति विहार नेहरू ग्राम रोड नथनपुर देहरादून ये भी हमारे जो है
1: श्रोता
0: है। और ये लिखो कि ग्राम जगत की पूरी कुटुमदारी तय दिनेश चंद्र थपलियाल की तरफ से सेवा सोली नमस्कार। विगत 12 तारीख की विक्रम सिंह लिंगवाल और विनय ध्यानी की वार्ता से बाल मजदूरी और वर्तमान स्थिति समस्याओं के बारे में बड़ी लाभदायक और कानूनी जानकारी प्राप्त हुई।
1: लेकिन नाम आपन गलत लिख दिया भूपेंद्र सिंह लिंगवाल छाओ विक्रम सिंह लिंगवाल ना थपलियाल जी खिला की हो सकता है आपक सुनने में गलती हो वही लिख दिया अपन लेकिन जो हमारा मेहमान छाओ उनको नोच है भूपेंद्र सिंह लिंगवाल जी एथर पेड़ा।
0: और जो विगत 13 तारीख मुझे हिमांशु जोशी और विनय ध्यानी की वार्ता से मधुमेह बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी और ज्ञानवर्धक उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। वार्ता पैठण के वास्ते ध्यानी जी का धन्यवाद।
1: अच्छा
0: ये का अलावा 16 तारीख में आयोजित लोक कवि गोष्ठी खूब भली लगी। साथी जुगराज रे तू आकाशवाणी समसामयिक और हृदय स्पर्शी कविता पैठान का वास्ता मुकेश हटवाल ते धन्यवाद।
1: ओ सुंदर लोक कवि गोष्ठी में है
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
0: साथी लोक कवि गोष्ठी में बे बाबू की पीड़ा पहाड़ को प्राकृतिक सौंदर्य बदलतू सामाजिक परिवेश आदि बातों को भी सजीव चित्रण दिखाण छ। गोष्ठी में शामिल होने के वास्ता हेमंती नंदन भट्ट मुकेश हटवाल संजीव सती के साधुवाद पैठण छ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन नो बिगड़ना छे ना आप लोग को कहा वो चाहे संजय सती न कि संजीव सती। बहरहाल थपलियाल जी बहुत सुंदर कि आपन सभी कार्यक्रम सुनी 16 तारीख अग भी 12 तारीख अग भी और डॉक्टर साहब दगड़ मधुमेह बीमारी का बाबत हम आयुर्वेद को इलाज का संबंध में बातचीत करी आप तक पसंद आया आभारी छो हम आपका। और कवि गोष्ठी तो आप तो सुंदर लगी छे लेकिन आकाशवाणी समसामयिक और यूं चीजों पर कार्यक्रम प्रसारित कर दे ये माँ आप तो भल लाग तो यू हमारे हमेशा कोशिश हूँ कोई दिन दिवस जयंती पुण्यतिथि कई भी होली हम जरूर में चर्चा कर दें बातचीत कर दें याद कर दें तो ये सामायिक पक्ष जो हमारे सांस्कृतिक पक्ष में आप ही देखा कि हम गीत भी सुन आपते हैं गाँव गाँव जाके वक जो लोक संस्कृति जो वे पर आधारित कार्यक्रम को निर्माण करना वो प्रसारित करना तो हम बहुत सारा काम करना चाहें जो कि सामायिक स्तर पर महत्व रख दे। तो धन्यवाद दिनेश चंद्र थपलियाल जी की आपके स्वागत चिट्ठी हम तक मिल और अब इन करना कि एक पुराना गीत सुनता गीत के बाद जो भाई बंधु ने एतवार दिन हम तक चिट्ठी भेजी उनको भी धन्यवाद करण लेकिन ये बात चिट्ठी पत्री की जो परंपरा छे कि एक पुराण गीत हम ढूंढी लेना था आज हम तक भागीरथी देवी को एक गीत मिल जो कि 90 का दशक में रिकॉर्ड हुए और ये लोक गायिका बोल देन ना कि सोता है लोग गायिका
0: जी
1: है ना, उनको ये तरह से कि भाई ऑडिशन दियो दी पास हो दी संगीत दगड़ सीखो दी
0: जी।
1: बिना सीखे अभी तो लोग गीत
0: जी जी
1: गए जाने ना, तो भागीरथी देवी का शर्मा सुनाई हो पुराण गीत।
2: ये छोट बुला मन भरा क्या आकन तेरो अग्न की गाड़ी में सामार मेरू बागियों की मोटर सिनगर गैना पापी मिर बागी सतपुली रह।

आपली गाडी उमा पाथरी भारा डरे बुरे कलेंडर सभी कठे वावा।

सिरा मैना ब्योकाई मे को उमंग सिरा मैना ब्योकाया मे को गीला बाता को पासायु मांडु गीला बाता को पासायु मांडु यमंग सिर मैना ब्योकाया मेकू बादो का मैना।

0: यमंग सीरा मैना दो छयु मेकु पापी नायरी कामाया तेकु यमंग सीरा मैना दो छयु मेकु पापी नायरी कामाया तेकु ये डरे बुरे कलंडर खिड़कियों खाला खिड़कियों बाटी की नामस्ती वाला।
1: श्रोता भाई बंधु, अभी आपन यो पुराण गीत सुन भागीरथी देवी का स्वरमा, और बिल्कुल ये वो असली कलाकार छन जो का गया गीत आज भी इन लग दिन के हाँ कखे कोई दूर हमर माता बहन गीत लगाने छे। तो उम्मीद करना कि आप तो ये गीत भी पसंद आया होलू, और आप श्रोताओं का नो जो कि एतवारा दिन हमर ई कुटुंब दरिमा अपना चिट्ठियों दगड़।

0: उपस्थित रहे।
1: जी, और त्यों के जो नाम ऐसे है, मंजू रावत चंद्रनगर से लिखो अमुक चिट्ठी, और पीताम्बर सिंह चौहान, विजय कार्की, सिद्धि रावत, सुमित राणा और विकास सकलानी, और
0: तो यूं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
1: सुधीर जोशी।
0: अच्छा, और एक नो विनीता थपलियाल हम तभी देखिए गया।
1: जी
0: तो ऐतवारा दिन भी आपन हम तक चिट्ठी लिखी, तो बाकी दिन भी लिख लियो दी दोपहरा दिन खातिर, है ना भाई।
1: जी
0: तो आप जे बात भी जख भी सुनना चाहे ना, और आप तक कुछ भी भल लगणु च या नखुर लगणु च या कोई सुझाव आपक विचार आना चन, तो
1: जी
0: आप हम तो जरूर लिखी भेज सक दें। अपना बात विचार, अपना घर गांव की कहानी जख आप रहना चन वख का कुछ विचार हम तो लिखी भेजा। कि आजकल कखी कखी बरखा होनी तो जंगलों में आग नहीं लगनी,
1: जी
0: ई बात भी आप ले सक दें कि भाई हमारा आजकल जंगल फुकेणा छन या हमारा जंगल बचा छन,
1: बच्चे
0: तो वो भी हम तो पता भी चल जाल कि हाँ ये छोड़ क्यों होणु और वहीं छोड़ क्यों होणु।
1: जी
0: तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद आप सभी को बनाए कि यू जो आज अब भी प्यारा दिन को हमारे कार्यक्रम हूँ चिट्ठी पत्री, यू आप लोगों की चिट्ठी पत्रियों से ही एथर चल था। तो लेखा हमारो पता और भेजा हम था चिट्ठी।
1: जो हमारा पता है, से हमारा जो मेल का पता है, ऐसा है चिट्ठी ग्राम जगत@gmail.com, और जो हमारा पैथ के आकाशवाणी का पता है, सा है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा ग्राम जगत अनुभाग, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। जो हमारा पिन है, सा है 2480001।
0: तो आप हम तो जरूर लिखा अपने चिट्ठी पत्री, हम जगवाल कना छुआ। तो हैंक दा फिर भी प्यारे दिन आप लोगों की चिट्ठी पत्रियों का दगड़ी फिर से उपस्थित होला सुनना रा कार्यक्रम ग्राम चक।

0: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: The all-new Nissan Revive अब CNG में
2: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।

0: 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निसान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
1: संपर्क करें पाल निसान शोरूम हल्द्वानी। मोबाइल नंबर 8477008200।
2: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
3: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
4: श्रोताओं एविलेती आप लोग ही सुनी रेबार और रेबार की आगे ले तो सुनी संगीता डोंडियाल के स्वर मज गड़ियाल गढ़वाली गीत श्रोताओं आओ सुनो अबे कुमाऊनी गीत हीरा सिंह राणा के स्वर मज
5: फटका मारो

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
4: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
3: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
4: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
3: और परिणाम?
4: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
3: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
5: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
6: श्रोताओं, अभी तो आप लोग सुनी रेवार और रेवार की आगे तो सुनी हीरा सिंह राणा के स्वर मुझ कुमाऊनी गीत। और श्रोताओं, समय रही उत्तराखंड मुझ प्रादेशिक समाचार का, आओ सुनो थोड़ी देर मुझ उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने सत्ता बचाने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस और संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकी। श्री धामी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए उनके संघर्ष को सदैव स्मरण रखा जाएगा।
1: जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था आपातकाल के दौरान, उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सच्चा को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई।
0: नंदा गौरा योजना के तहत आज हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4098 पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी के माध्यम से इन बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 2025-26 में प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं को इस साल 26 फरवरी को ही योजना का लाभ दिया जा चुका था। श्रीमती आर्या ने कहा कि हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले की कुछ पात्र बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण उन्हें उस समय लाभ नहीं मिल पाया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज इन पात्र बालिकाओं को योजना की सहायता राशि प्रदान की गई।
2: हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को, पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है। और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौर योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस ओर भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
0: कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आज उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित स्मार्ट कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर वहां संचालित आधुनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें कंट्रोल रूम में स्थापित सीसीटीवी नेटवर्क, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न स्थानों की निगरानी संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में तकनीक के प्रभावी उपयोग की सराहना की। उन्होंने आमजन की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्मार्ट निगरानी प्रणाली का और अधिक प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का स्थलीय निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवासीय संस्थानों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
4: मैंने जो नारी निकेतन का और जो हमारे अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं उससे रिलेटेड या उनको जो हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्निलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज कर रहे हैं, कई सारी बच्चियां स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया।
0: निर्जला एकादशी के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। विशेष रूप से हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही, जहां भक्तों ने माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। वहीं आश्रम अखाड़ों में भी निर्जला एकादशी पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान, जलदान और अन्नदान करने से हजार अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। वहीं स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से स्नान कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ विकास खंड के मक्कू गांव में 14 दिवसीय रिंगाल व बांस शिल्प प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। SBI RCT रुद्रप्रयाग की ओर से संचालित इस निशुल्क प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रतिभागियों के रहने और भोजन की व्यवस्था भी निशुल्क की गई है। RCT के निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक रिंगाल कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है।
5: SBI RCT रुद्रप्रयाग द्वारा मक्कू ग्राम में जैसा कि 14 दिवसीय बांस एवं रिंगाल उत्पाद का जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में हमारे पास 30 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे द्वारा उनको बांस एवं रिंगाल से जो उत्पाद है, स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन है, उनसे क्या क्या उत्पाद बना के वो अपने स्वरोजगार में वृद्धि कर सकते हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम में सिखाया जा रहा है।

0: बहुत अच्छा
1: और
0: काम कर रही हैं, सीख रही हैं। इसमें इनको जैसे
1: बहुत अच्छा
0: डस्टबिन
1: लगता है
0: हो
1: सुनकर
0: गया,
1: और
0: पेन स्टैंड हो गए, इसके अलावा टोकरियां हो गई, अन्य जो रिंगाल से जो फैंसी आइटम है वो तैयार करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिंगाल से ज्वेलरी, क्लचर, क्लिप, ये बनाना सिखाया जा रहा है। और ये रूट जो है यात्रा रूट है, यहाँ पे देश विदेश से बहुत से यात्री आते हैं, कई होम स्टे यहाँ पे हैं, तो आने वाले टाइम पे ये एक अच्छा स्कोप भी है इनके लिए मार्केटिंग का। और रिंगाल जो है यहाँ पे बहुत मात्रा में होती है, उस रिंगाल से बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट इनके द्वारा अभी तैयार भी किए जा रहे हैं। और 14 दिवसीय प्रशिक्षण में इनको पूरी कोशिश की जाएगी ये अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाए ताकि इनकी आजीविका बढ़ सके।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नंदा गोरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों की 4,098 पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, ग्राम जगत के हो की पाली मुझे हूँ आशीष चौहान, आप सब लोगों का फिर से स्वागत करूं। और इस स्वागत के साथ ही यहाँ जो है आप लोगों को ये भी बोलूँ कि आप लोग हमको चिट्ठियाँ जो है जरूर लिखिया। और जो हमारा द्वितीय का जो कार्यक्रम है ग्राम झांकी से, अब ये उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक कोटगांव ब्लॉक की स्थित स्थल रिकॉर्डिंग का आधारित कार्यक्रम है और आप लोग जरूर सुनिया यह कार्यक्रम। और श्रोताओं, आप लोगों जो हमारा चिट्ठी का जो पता है स्या है चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। और जो हमारा इतके आकाशवाणी का पता है सा है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा ग्राम जगत अनुभाग केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। और हमारा जो पिन है स्या है 2480001। और आप लोग जो है अमुक जो आने वाला जो अवतार है तो की भी जरूर चिट्ठियाँ लिखिया कि आप लोग कुछ कुछ गीत सुनना चाहूँ। और हम एक बात और भी दो बोली कि हमारे जो गीतों से हम सहजें आप लोगों शो को सुनाई, मतलब बोलना सी कौन सी अमुक भी बंदिश है कि जो हमारे एतकी आकाशवाणी पुंडे स्थल रिकॉर्ड वाले करी सहजें गीत हम जो है आप लोगों को सुनाई शकूँ। और आप लोग जो है जरूर से गीत सुनिया। तो इतके ही साथ आप लोगों को न्यू जौनसार की तरफ, लेकिन तत् के आगे ए रेबार सुनो, आओ सुनो ए रेबार।
4: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
5: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
6: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.

0: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मीना उनियाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों थे श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनका परिजनों थे सम्मानित करी। आपातकाल थे भारतीय लोकतंत्र का इतिहास का काला अध्याय बते। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्यन ने नंदा गौरा योजना का तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला की 4098 पात्र बालिकाओं का बैंक खातों में 19 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित करी और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान करी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल का दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का बाबत दृढ़ संकल्पित रहे लोगों थे श्रद्धांजलि अर्पित करे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बोली कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला छे। प्रधानमंत्री ने बोली कि ये दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं निशाना पर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि 25 जून 2075 अकुंड लगेगी आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का इतिहास का एक काला अध्याय है। उन बोली कि तात्कालीन सरकार ने सत्ता बचाना को नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन करी। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगे और संविधान की मूल भावनाओं थे आघात पहुंचेगी। संविधान हत्या दिवस पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों और उनका परिजनों थे सम्मानित करी को बोली कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग साहस संघर्ष का कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हुए सा। श्री धामी ने बोली कि लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगे उनका संघर्ष सदन याद रखे जाल।
2: जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था आपातकाल के दौरान, उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सच्चा को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, न्यायपालिका को भी बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई।
1: हिमालय संरक्षण स्वतंत्रता और जिम्मेदार पर्वतारोहण का संदेश लेकर उत्तरकाशी का पर्वतारोहियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करी। समुद्र तल बटे करीब 7,075 मीटर ऊंची माउंट सतोपंत चोटी पर 9 सदस्यीय दल ने सफल आरोहण कर तिरंगा फेरे। ठंडू बर्फीला तूफानों और शून्य से ताल तापमान जनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करी की टीम ने शिखर फतेह करी। पर्वतारोही परवीन राणा ने बताई कि 3 सप्ताह तक चलिए अभियान में दलन कठिन हिमालय बाटों थे पार करी की सफलता हासिल करी।
3: इसमें जो कि अभी माउंट सतोपंत गंगोत्री एरिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक और चैलेंजिंग पीक है उसको क्लाइंब किया है अल्पाइन स्टाइल में। तो ये हमारा ध्येय क्या था, मेन मकसद था कि क्यों ना हम अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है इस तरह का एक मैसेज दें हिमालय में कि लोग गंदगी कम करें। तो इसी हिसाब से हमने जो है अल्पाइन स्टाइल में क्लाइंब किया। तो उसके लिए हमने खुद पूरा सामान खुद लेके गए, राशन खुद लेके गए और कम से कम रिसोर्सेज हमने इसको क्लाइंब किया। तो ये जो है एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस। हमने गंगोत्री से शुरू किया और जो फाइनली जो हमारा समिट कैंप तक जो प्लान किया हुआ था 10-12 दिन का, बट उसमें बर्फ ज्यादा गिर गई और जिसकी वजह से 6-7 दिन हमको और ज्यादा लग गए उसमें। और फाइनली हमने 18 तारीख को जो है 6:30 बजे जो है पीक को क्लाइंब किया और सेफली वापस आए।
1: वखी पर्वतारोही आजाद सिंह राणा ने बताया कि अभियान का दौरान दल के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे कि वह बटी 15 किलो कचरा इकट्ठा करके वे थे वापस लेने।
4: हमने जो ये एक्सपीडिशन अपना शुरू किया था 2 जून से गंगोत्री से शुरू किया था, जहाँ से गंगोत्री से और समीर तक का जो हमारा ये सफर रहा है, ये हमने 3 जो हमने बेस कैंप तक इसमें कैंप लगाए थे। जब समीर करके हम नीचे आए तो जो हमने मुहिम लेके चली थी अपनी स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो उसमें हमने क्या किया 15 kg कूड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क तक लाया।
5: वलिमा प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: नंदा गौरा योजना का तहत आज हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला का 4098 पात्र बालिकाओं थे लाभान्वित करेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन DBT का माध्यम से यूं बालिकाओं का बैंक खातों में 19 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित करी। ये अवसर पर उन बताई कि 2025-26 में प्रदेश की 33,251 पात्र बालिकाओं थे 26 फरवरी 2026 को ही योजना का लाभ दिए गए। श्रीमती आर्यन बोली कि हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला का कुछ पात्र बालिकाओं की आवश्यक औपचारिकताएं न व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई सक, जेका कारण उन्हें वे बगत लाभ नहीं मिल छाया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यूं पात्र बालिकाओं थे सहायता की राशि DBT का माध्यम से प्रदान करेगी।
6: हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी, अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है, DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है। और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौर योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
1: निर्जला एकादशी का अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का उद्भव संगम दिखना को मिल। देश का विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करी। विशेष रूप से हर की पेड़ी पर श्रद्धालुओं का तांतो लगी रहे, जख भक्तों ने मां गंगा मां आस्था की डुबकी लगे कि भगवान विष्णु का स्मरण करे। आश्रम अखाड़ों में भी निर्जला एकादशी पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुए। धार्मिक मान्यताओं का अनुसार निर्जला एकादशी का दिन गंगा स्नान जल दान और अन्न दान करण से 1000 अश्वमेध यज्ञ का समान पुण्य मिलो। देहरादून का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन बाल सुधार गृह व किशोरी गृह का स्थलीय निरीक्षण करके वक संचार

0: व्यवस्थाओं का जायजा ले। ये दौरान उन्होंने आवासीय संस्थानों में रहने वाले नौनियालों और जनानों थे दिए जाने वाली सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा करें।
1: मैंने जो नारी निकेतन का और जो हमारे अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड या उनको जो हमारा जो है प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्निलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज कर रहे हैं, कई सारी बच्चियाँ स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों से श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनका परिजनों से सम्मानित करी। आपातकाल थे भारतीय लोकतंत्र का इतिहास का काला अध्याय बते। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नंदा गौरा योजना का तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला की 4098 पात्र बालिकाओं का बैंक खातों में 19 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धनराशि हस्तांतरित करी और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान करे। यादगढ़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों का यू अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: नमस्कार किसान साथियों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत। और आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी साथी सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे, साथ ही अपनी खेती किसानी का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जल हमारी खेती के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और खेती में पानी का सही उपयोग अच्छी पैदावार की कुंजी है। आज बदलते मौसम, घटते भूजल स्तर और बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए हमें भी कुछ आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाना होगा ताकि हम जल का संरक्षण कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो अपनाना है, जो हम बात करेंगे, वो है ड्रिप सिंचाई पद्धति की। इस तकनीक में पाइपों और ड्रिपर के माध्यम से पानी सीधे पौधों की जड़ तक पहुँचाया जाता है। इससे पानी की बचत होती है, खरपतवार भी कम उगते हैं और उर्वरकों का उपयोग जो है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। और साथ ही फल, सब्जी और बागवानी फसलों के लिए ये जो पद्धति है ये बहुत जरूरी है। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति। इसमें फुहारे की तरह पानी खेत में छिड़का जाता है। ये पद्धति विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लाभदायक है साथियों, जहाँ पे भूमि जो है ऊबड़ खाबड़ होती है या फिर जिसमें पानी की उपलब्धता सीमित होती है। इससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है और आजकल किसान सेंसर आधारित और स्वचालित सिंचाई प्रणाली का उपयोग भी बहुत जरूरी है। ये खुद ही जो है तकनीक की मदद से, सेंसर आधारित होने की वजह से जो है श्रम और बिजली और पानी इन सब की बचत भी इसमें होती है। तो इसलिए आप सभी जल संरक्षण का संकल्प लें और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाएं। और अब साथियों, आज है बहुत खास दिन, क्योंकि आज है माह का चौथा गुरुवार, जिसमें हम लेके आते हैं आपका खास कार्यक्रम आकाशवाणी आपके द्वार। और आज आकाशवाणी आपके द्वार में हम जा रहे हैं गांव खैरी मानसिंह मालदेवता देहरादून। तो आइए चलते हैं और करते हैं गांव वालों से बातचीत। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं आकाशवाणी आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत खैरी मानसिंह गांव में, और यहां पर कुछ महिलाओं की चौपाल लगी हैं, वो यहां पर बातें कर रही हैं। तो चलिए हम भी उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहां पर कब से रह रही हैं, इस गांव में कितना विकास हुआ है, कितना उन्होंने देखा है और वो यहां पर क्या क्या करती है। चलिए बात करते हैं हम मैम से। मैम, आपका नाम?
1: मेरा नाम नीलम सकलानी है जी, और मैं खैरी मानसिंह से हूँ।
0: तो इस गांव में आप कब से रह रही हैं?
1: यहाँ पे मुझे 15-20 साल हो गया। 20 साल।
0: तो मतलब शादी के बाद आप यहाँ पर आई है। शादी से पहले कौन से गांव में थे?
1: शादी से पहले तो मैं धर्मपुर में रहते थे जी।
0: तो इस गांव में आप 20 साल से हैं, तो काफी कुछ आपने देखा होगा, विकास यहाँ पे कितना बदल रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: मैं ये चाहूंगी कि जैसे पहले था यहाँ पे, पहले तो बिल्कुल ना तो यहाँ पे रोड का था, अच्छा, और ना कोई घर थे, घर भी दूर दूर दूर तक थे जी। अब यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छी बन गई है और घर भी लोगों का अच्छा है, काफी लोगों में जागरूकता भी आए, जिससे हमारे हॉस्पिटल भी नजदीक हो गए, बैंक नजदीक हो गए, स्कूल के लिए बच्चों के लिए स्कूल नजदीक हो गए, पहले तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता था
0: जी। बिल्कुल सही कहा आपने, विकास के साथ आप देख रहे हैं कि गांव में बहुत बदलाव भी आ रहा है। तो आप ये बताएं कि आप क्या कुछ करती हैं यहाँ पर, जीविका के साधन क्या हैं, क्या आप कुछ काम करती हैं, कुछ इस बारे में भी बताएं।
1: हाँ, जीविका के साधन एक तो हम कृषि से जुड़े हुए हैं, दूसरा हमारे यहाँ पे हमने समूह बना रखे हैं जी। समूह के अंदर हम महिलाओं के लिए छोटे छोटे काम लाते हैं, जैसे कोई अचार बनाता है, एक हमने यहाँ पे जैसे ये मसाला यूनिट भी लगा रखी है, इसमें भी काफी लोगों को रोजगार मिलता है, महिलाएं इसमें अपना छोटा छोटी बचत भी कर सकती है और अपना आर्थिक चीज आर्थिक उसमें स्थिति में मदद होती है, अच्छा। ये होता है बस।
0: तो अच्छा, तो आप यहाँ पर मसालों का अचार का काम करते हैं, तो उस बारे में बताइए कि कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं?
1: जुड़ी तो अभी 700 महिलाएं हैं जी, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रही हैं वो कुछ तो हमारी बेकरी में काम कर रही हैं, अच्छा, और कुछ महिलाएं हमारे अचार में कर रही हैं, बाकी कुछ मसाला यूनिट में कर रहे हैं। लगभग 500 महिलाओं को रोजगार मिल रखा है
0: जी। मतलब काफी महिलाएं यहाँ पे अपना काम भी कर रही हैं और घर भी संभालती हैं, तो आजीविका का साधन जो है वो यहाँ पे अचार मसाले इस तरह से भी कर रहे हैं। और खेती किसानी में आप क्या क्या करते हैं?
1: खेती किसानी में हम सब्जियां भी हमारी होती हैं,
2: जी
1: छोटी सब्जी तो हम छोटे छोटे उसमें करते हैं,
2: जी
1: अपने लिए हो जाती हैं,
2: अच्छा।
1: लेकिन हमारा गेहूं चावल
2: अच्छा।
1: आलू हो गया, अदरक हो गया,
2: जी
1: ये चीज़ यहाँ पे अच्छा होता है, ये
2: अच्छा।
1: इसकी हम अपने लिए भी रखते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम बेच देते हैं, उसको सेल कर देते
2: अच्छा।
1: हैं।
0: तो बेचने में कोई आपको कोई परेशानी या कठिनाई का सामना करना पड़ता है या आसानी से यहाँ पे मार्केट उपलब्ध है?
1: पहले तो होता था, लेकिन अब तो ये है कि काफ़ी चीज़ें अब तो हमें समूह के द्वारा भी बेचा जाता है
2: अच्छा।
1: और मंडी तो है ही, खैर
2: जी
1: अब तो ये कि गाड़ियों की वो है, मतलब दिक्कत नहीं है, इसलिए
2: अच्छा।
1: अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।
0: अच्छा, तो अब तो सड़कें बन चुकी हैं, गाड़ियां आ चुकी हैं, तो इससे काफी आपको मदद मिल रही है। तो मैम, मैं भी ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आपने बताया कि यहाँ पे मसाला यूनिट लगी है, तो ये यूनिट लगाने का आपका ख्याल कहाँ से आया, किस तरह से आपने इसको बनाया? और
1: यहाँ पे जैसे हम पहले समूह जुड़े थे,
2: जी
1: तो हमें मतलब जो वहाँ से जो हमारी परियोजनाएं हैं
2: जी
1: उन्होंने बोला अगर तुम लोग कुछ काम करना चाहते हो
2: जी
1: तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे सकते हैं आपको, और अपने छोटी छोटी, पहले तो मुश्किल हो रहा था मान
2: जी
1: लेकिन उन्होंने हमारी काफ़ी मदद करी, इसलिए
2: जी
1: हमने यहाँ पे खोला। और जब
2: जी
1: हम धीरे धीरे, पहले तो हमें कुछ भी मतलब यहाँ पे लगा नहीं कि कुछ होगा,
2: हाँ जी
1: धीरे धीरे हमारी मार्केट भी बनी और अब
2: जी
1: हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है, इससे हमारे 10-15 महिलाओं को तो रोज़गार मिल ही रहा है
2: अच्छा।
1: लगभग लगभग।
0: तो ये आप इसके लिए कच्चा माल भी लेकर आते होंगे, तो वो कहाँ से लेके आते
1: वो
0: हैं?
1: हमारे पहाड़ से आता है, ऊपर हमारे गांव है, जैसे ये हो गया हमारा सीमियारी हो गया, क्यारा हो गया और सिल्ला हो गया, यहाँ से अगर यहाँ का हमारा पूरा नहीं होता है
2: जी
1: तो तब हम फिर वहाँ से मंगाते हैं, जैसे इंडोल खाल से ज़्यादा आता है हमारा, इधर से आता है।
0: तो इसको आप किस तरह से, मतलब आप मार्केट तक पहुंचाते हैं, पैकेजिंग वगैरह किस तरह से आप करते हैं?
1: इसकी पैकेजिंग हम खुद करते हैं, हमारे
2: जी
1: पे मशीनें वगैरह सब रखे, प्रिंटर भी रखा हुआ है,
2: अच्छा
1: सब रखा हुआ है,
2: अच्छा
1: बाकी हमारा ये हिलांस के नाम से जाता है
2: अच्छा
1: और ज़्यादा हमारे लोकल भी बिकता है,
2: अच्छा
1: और वैसे भी हिलांस के नाम से इसे हम स्टॉल लगा के भी बेचते हैं
2: जी
1: और लोकल लोग भी सारा खरीद ही लेते हैं।
0: अच्छा सरकार ने आपकी कोई मदद करी है क्या इसमें?
1: हाँ, सरकार ने हमारे 60% उन्होंने हमें दिया
2: अच्छा
1: और बाकी हमने 40% अपनी तरफ से लगाया, बैंक से भी हमें इसमें लोन मिला है और बाकी हमारे अपने जो महिलाओं का क्लस्टर था
2: जी
1: 10% उसमें से और 30% बैंक से मिला है।
0: तो इस तरह से आप सरकार की मदद से, तो कितना लाभ आपको मिल जाता है?
1: मैनेज एक तो हम इसका एक साल में टर्नओवर निकालते हैं कि हमारा कितना हुआ है,
2: जी
1: फिर उसमें से हम अपने खर्चे खुर्चे, फिर बचत भी ठीक ठाक हो ही जाती है, मतलब
2: अच्छा।
1: ऐसा है,
0: तो मतलब लाभ आपको मिल रहा है
1: मिल रहा
0: इससे?
1: है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी कुछ बताया कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात।

0: है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और अपने घर का काम संभालते हुए भी वो कुछ समय यहाँ पे बिताते हुए अपने लिए कुछ धन भी अर्जित कर पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान साथियों, अब सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in. Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई।
3: नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
2: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
2: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
2: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
0: किसान साथियों, आज हम इस जिस गांव में हैं, यहां के ग्राम प्रधान हैं विक्रम सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि यहां के प्रधान जी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इस गांव में ये कब से हैं और यहां पर कितना विकास वो देख रहे हैं, गांव की आबादी कितनी है। तो प्रधान जी, हमें बताइए कि इस गांव में आप कब से रह रहे हैं।
6: नमस्कार मैम, मैं इस गांव में तो जन्म से ही हैं हम।
0: अच्छा।
6: और हमारे जो भी है ये पूर्वजों की संपत्ति है, उसमें हम रह रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल। तो इस गांव में कितनी आबादी है, आप कुछ इस बारे में बताएं।
6: हमारे ग्राम सभा में लगभग 600 लोग होंगे, 500-600 लोग।
0: अच्छा। 500-600 लोग हैं, तो इसमें आप काफी कुछ देख रहे हैं। और अभी जैसे विकास की बात करें तो यहां पे आप कितना विकास देख रहे हैं पहले से अब में, क्या फर्क आप देख रहे हैं।
6: मैं पंचायत अभी नई गठित हुई है
0: जी।
6: इसी साल से, पिछले साल से।
0: अच्छा।
6: नई चुनाव हुआ है इसमें, नई पंचायत गठित हुई है।
0: अच्छा।
6: अब बाकी जो विकास की बात है, इसमें हमारा अभी पंचायती घर बनना है, आंगनबाड़ी केंद्र बनना है और भी सामूहिक भवन बनने हैं, लेकिन उसके लिए अभी भूमि का चयन किया जा रहा है कि कहीं ग्राम सभा की भूमि मिले और उसमें हम जो है अपना भवन बनाए।
0: अच्छा।
6: इसमें हमारे आंगनबाड़ी, पंचायती घर या बरात घर, जो भी मिलन केंद्र होते हैं गांव में, वो बनाए जाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अभी ये विकास की ओर चल ही रहा है। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे नजारे हैं, काफी पहाड़ है, तो यहाँ पे एक तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है ये। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे कितना इस तरह से आजीविका का साधन भी बन रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे।
6: मैम, ऐसा है, इसमें आजीविका साधन तो है
0: जी,
6: कुछ ही लोग आजीविका कर रहे हैं, बाकी तो ये उड़दंग का जमाना हो गया
0: जी। जी
6: है ना, थोड़ा लगाम सरकार को लगानी चाहिए। जैसे आओगे तो गांव वालों को, गांव वालों को कुछ नहीं मिलता इससे, गांव वालों को तो ये इनसे परेशानी है।
0: अच्छा।
6: ये लोग आते हैं
0: जी,
6: कूड़ा करकट सब फेंके चले जाते हैं।
0: अच्छा।
6: तो उसके जिम्मेदार हम ही तो हैं।
0: जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने, सरकार को इस विषय में कुछ
6: सोचना चाहिए।
0: जी जी।
6: बाकी जैसे हमारी रोडे हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, ये नहीं कर पाते, स्कूटी चलाना कोई बच्चा जा रहा है, इनका तो कोई चलाने का स्पीड भी बहुत।
0: जी जी बिल्कुल, ये तो है, आपने सही बात कही। तो अभी जैसे सड़कों की बात करें तो सड़कों में भी काफी सुधार हुआ है।
6: गाँव में तो देखो जी, एक प्रकृति का नियम है कि बदलाव होता है।
0: जी जी जी।
6: आप अगर आप हमारे उसमें देखेंगे तो मैं 46 ईयर का हूँ।
0: हाँ जी।
6: तो हमने बहुत बदलाव देखे हैं।
0: अच्छा।
6: ये समय की चाल है।
0: जी जी।
6: बदलाव तो होना तय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
6: विकास होना तय है, क्योंकि वो जो 90 का दशक भी हमने देखा, फिर उसके बाद आप 2000, सन 2000 का भी देखा, आज देख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बदलाव तो होता ही है। हर जगह चल जाइए, आप किसी भी जगह चल जाइए हिंदुस्तान के किसी कोने में, हर जगह बदलाव है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
6: ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन है बदलाव,
0: है जरूर, बिल्कुल।

0: अच्छा नहीं,
1: तो बदलाव हमें अपनाना भी चाहिए, हमें अच्छी चीजें हैं उनको अपनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो अब जैसे यहाँ पे आजीविका की बात करें तो यहाँ पे खेती किसानी का भी बहुत, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जगह जगह खेत हैं, काफी लोगों ने यहाँ पे खेती करी है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि खेती किसानी कितना यहाँ पे अभी प्रमुख साधन बना हुआ है?
0: देखो जी, हम शहर के बहुत नज़दीक हैं, उस हिसाब से हमारे पास सीमित ज़मीनें हैं।
1: जी
0: ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि 50 बीघे वाला है, कोई 100 बीघे वाला है, किसी
1: जी
0: भी 2 बीघे, किसी भी 4 बीघे है।
1: जी
0: अब उसमें सिर्फ खेती कर लो, धान गेहूँ चाहे कुछ भी कर लो,
1: जी जी
0: सिर्फ ये है कि चलो अपने लिए राशन हो रहा है।
1: जी
0: इतना हमारे यहाँ है कि एक भी कोना आपको बंजर नहीं मिलेगा। अगर
1: ये बिल्कुल
0: खेती
1: बिल्कुल
0: है
1: सही कहा
0: तो
1: आपने।
0: करना है उसको,
1: जी ये
0: चाहे वो
1: बहुत
0: कम
1: अच्छा
0: है या
1: है।
0: ज़्यादा
1: जी
0: है,
1: जी
0: वो है
1: तो मतलब इस तरह से आप खेती किसानी कर रहे हैं, यहाँ
0: जी
1: पे लोग खेती किसानी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और थोड़ा बेच भी देते हैं मतलब।
0: जी
1: तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफी कुछ, आप युवाओं को देख रहे हैं किस तरह से वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपनी प्रकृति को बचाना है, उस विषय में आपका क्या कहना है?
0: देखो, जो भी पर्यटक एक तो आता है फैमिली मेंबर, वो तो
1: जी
0: ठीक है, हफ्ते में
1: जी
0: आएगा या बच्चों को छुट्टी वागी, वो तो आ गया अपने एंजॉय के लिए,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: तो आप बच्चे को मान ले जाओ या कुछ भी हो, कपल आ गए हो तो अलग चीज़ है।
1: जी
0: बाकी जो लड़का जो रोज आ रहा है
1: जी
0: उसको छुट्टी से मतलब नहीं, संडे से मतलब नहीं, मंडे से मतलब, ट्यूजडे में कोई मतलब नहीं है। वो है यहाँ के जो जो स्टूडेंट बाहर के आ रखे पढ़ने के लिए, वो लोग घूम रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन मेरा तो ये मानना है वो सारे स्टूडेंट है और यहाँ के मेरे को लगता नहीं कोई,
1: अच्छा
0: सब
1: जी
0: बाहर के लोग
1: सब
0: हैं,
1: बाहर के
0: है
1: हैं,
0: ना।
1: बिल्कुल
0: अब वो
1: बिल्कुल
0: पढ़ाई करने आ रखे, वो सोचता है वो शाम रात को पढ़ते हो, दिन को घूमते हो।
1: जी
0: अब
1: जी
0: हर बच्चे का अलग अलग तरीका है काम करने का, हर आदमी का
1: जी
0: अलग अलग तरीका है। अब वो अपने तरीके से कैसे चल रहा है तो वो ही जाने,
1: जी बिल्कुल
0: मेरे को तो ये
1: बिल्कुल
0: लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप। जी
0: लोग आए
1: जी
0: कूड़ा करकट सभ्यता से रहे तो बड़ा
1: जी
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगता है,
1: बिल्कुल सही कहा
0: हमें कोई
1: आपने।
0: दिक्कत हो नहीं है।
1: जी
0: इंसान है, दुनिया में घूमेगा, हम भी बाहर जाते हैं,
1: जी
0: हम भी घूमते हैं।
1: जी
0: ये प्राणी ऐसा है कि हर जगह घूमता है,
1: हाँ जी
0: हर जगह
1: बिल्कुल
0: जाता है
1: बिल्कुल
0: इंसान
1: बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: चलो
1: कहा
0: यार
1: आपने।
0: वहाँ घूमने चल गए, किसी
1: जी
0: काम से चल गए।
1: जी
0: लेकिन उसकी व्यवस्था बनाए,
1: जी
0: हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी समझदार है, हर आदमी युवक समझदार है,
1: जी
0: तो उसको ऐसा नहीं कि चिप्स के पैकेट लाया, पानी की बोतल लाया, गिलास लाया, उसने खाया पिया वही डाला चल दिया।
1: जी बिल्कुल
0: इसमें चाहे फैमिली मेम्बर हो,
1: बिल्कुल
0: चाहे कपल हो, चाहे
1: जी
0: तुम्हारा युवक हो, चाहे युवती हो,
1: जी बिल्कुल
0: वो तो
1: सही
0: उनको
1: कहा आप।
0: खुद देना चाहिए। कहीं डस्टबिन है, अगर मैंने इसी रेस्टोरेंट से कोई खाना लिया है, मैं वहां पे बैठे खा रहा हूँ, कोई
1: जी
0: आपत्ति नहीं। लेकिन उसके बाद वो डस्टबिन में रेस्टोरेंट डाल दे, ना कि नदी में फेंके चले जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पर्यटक स्थल है तो उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो
0: सुंदरता
1: सुंदरता
0: बनाए रखे, तो
1: सुंदरता बनाए रखे, बिल्कुल सही
0: ये
1: कहा
0: बड़ा अच्छा
1: आपने।
0: लगता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। तो किसान साथियों, हम यहाँ पर हैं, जो हम बता रहे थे मसाला यूनिट, यहाँ पर एक महिला है जो यहाँ पे बिजनेस प्रमोटर का काम भी करती है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये बिजनेस, ये जो मसाले उत्पादन का काम है, ये किस तरह से हो रहा है और कब से हो रहा है?
2: मैम, ये काम तो अभी पिछले 1 साल से चल रहा है।
1: जी
2: ठीक है, 1 साल से चल रहा है। तो 1 साल में स्टार्टिंग में तो काफ़ी इसमें मतलब अप डाउन चला था।
1: जी
2: स्टार्टिंग में इसे चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी,
1: जी
2: क्योंकि उस टाइम पे इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो थोड़ा थोड़ा महिलाओं ने आपस में ही मिलके जो है खुद से इसे स्टार्ट करा, खुद से ही थोड़ा थोड़ा सीखा।
1: अच्छा
2: सीखने के बाद इसमें दो पैकेजिंग है मैम हमारे पास। एक
1: जी
2: है नॉर्मल पैकेजिंग जो है गाँव की महिलाओं के
1: जी
2: लिए,
1: जी
2: गाँव से ही रॉ मटेरियल लेके
1: अच्छा
2: उन्हीं को नॉर्मल पैकेजिंग में, उनसे जैसे कोई कोई महिलाएं होती है जिनके घर में खेती बाड़ी नहीं है तो वो हमसे ले लेती हैं। ठीक है,
1: अच्छा
2: तो उनके लिए। और एक है हमारे पास हिलांस की पैकेजिंग, वो
1: अच्छा
2: हमारी जाती है मैम स्टोर में, जैसे जितने हिलांस के आउटलेट हैं वहाँ हमारी ये हिलांस की पैकेजिंग जाती है। जितने स्टॉल लगते हैं मैम वहाँ पे
1: अच्छा
2: भी पैकेजिंग हमारी चलती है। और हमारे पास एक घी भी है मैम,
1: अच्छा
2: पहाड़ी घी,
1: अच्छा
2: वो
1: घी
2: गाँव
1: भी
2: से,
1: है,
2: हाँ जी वो गाँव से आता है हमारे पास। और घी की हमारे पास काफ़ी अच्छी डिमांड है इस टाइम पे मैम,
1: जी
2: तो घी की डिमांड मतलब रिपीट पे काफ़ी अच्छी है।
1: अच्छा तो ये काफी अच्छा है कि यहाँ पे घी का भी काम हो रहा है, घी भी आप लोग बेचते हैं। तो किस तरह से काम होता है, थोड़ा आप बताएंगे कि किस तरह से मसालों को आप क्या क्या, आप कौन सी यूनिट्स हैं, थोड़ा उस बारे में भी बताएं।
2: मैम हमारे पास बेसिकली तीन अभी इस टाइम पे मसाले हैं। एक तो हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है। मिक्स मसाला भी हमारे पास है इस टाइम पे, जैसे डिमांड होती है। हमारे पास रॉ स्टोर में रखा हुआ होता
1: हाँ
2: है
1: जी
2: रॉ फॉर्म में, उसके बाद जो है उसे जैसी डिमांड होती है उस टाइम पे पीस के, उस
1: जी
2: टाइम पे फिर उसकी पैकेजिंग अच्छे से करके, पैकेजिंग करने के बाद जहाँ डिमांड होती है वहाँ पे जो है पहुँचाने का काम
1: जी
2: होता है। तो ये सारा काम महिलाएं मिलकर करती हैं।
1: अच्छा, तो ये जो यूनिट है इसमें सरकार ने भी आपकी मदद करी है इसमें?
2: हाँ जी मैम, सरकार ने ही हमारी मदद की है इसमें। अच्छा। जो समूह की महिलाएं हैं बेसिकली उनके लिए ही सरकार का मेन मोटिव था कि उनको रोजगार मिले, तो उनको रोजगार देने के लिए जो है सरकार ने अपनी तरफ से 60% सरकार का है। अच्छा। बाकी 40% जो है जो समूह है ना मैम, CLF पूरा एक मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है, उसमें जो है छोटे छोटे गाँव जो है इसमें ऐड है, तो ये मतलब 600 कुछ 700 कुछ महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए। अच्छा। उनका प्रॉफिट इससे हो, जो अच्छा। इसका प्रॉफिट होता है मैम वो सारा बढ़ता है,
1: जितने अच्छा, सब में बढ़ता है,
2: सब महिलाओं में बढ़ता है, तो ये उनके लिए बेसिकली खोल के दिया
1: जी। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने बताया कि महिलाओं को प्रॉफिट्स वगैरह हो रहा है और आप बिजनेस प्रमोशन का काम भी करते हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो पाता है और किस तरह से आप लोग प्रमोशन कर रहे हैं?
2: जैसे पूरे साल का हम देखते हैं तो पिछले साल का हमारा टर्नओवर है मैम ऐसी ही होगा, मतलब 1.5 से 2 लाख के अराउंड होगा मैम, सारा कुछ करके तो इतना तो हमारा टर्नओवर है ही पूरे साल का, मतलब ना जो सारी महिलाओं में बटना है
1: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छा मुनाफा हो पा रहा है। और बिजनेस प्रमोट आप किस तरह से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या फिर आप गांव में ही कुछ प्रमोशन करते हैं, किस तरह से प्रमोशन करते हैं?
2: मैम ऑफलाइन हमारा काम है, ऑनलाइन तो अभी है नहीं, तो मतलब ऐसा है कि मतलब खुद से गांव में जाके डिमांड लेके महिलाओं से समूह की मीटिंग करवा के फिर डिमांड लेके उनकी। अच्छा। कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे CLF एक यहाँ पे है बांदल घाटी में, ठीक है, मालदा, ऐसे ही अलग अलग जगहों पे CLF है, तो उनकी जो डिमांड है उनसे बात करके जो उनको चाहिए हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं और वो हमको कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे उनके पास जो चीज़ है वो चीज़ हम ले लेते हैं अगर हमारी महिलाओं को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो मतलब जैसी डिमांड होती है वैसे ही हम जो है लेके आते हैं।
1: तो इस तरह से मतलब मिल बांट के ये काम हो रहा है और काफ़ी महिला जो है इससे मदद भी मिल रही है उनको अपना खुद का कुछ काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह से मसाला उत्पादन इकाई जो है ये बहुत महिलाओं को मदद कर रही है, उनको रोजगार दे रही है। किसान साथियों, आज इस गांव में हम आए हैं और यहाँ पर बहुत ही बुजुर्ग महिलाएं हैं, दादी अम्मा हैं हमारे साथ में, तो इन्होंने यहाँ पे बचपन भी देखा है, जवानी भी देखी है और अब यहाँ पे बुढ़ापा भी देख रहे हैं, तो अब इनसे जानते हैं कि इनका कैसा अनुभव है, क्या परिवर्तन इन्होंने देखे हैं। तो जी दादी जी, अपना नाम बताइए।
3: धनदेई।
1: तो आपने यहाँ पे काफी कुछ परिवर्तन देखा होगा, तो उस विषय में बताइए कि आप कब से इस गांव में हैं?
3: परिवर्तन तो बेटा बहुत सारे देखे, अब ऐसे परिवर्तन कभी नहीं देखे जब जैसे अब आए। आपके जो बच्चे हैं
1: जी
3: बहुत तरक्की हैं
1: जी,
3: हैं हम बहुत तरक्की हैं
1: जी,
3: हमारे बच्चे हैं वो भी थोड़ा परिवर्तन उसमें भी आ गया, पर हमारे बच्चे फिर भी ठीक है, यही है हमारे बच्चे ठीक ही है। अब क्या देखना है, क्या करना है, अब तो हमारा तो लास्ट ही टाइम है अब।
1: तो गांव में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं कि गांव में किस तरह से पहले जो था उससे सड़कें थी या फिर घर थे, अभी आबादी कितना बढ़ चुकी है, इस विषय में थोड़ा बताइए।
3: बहुत कुछ बढ़ चुकी है पर करना चाहते कोई बस हम तो गाय पालन खेती करी, हम सब अपना खेती बाड़ी का काम करे और कुछ नहीं करे हमने, बस हमने तो ये चलाया, ये से अपने बच्चे भी पाले
1: जी जी। कितने साल से आप हैं यहाँ पर?
3: काफी साल की है।
1: अच्छा।
3: पुरानी खेती है हमारी यहाँ।
1: अच्छा।
3: ऊपर भी रहे हम।
1: अच्छा।
3: पहाड़ में वहाँ भी रहे, वहाँ भी खेती है हमारी।
1: अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी आपका, आपने काफी कुछ बताया। तो एक और दादी हमारे साथ है, उनका नाम जानते हैं जी, अपना नाम बताएं।
4: नाम श्रीमती चैता देवी।
1: श्रीमती
4: चैता देवी।
1: चैता देवी जी बताइए, तो आप यहाँ पे कितने सालों से हैं दादी जी?
4: मैं तो 69 से हूँ यहाँ।
1: अच्छा, 69 से हैं। तो आप यहाँ पे क्या क्या मतलब आपने देखा है, क्या परिवर्तन आप देख रहे हो?
4: अरे बाबू, हमने तो बहुत कुछ देखा।
1: अच्छा।
4: पहले तो कुछ साधन नहीं था
1: जी,
4: बैलों से हल बांधते थे है ना, अब बैल बुल तो सब हो गया, अब ट्रैक्टर से ट्रैक्टर आते हैं खेत में। हाँ, आराम हो गया अब ना,
1: आराम हो गया खेती। हाँ, में
4: खेती में आराम हो गया, पहले पैसे तो बहुत पड़ते हैं पर आराम हो गया। हाँ। जैसे गेहूँ धान अदरक आलू प्याज लहसुन यही खेती करते हैं, वैसे तो बहुत कुछ करा अपना समय में, डेयरी पालन करी, डंगर और फूलों की खेती करी।
1: अच्छा, काफी।
4: हाँ, फिर मशरूम का वो प्लांट लगाया।
1: हाँ जी।
4: बटन मशरूम मैंने।
1: अच्छा।
4: हाँ, खुद अपने हाथ से करा।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि कितने मतलब समय से आप बटन मशरूम की भी खेती करी और उससे भी काफी आपने लाभ।
4: डिंगरी मशरूम, बटन मशरूम।
1: अच्छा।
4: उसका प्लांट लगाया
1: जी जी,
4: फिर मार्केट में बेचा।
1: अच्छा, तो मतलब काफी कुछ आपने यहाँ पे अपने
4: जमाने में बहुत कुछ।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में भी आप काफी कुछ कर रहे हैं और पहले से करते आ रहे हैं।
4: हमारे टाइम पे तो पानी का साधन नहीं था, पानी खाने का, पानी बहुत दूर जाते थे हम, है ना। और अब तो पानी घर घर में सब

0: सब चीज घर में बन गए भाई, अब तो कुछ परेशानी नहीं है लोगों के। नहीं
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने बच्चे हैं आपके और बच्चे अभी क्या कर रहे हैं?
0: मेरे जी मेरे छह लड़कियां हैं और एक लड़का, जो हमारे कोई नौकरी नहीं थी चाकरी नहीं थी, पर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करा।
1: अभी कोई आपके घर में खेती करता है?
0: मेरा लड़का करता है।
1: लड़का करता है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आज के युवा थोड़ा खेती में कम ही आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।
0: पीढ़ी है ना ये जी, ये नहीं करना चाहते खेती, हमारे जो नाती पोते हैं ना ये नहीं करने चाहते जी। क्या होता है लोग आराम से काम।
1: लेकिन आजकल क्या है, सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है खेती को, तो नए बच्चों को भी उससे काफी मदद मिल रही है। और कई लोग जो कर रहे हैं मशरूम की खेती, जैसे आपने बताया, तो कई युवा भी मशरूम की खेती कर रहे हैं।
0: अभी एक रूलक संस्था वाले आए थे ना, उसको बोला मैंने, कहा मैं किसी को बोलूंगी यहाँ अपने जो नई पीढ़ी है कि तुम करो इस काम को।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सिखाना भी चाहती हैं। तो मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि कुछ ये प्रोग्राम सुन के कुछ युवा आए आपके पास और आपसे सीखे कि खेती किस तरह से मशरूम की जाती है, उन्हें भी काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा।
0: बन बनाई खाद मिलती है उसकी
1: जी जी,
0: पर मैंने खुद अपने हाथ से बनाती हूँ।
1: ये तो
0: अपने हाथ से बनाया कि अच्छा। वो महंगी पड़ती है
1: जी जी जी,
0: जो मन बनाई खाद हाँ आती है हाँ, वो महंगी पड़ती है
1: जी,
0: वो तो तोल के हिसाब से आती है
1: हाँ हाँ हाँ,
0: और जो अपने घर में बनाओ
1: जी
0: तो वो इतनी महंगी नहीं पड़ती
1: जी जी। आजकल जैसे जैविक खेती का भी बहुत हम देख रहे हैं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जैविक खेती को, तो उस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? आप भी जैविक खेती ही करते
0: हैं? जैविक खेती तो सबसे बढ़िया है, उसमें कोई बीमारी नहीं है लगती, हम जो खा रहे हैं ना ये बाहर की चीज, इसमें कितनी बीमारी लग रही है ना, तो जो हम अपनी जैविक खेती करें तो इंसान स्वस्थ रहे
1: जी। पहले के जमाने में यही था कि जैविक खेती थी, अब रसायनों का बहुत इस्तेमाल हो गया जिससे बहुत सी बीमारियां भी बढ़ रही है।
0: कहां से होगी जब डंगर पालने का राज ही नहीं है, जैविक खाद तभी तो होगी।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने बताया अपना अनुभव कि किस तरह से आपने यहाँ पे गांव में इतना परिवर्तन देखा। और
0: कोई जाने रोड के साधन नहीं था, हम यहाँ से देहरादून तक पैदल जाते थे।
1: अच्छा, मतलब यहाँ से पूरा देहरादून
0: लोगों की खेती करी ना
1: तो
0: रायपुर तक।
1: अभी तो सड़कें हैं तो काफी आपको सुविधा होगी।
0: अब तो घर घर में गाड़ी होगी, परेशानी तो है ही नहीं अब किसी, पैसे चाहिए बस तेल भराने के लिए, अब परेशानी नहीं लोगों।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: हमने तो बहुत कठिनाई करी बाबू पहले से ना,
1: पहले का जीवन था संघर्ष में ही था, और उस संघर्ष से आपने पूरा जीवन अपना जिया और अभी जो देख रहे हैं काफी बदलाव आप देख रहे हैं।
0: कोई बेटी बहू कोई जंगल में बहुत कम जाते नहीं है।
1: हाँ हाँ,
0: तो हम तो जंगल में अपना जीवन अपने को वो करा, वहाँ घास लकड़ी तब जाके अपने डंगर ढोर पाले, अपने बच्चों वो भी करा
1: जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादी जी। चलिए अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर उपस्थित एक और महिला बैठी हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे खेती किसानी में आप देख रहे हैं कि आज के समय में क्या क्या हो रहा है, और पहले जैसे यहाँ पे बासमती काफी फेमस थी, तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अभी किस तरह की खेती यहाँ पर हो रही है?
2: मेरा नाम ममता कोठारे
1: जी। ममता जी बताइए जी, तो आप इस गांव में कब से हैं, आप इस गांव में कब से रह रहे हैं?
2: मेरे शादी के हुए 18-19 साल हो गए।
1: 18-19 साल हो चुके हैं।
2: हाँ जी,
1: तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे खेती में आजकल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है खेती किसानी में?
2: आजकल तो अदरक लगा रखा है
1: जी,
2: जैसे पौ डाल रखे।
1: हाँ जी, अच्छा, और जैसे यहाँ पे पहले बासमती काफी फेमस थी, तो अभी यहाँ पे चावल खेती इस तरह की हो रही है?
2: होती है, थोड़ी अपने अपने लाई करते हैं।
1: करते हैं, अच्छा अच्छा। और पशुपालन का क्या है यहाँ पर, कौन कौन लोग यहाँ पे पशुपालन कर रहे
2: हैं? हाँ, सबके पास है गाय है, एक एक दो दो, थोड़ा थोड़ा अपने लिए दूध भी लगा रखा है। अच्छा, अपने खर्चे के लिए।
1: तो जैसे दूध वगैरह है तो आप वो लोग बेचते भी हैं दूध को, या फिर सिर्फ अपने लिए ही रख पाते?
2: थोड़ा थोड़ा बेचते भी अपने लिए भी है,
1: अपने लिए।
2: हाँ जी,
1: तो आपने बहुत अच्छी जानकारी इस गांव के बारे में दी कि खेती किसानी भी लोग कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी।
2: धन्यवाद।
1: तो किसान साथियों, अभी आपने सुनी ये गांव के लोगों की बातें, उम्मीद है आपने बातों को ध्यान से सुना होगा और आपको बातचीत पसंद आई होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके गांव आएं और आपसे बातचीत करें, तो उसके लिए आपको लिखना होगा हमें पत्र, जिसमें आप हमें बताएंगे आपके गांव का नाम और आपका गांव किस जगह पर है, ये भी आप लिखकर बताएंगे। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है
3: कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 248001 और आप जगत कृषि @gmail.com पर अपने ईमेल्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब देखिए साथियों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, पर जाते जाते एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं साथियों कि युवाओं में नशे का जो चरण है, नशे का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और साथियों, नशा चाहे शराब का हो, तंबाकू का हो, गुटखे का हो या किसी अन्य मादक पदार्थ का, ये धीरे धीरे इंसान के शरीर, मन और भविष्य को खोखला कर देता है। शुरुआत इसकी अक्सर जो है शौक या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को भी कम कर देता है और इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि ये नशे का जो दौर है ये खत्म हो, तो इसके लिए आपको खुद भी ये संकल्प लेना है कि ना तो आप खुद नशा करेंगे और ना ही किसी को नशे के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे कि नशे से कितनी बीमारियां हो सकती है, तो इसको हमें ख़त्म करना है। तो अब इसी संदेश के साथ साथियों, आपकी साथी सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। साथियों, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर शाम के 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़े मी कुसुमलता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकालक दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों के श्रद्धांजलि ले अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनर परिवार वालों के सम्मानित करो। आपातकाल के भारतीय लोकतंत्र इतिहासक काओ अध्याय बता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल नंदागौरा योजना अंतर्गत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलक 4098 पात्र चेलियों के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए हबे सकरक धनराशि ले हस्तांतरित करी। और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर स्नान करो। अब समाचार विस्तारल सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान हत्या दिवस पर आपातकालक दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रही लोगन के श्रद्धांजलि ले अर्पित करी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को कि आपातकाल संविधान पर सिद्ध हमला छी। प्रधानमंत्री को कि यह दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं ले निशान पर रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की 25 जून 1975 के लगाई गो आपातकाल भारतीय लोकतंत्र इतिहासक एक काव अध्याय छी। उन्होंने को की तत्कालीन सरकार सत्ता के बचाणक लीजी नागरिक स्वतंत्रताओं नाश करो, पैसक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाई गो और संविधानक मूल भावना के चोट पहुंचाएगी। संविधान हत्या दिवस पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोकतंत्र सेनानियों और उनर परिवार वालों के सम्मानित करते हुए को की लोकतंत्र सेनानियों के त्याग साहस और संघर्ष के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित है सकी। श्री धामिल को की लोकतंत्र रक्षा के लिए करी गई उनर संघर्ष के हमेशा के याद रखी जाए।
2: जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के महान निर्माताओं ने देश को समर्पित किया था, आपातकाल के दौरान उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने अपनी सच्चा को बचाने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाया, संविधान की गला घोटने का घोर अपराध किया और उस वक्त सारे अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी उस सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। देश की जनता को भय और दमन के वातावरण में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। न्यायपालिका को भी

0: बंधक बना लिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी और क्या था। और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई।
1: हिमालय संरक्षण, स्वच्छता और जिम्मेदार पर्वतारोहणक संदेश के लिए बेर उत्तर खासी पर्वतारोहियों ठुल उपलब्धि हासिल कर है। समुद्र तलवटी करीब 7,075 मीटर उच्च माउंट संतोपा चोटी पर 9 सदस्यीय दलल सफल आरोहण कर तिरंगा फहरा। भयंकर ठंड, बर्फीली तूफानों और शून्य हवेली तापमान जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए टीमल शिखर फतह करो। पर्वतारोही प्रवीण डालाल बता कि 3 हफ्ते ताले चली यो अभियान में दलल कठिन हिमालयी बाटों के पार करते हुए सफलता के हासिल करो।
2: इसमें जो कि अभी माउंट सतोपंतिस गंगोत्री एरिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक और चैलेंजिंग पीक है उसको क्लाइम किया है अल्पाइन स्टाइल में। तो ये हमारा ध्येय क्या था, मेन मकसद था कि क्यों ना हम अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में है इस तरह का एक मैसेज दें हिमालय में कि लोग गंदगी कम करें। तो इसी हिसाब से हमने जो है अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम किया। तो उसके लिए हमने पूरा सामान खुद लेके गए, राशन खुद लेके गए और कम से कम रिसोर्सेज हमने इसको क्लाइम किया। तो ये जो है एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस। हमने गंगोत्री से शुरू किया और जो फाइनली जो हमारा समिट कैंप तक जो प्लान किया हुआ था 10-12 दिन का, बट उसमें बर्फ ज्यादा गिर गई और जिसकी वजह से 6-7 दिन हमको और ज्यादा लग गए उसमें। और फाइनली हमने 18 तारीख को जो है 6:30 बजे जो है पीक को क्लाइम किया और सेफली वापस आए।
1: वे पर्वतारोही आजाद सिंह राणाल बता कि अभियानक दौरान दलक सदस्यों पर्यावरण संरक्षक संदेश के देते हुए क्षेत्र बटी 15 किलो कूड़ के इकट्ठा कर वे उके वापस ला।
3: हमने जो ये एक्सपीडिशन अपना शुरू किया था 2 जून से गंगोत्री से शुरू किया था, जहाँ से गंगोत्री से और समीर तक का जो हमारा ये सफर रहा है ये हमने 3 जो हमने बेस कैंप तक इसमें कैंप लगाए थे। जब समीर करके हम नीचे आए तो जो हमने मुहिम लेके चली थी अपनी स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो उसमें हमने क्या किया 15 kg कूड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क तक लाया।
4: प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: नंदा गौरव योजना के अंतर्गत आज हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला 4098 पात्र चेलों के लाभान्वित करीगो। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल DBT के माध्यम इन चेलियों के बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए हबे सकरक धनराशि ले हस्तांतरित करी। यह अवसर पर उन्होंने बताया कि 2025-26 में प्रदेशक 33,251 पात्र चेलियों के 26 फरवरी 2026 के ही योजना का लाभ दी जा चुकी थी। श्रीमती आर्याल को कि हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला कुछ पात्र चेलियों की आवश्यक औपचारिकताएं एवं जिला स्तरीय समिति दे अनुमोदनक प्रक्रिया बखत पारे पूरी नहीं हो सकी, जय कारण ले उनके उ बखत लाभ नहीं मिल पाई छी। प्रक्रिया पूर्ण होनक बाद आज इन पात्र चेलियों के योजना सहायता राशि DBT के माध्यमल प्रदान करेगी।
5: हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी, अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजा गया है और मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से नंदा गौर योजना का लाभ प्राप्त करते हुए वे बालिकाएं आगे ऊंचे मनोबल के साथ में उच्च शिक्षण में भी अध्ययन कर रही हैं और निश्चित रूप से एक लैंगिक समानता को लेकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस और भी निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
1: निर्जला एकादशी के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने लीजिए मिलो। देशक अलग अलग राज्यों लाखों की संख्या में पहुंची श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करो। विशेष रूप से हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं भारी भीड़ उमड़ रहे, जहां भक्तों माँ गंगा माँ आस्था डुबकी लगाबेर भगवान विष्णु के याद करो। वे आश्रम अखाड़ों में ले निर्जला एकादशी पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनुसार निर्जला एकादशी दिन गंगा स्नान, जल दान और अन्न दान करनल हजार अश्वमेघ यज्ञ समान पुण्य फल मिलू। वे स्नान पर्व के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके सतर्क रहो। सुरक्षा

0: और जो हमारे अंडर 18 के जो बच्चे होते हैं उनका जो निरीक्षण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं उससे रिलेटेड, या उनको जो हमारा जो है प्रोबेशन ऑफिसर और एक पूरा पैराफर्निलिया देख रहा है, तो उनको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए और उनसे इंटरेक्शन भी किया गया। उनकी समस्याओं या उनके जो फ्यूचर प्लान है, उनको बच्चों के जो स्टडीज कर रहे हैं, कई सारी बच्चियाँ स्टडी कर रही है, जो अंडर 18 जो बच्चे हैं एडोलेसेंस वाले वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को समझने की भी कोशिश की और उनकी जो ओवरऑल व्यवस्था है उनको भी मेरे द्वारा देखा गया।
1: पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल जिलक दूरस्थ क्षेत्रों भ्रमण कर बीर दोहर दिन आज धुमाकोट, संगलिया और आसपास का गांव दौरा कर स्वास्थ्य व पेयजल व्यवस्थाओं, आजीविका गतिविधियों और विकास कार्यों के स्थलीय निरीक्षण करो। यो दौरान आयोजित चौपालों में उन्होंने गांव वालों ने सीधे संवाद कर उन्हें समस्याएं सुनी और अनेक मामलों के मौके पर ही समाधानक निर्देश दिए। जिलाधिकारी को की प्रशासनक उद्देश्य केवल कार्यालयों तक सीमित रहनाती बल्कि अंतिम छोर पर बैठी मन की ताले पहुंच बेर उन समस्याओं का समाधान करना छू। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दी कि चौपालों में प्राप्त हर एक शिकायत पर निर्धारित बखत पारे कार्रवाई पक्की करी जाओ, ताकि लोगों के ऊक असली लाभ मिल सको। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकालक दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों रक्षा करण वालों के श्रद्धांजलि ले अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में लोकतंत्र सेनानियों और उनर परिवार वालों के सम्मानित करो। आपातकाल के भारतीय लोकतंत्र इतिहासक काव अध्याय ले बता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल नंदा गौरा योजना अंतर्गत हरिद्वार और उत्तरकाशी जिला 4098 पात्र चेलियनक बैंक खातों में 19 करोड़ रुपए हबी सकरक धनराशि हस्तांतरित ले करी। और निर्जला एकादशी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर स्नान करो। यौक दगड़ी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारक यो अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:40 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनाते हैं ये पहला गीत फिल्म हैदर से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और इस गीत को संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने।

श्रोताओं, आप आपको सुनाते हैं ये अगला गीत मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और सुजैन डी मेलो की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लव आजकल।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर शाम के 7:50 होने को हैं। अब प्रस्तुत है RNU देहरादून का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों, स्थानों और पहलुओं से जो समाज में सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रहे हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां किताबों ने जीवन की दिशा ही बदल दी है। श्रोताओं, मैं हूं रागिनी बिंजोला और आइए शुरू करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के गांव मणिगुह की ये प्रेरक गाथा। श्रोताओं, रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में बसा मणिगुह गांव चौखंबा, सतोपंत और थले सागर जैसी हिमालयी चोटियों के मनोरम दृश्य से घिरा हुआ है। लेकिन मणिगुह की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, बल्कि यहाँ की ज्ञान संस्कृति है। जी हाँ, आज इस गांव में बच्चों और युवाओं को मोबाइल स्क्रीन से अधिक किताबों के साथ समय बिताते देखा जा सकता है और यही कारण है कि मणिगुह को उत्तराखंड का पहला पुस्तकालय गांव कहा जाता है। ये उपलब्धि हमारा गांव घर फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। संस्था ने गांव में पढ़ने लिखने का ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसने शिक्षा को लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया है। इस पहल का केंद्र है मणिगुह सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसे स्थानीय लोग पुस्तक तीर्थ के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, यहाँ नवल किशोर प्रेस द्वारा 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में प्रकाशित दुर्लभ पुस्तकें भी सुरक्षित रखी गई हैं, जो इस पुस्तकालय को एक विशेष पहचान प्रदान करती हैं। श्रोताओं, इससे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, पुस्तकालय गाँव के संस्थापक खुद सुमन मिश्रा बताते हैं कि उनका ये जो मॉडल है वो शिक्षा और स्वरोजगार के समन्वय पर आधारित है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी ये गाथा।
1: हमारी जो पत्नी है उनका नाम बीना नेगी है और उनका गांव जो है वो मणिगुह से 1 किलोमीटर दूर ही है। बांजगुड्डू नाम का एक गांव है जहां पर से वो आती हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उनके पिता को बहुत पहले पलायन करना पड़ा, उनको दिल्ली आना पड़ा। बीना को बहुत दिनों तक ये लगता रहा कि हम उत्तराखंड जाते हैं, वहां की समस्याओं को देखते हैं और बात करते हुए फिर वापस आकर अपने काम में लग जाते हैं। तो हमने देखा कि एक तो प्रॉब्लम यही है कि वहां पर शिक्षा का बुनियादी अभाव है, स्वरोजगार का अभाव है। तो हमने ये जो गाँव है मणिगुह, और यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी नहीं थी, किताबें नहीं थी, 14 किलोमीटर दूर जाकर अगस्त्यमुनि में बच्चों को पढ़ना पड़ता था, कंप्यूटर्स नहीं थे और स्वरोजगार के भी अवसर बिल्कुल नहीं थे
0: जी।
1: तो हमने उसके बाद ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें शिक्षा और स्वरोजगार को एक साथ मिलाकर काम किया जाए। इस तरह से हमने फिर लाइब्रेरी विलेज की, जो पुस्तकालय गाँव की परिकल्पना को सोचा, क्योंकि जब आप किसी चीज को लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बना देते हैं तो लोग अपने उस पहचान को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरणार्थ जैसे मेरा नाम सुमन मिश्रा है, तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं इस नाम की गरिमा को बनाए रखूं। उसी तरह से हमने सोचा कि जब पुस्तकालय गांव एक नाम पड़ जाएगा उस गांव का, तो लोग इस गांव की गरिमा को बचाने के लिए भी लोग पढ़ेंगे। हमने कुछ मॉडल्स पे ध्यान

0: बन दिया तो ये देखा कि सिर्फ लाइब्रेरी से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी तो होती है, बच्चे नहीं आते, वहां पर लाइब्रेरियन नहीं होता। तो हमने फिर इसको स्वरोजगार से जोड़ा और उसके बाद लाइब्रेरी विलेज की परिकल्पना ये साकार हुई और 26 जनवरी 2023 को इस गाँव का उद्घाटन हुआ।
1: श्रोताओं, पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ प्रवेश पूरी तरह निशुल्क है। वर्ष भर खुला रहने वाला ये केंद्र स्कूली छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, शिक्षा से पुनः जुड़ने वाली महिलाओं और ज्ञान के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। श्रोताओं, मणि गुह की कहानी केवल एक पुस्तकालय तक सीमित नहीं है, यहाँ किताबों को लोगों तक पहुँचाने का तरीका भी अनोखा है।
0: तो पुस्तकालय गांव बनाने के लिए हमने इसमें 8 पुस्तक मंदिरों की स्थापना की। ये पुस्तक मंदिर छोटे छोटे मंदिरों की शक्ल के छोटे छोटे रीडिंग स्पॉट हैं, जिसके अंदर हम किताबें रखते हैं। तो लाइब्रेरी को डिसेंट्रलाइज करने का आइडिया हमारा था, क्योंकि जो मणिगु गांव है वो अलग अलग क्लस्टर्स में बटा हुआ है। मणिगु ग्राम सभा में छोटे छोटे गांव हैं जो काफी काफी दूरी पे हैं, करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे और गांव बसे हुए हैं। तो उसमें खालियू है, खमोली है, सियाल डोभा है, प्रताप नगर है, तो इस तरह के गांव वहां पर बसे हुए हैं। तो हमने 8 ऐसे गांवों में हमने पुस्तक मंदिरों की स्थापना की और वहां पर किताबें रखी, और मंदिरों को लेकर जो वर्जनाएं थी वो सारी वर्जनाएं तोड़ने का प्रयास किया हमने। कोशिश की कि सारे पुस्तक मंदिरों की चाबी जो है वहां की जो लड़कियों के हाथ में होती है, और बड़ा सुंदर दृश्य होता है कि गांव का मंदिर है, उसके बगल में पुस्तक मंदिर रखा हुआ है। सुबह सुबह जो पुजारी है वो आकर मंदिर को खोलता है और सुबह सुबह हमारी लड़कियां जाके पुस्तक मंदिर खोलती हैं। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य होता है गांव में।
1: ये पुस्तक मंदिर पगडंडियों के किनारे, मंदिरों के पास और सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए हैं। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ समय निकाल कर पुस्तक पढ़ सकता है। इस पहल ने पढ़ने को किसी भवन तक सीमित न रखकर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। संस्था अब इस विचार को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कार्तिक स्वामी मंदिर तक जाने वाले मार्ग को ज्ञान मार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
0: हमने कोशिश की कि पर्यटन भी वहां पर विकसित हो, तो इसके लिए कार्तिक स्वामी जो मंदिर है जो बड़ा फेमस है, कार्तिक स्वामी का जो एक वैकल्पिक मार्ग मणिगु से होकर जाता है, तो हमने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग की तरह डेवलप करने का प्रयास किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भविष्य में इस मार्ग पर किताबें और चीजें थोड़ी सी क्रिएट करके, उनका जो मेन मार्ग है वो तो कनक चौरी से होकर जाता है, लेकिन ये जो मार्ग है ये बड़ा सुंदर है। इसके बीच में बुग्याल टप्पड़ जो होते हैं टप्पड़ मिलते हैं और बहुत बहुत सुंदर बायोडायवर्सिटी है इस पूरे रास्ते में। तो इस रास्ते से अगर ये यात्रा शुरू होती है, कार्तिक स्वामी की वैकल्पिक ट्रैकिंग शुरू होती है, तो इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र का विकास भी होगा और यहाँ पर रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत विकसित होंगी।
1: श्रोताओं, हर वर्ष यहाँ गांव घर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 2 दिनों तक चलने वाला ये सांस्कृतिक उत्सव अब अपने 3 सफल संस्करणों के बाद एक महत्वपूर्ण बौद्धिक मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। इस महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रोफेसर, लेखक, कवि, रंगकर्मी, नर्तक, गायक और विद्वान भाग लेने पहुंचते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस गांव में विचारों, साहित्य, कला और संस्कृति का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जहां ज्ञान और रचनात्मकता का उत्सव सामुदायिक भागीदारी के साथ मनाया जाता है। इस आयोजन की विशेषता ये है कि यहां ग्रामीण समुदाय सीधे विद्वानों और कलाकारों से संवाद करता है, साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व दिया जाता है। इस तरह ये महोत्सव गांव और शहर, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है। पढ़ने की संस्कृति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए फाउंडेशन नियमित रूप से बुक मैराथन का आयोजन भी करता है।
0: हमने गांव में पहली बार पुस्तक मैराथन करवाया और पिरूल वर्कशॉप करवाई, जिसमें जानी मानी पिरूल हस्तशिल्पकार मंजू आर शाह जी गांव में आई और वो 1 सप्ताह तक रहकर उन्होंने गांव की औरतों को पिरूल से राखियां बनाने और बहुत सारे चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी। फिर हमने उन राखियों को देश भर में लोगों तक भेजा, जिसमें बड़े बड़े फिल्मकार और जो प्रोफेसर्स हैं, राइटर्स हैं, इन सब के पास वो राखियां पहुंची और सबने उसको बहुत सराहा।
1: इन सभी प्रयासों ने मणिगु को केवल एक गांव नहीं बल्कि ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के जीवंत केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ये पहल सीधे तौर पर उस धारणा को चुनौती देती है कि शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र केवल

0: शहर ही हो सकते हैं।
1: 4,000 किताबों से जो हमारा सफर शुरू हुआ था वो अभी 22,000 किताबों तक पहुंच चुका है,
0: जी
1: और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हर घर में एक छोटा पुस्तकालय हो और इस गांव को एक आदर्श गांव बना के यहाँ पर पर्यटन और बाकी चीजें, क्योंकि ये जो मॉडल है ये महाराष्ट्र का एक गांव है, पुस्तकांचा गांव, किताबों का गांव कहा जाता है, और उसका पूरा मॉडल यही है। लेकिन वहां पर बस अंतर यही है कि सिर्फ मराठी में किताबें हैं, हमारे यहाँ हर भाषा में किताबें हैं। हमारे यहाँ गुजराती, मराठी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, कुमाऊनी, गढ़वाली, सब में किताबें आपको मिलेंगी। इवन उर्दू फारसी में भी किताबें मिलेंगी, हमारे यहाँ मैनुस्क्रिप्ट्स मिलेंगे, हमारे यहाँ उत्तराखंड जन आंदोलन की पेपर कटिंग्स बहुत रेयर हैं वो मिलेंगी। तो ये सारी किताबें, मतलब हमारा मकसद यही था कि अगर गांव के बच्चे शहर जा सकते हैं तो शहर के बच्चे भी गांव आ सकते हैं। अगर हम एक ऐसी लाइब्रेरी बनाएं जहाँ पर की सारी यूनिक चीजें हों, ऐसी चीजें हों जो कहीं और नहीं मिलती, तो शहर के बच्चे भी गांव आ सकते हैं, और ये अपेक्षाकृत ज्यादा सस्ता पड़ेगा और ज्यादा अच्छा भी है कि शहर गांव की तरफ लौटे।
0: मणि गुह ने साबित किया कि यदि इच्छा शक्ति और सामुदायिक सहयोग हो तो दूरस्थ पहाड़ी गांव भी ज्ञान के नए आयाम गढ़ सकते हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम उम्मीद की किरण में रागिनी बिंजोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आपने सुना आरएनओ देहरादून का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण, आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर रीता झा की ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर ये बातचीत।
3: आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता झा को। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर रीता झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। ओरल हाइजीन है क्या?
4: ओरल हाइजीन मतलब आपका सारा मुंह, मुंह में आपके दांत आते हैं, मसूड़ा आता है, जीव आता है, सलाइवा आता है, उन सब की साफ सफाई और उन सबको स्वस्थ रखने को ओरल हाइजीन कहते हैं।
3: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन से हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है?
4: ओरल हाइजीन से हमारा स्वास्थ्य एकदम जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं। तो आपको अपने मुंह का और ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपके हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो, कहीं ना कहीं डायबिटीज भी इससे रिलेटेड है।
3: डॉक्टर रीता, दांतों की या ओरल हाइजीन की बात करें तो इसको किस तरह से सही बना के रखा जा सकता है?
4: देखिए, ओरल हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें कम से कम, खाने में ज्यादा मीठे चीज ना खाया करें, पानी खूब पीजिए और डेंटल फ्लॉस का यूज किया कीजिए, अपने जीभ की सफाई किया कीजिए, और खाने पीने में ज्यादा जो आजकल बच्चे वगैरह खाते हैं कुरकुरे, चिप्स, वो सब कम खाया करिए, जंक फूड्स कम खाना चाहिए और हेल्दी फूड्स पे ज्यादा आप जोर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
3: डॉक्टर रीता झा, अगर किसी की ओरल हाइजीन खराब है तो कैसे पता चलेगा?
4: देखिए, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कैविटी होना, दांतों में झंझनाहट होना, ये सब लक्षण होते हैं कि आपका ओरल हाइजीन खराब है।
3: कुछ कारण भी होते हैं ओरल हाइजीन खराब होने के?
4: अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन खराब होगा, मतलब आपको कैविटीज अगर होगी तो आपके दांतों में दर्द होगा, और आप दांतों में दर्द होगा, झंझनाहट होगा। अगर मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो ब्लीडिंग होगी, मसूड़ों में सूजन होगी, इतने बार गालों में भी सूजन आ जाता है क्योंकि दांतों में कैविटीज होती है, उससे एब्सेस बन जाता है, पस बन जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन ठीक रहेगा।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मुंह से बदबू आती है, तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे मुंह से बदबू ना आए?
4: देखिए, बदबू आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में प्लाग है, मतलब पायरिया जिसको कहते हैं आम भाषा में, पायरिया मेन कारण है जिसकी वजह से बदबू आती है। कितने बार आपको अगर पेट में भी दिक्कत है तो आपको मुंह में बदबू आ सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया उसकी वजह से भी बदबू आती है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मुंह से बदबू आती है तो आप अपने डेंटिस्ट डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपके दांतों की सफाई करेंगे तो आपके मुंह से बदबू फिर नहीं आएगी।
3: आपने कैविटी की भी बात की थी।
4: हाँ जी,
3: क्या वजह है हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है?
4: कैविटी देखिए, हमारा जो दांत है वो तीन परतों में बना होता है। एक होता है एनामल, फिर डेंटिन, फिर पल्प। एनामल हमारा बाहरी परत है। कितनी बार क्या होता है, जैसे हमारा सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, मतलब 6.2 to 7.6 के आसपास का पीएच होता है उनका। पर जब पीएच कम होता है तो एनामल हट जाता है, तो जिसकी वजह से हमें कैविटी हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, खाने में जंक ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो ये हमारे एनामल को इरोड करते हैं और हमें कैविटी होने के चांसेस होते हैं। प्लस बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे एनामल को इरोड करते हैं और उन पेशेंट्स में ज्यादा हो सकता है कैविटीज। तो बेसिकली आपको अपना पानी बहुत ज्यादा पीजिए, दांतों को ब्रश करिए 2 टाइम कम से कम, तो इससे आपके कैविटीज कम होंगे। और शुगरी फूड्स कम खाइए, मीठा, और स्पेशली जो दांत में चिपकते हैं, जंक फूड तो बहुत ही कम कर दें। जैसे आजकल बेसिकली बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो कैविटीज बहुत हो रही है और दांत के प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं क्योंकि वो जंक बहुत खाते हैं। तो जंक फूड को जितना कंट्रोल करिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपके दांतों में कैविटीज कम होगी।
3: डॉक्टर रीता जी, आपने मसूड़ों में खून आने की बात की थी।
4: हाँ जी,
3: क्या वजह है मसूड़ों में खून आने के पीछे?
4: मसूड़ों में खून आने की वजह है कि मसूड़ों में मैल जम जाता है, जिसको हम अगर डेंटल इसमें गए तो उसको प्लाक कहा जाता है, प्लाक और कैलकुलस। धीरे धीरे वो, जैसे प्लाक जो है वो मसूड़ों के अंदर जाने लगता है और वो मसूड़े ढीले करता है, जिसके वजह से मसूड़ों में खून आता है।
3: क्या करें हम ऐसा ताकि खून है वो बंद हो जाए?
4: आप अपने दांतों की सफाई 6 महीने में एक बार कराइए। खाने में आप विटामिन सी ज्यादा लीजिए, आप थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाइए, एप्पल भी खा सकते हैं। मतलब खान पान का भी अगर आप ध्यान रखोगे ना तो उससे आप गम स्ट्रांग होंगे। अगर आप अपने गम्स को स्ट्रांग बनाओगे तो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स कम होंगे।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है ओरल हाइजीन सही न होने के कारण, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो मसूड़े हैं उनमें सूजन न आए?
4: देखिए, मसूड़ों में सूजन आने के बहुत कारण हो सकते हैं। कितनी बार आपकी कुछ मेडिसिंस चलती हैं, एपिलेप्सी वगैरह, उसकी वजह से भी मसूड़ों में सूजन आता है, ठीक है। पर मेन कारण है कि मसूड़ों में गंदगी जमा होना, जिसको आप पायरिया कहते हो आम भाषा में। जब लोगों को पायरिया होता है तब ज्यादातर मसूड़ों में सूजन आता है, मेन कॉज हम अगर डेंटल मान के चले तो।
3: डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रश करने की बात की थी, कम से कम 2 बार ब्रश करें, कब करें ब्रश 2 बार?
4: देखिए, सुबह 1 बार और 1 बार रात को सोने से पहले। और ब्रश जो आप यूज करोगे वो हार्ड ब्रश यूज मत करिए और दांतों पे ब्रश को रगड़िए मत, हल्के हाथों से घुमा घुमा के करिए। अगर आप ब्रश को ज्यादा जोर से दांतों पे रगड़ते भी हो तो भी आपके दांत की परत हट जाती है और फिर आपको झंझनाहट की दिक्कत होती है। सेकेंडली, आप जो ब्रश यूज करते हो वो सॉफ्ट ब्रश यूज करो, हार्ड ब्रश यूज मत करो। और ब्रश को भी आप 3 से 4 महीने में एक बार बदलो। प्लस आप डेंटल फ्लॉस का यूज करो ताकि 2 दांत के बीच में भी आप दांतों की सफाई कर सको।
3: डॉक्टर साहब, क्या ब्रश करने का भी कोई तरीका होता है? कैसे करना है, गोल गोल घुमा के करना है?
4: अब 45 डिग्री पे गोल गोल घुमा के धीरे धीरे करिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको आधे घंटे तक ब्रश करना है, 3 से 4 मिनट काफी है। पर हल्के हाथ से घुमा घुमा के, ये नहीं कि आप सीधा सीधा जोर जोर से दांतों पे रगड़ रहे हो, उस वो आपको नुकसान देता है।
3: टूथपेस्ट कोई भी ले सकते हैं?
4: हाँ, अगर आप फ्लोराइड रिलेटेड टूथपेस्ट लोगे तो ज्यादा बेटर है, पर टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो कोई भी। पर सेंसिटिव टूथपेस्ट आप नॉर्मल टूथपेस्ट मत करिए। एड्स देखिए, कितनी बार ऐसा होता है ना, आपने सेंसोडाइन यूज कर लिया, अगर आपको झंझनाहट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सेंसिटिव टूथपेस्ट मत यूज करो।
3: जो लोग डॉक्टर रीता जी सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो यूज कर रहे हैं तो कितने समय तक करें?
4: पेस्ट को आप यूज कर सकते हो जब तक आपको झंझनाहट की दिक्कत खत्म ना हो जाए, पर अगर एक बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आप यूज मत करिए।
3: डॉक्टर रीता जी, डेंटल फ्लॉस की बात आपने की थी, डेंटल फ्लॉस को यूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं क्या?
4: हाँ जी, वो एक धागा टाइप का होता है, आप दोनों हाथों से इसे पकड़िए और 2 दांत के बीच में लेके उसको ऊपर नीचे कीजिए। उससे आपके दांतों के बीच में जो भी डेब्रीज फंस जाता है वो निकल जाता है। तो कितनी बार क्या होता है ना, 2 दांतों के बीच में हो जाती है, उसका मेन कॉज ये होता है कि वहाँ पे खाना फंसा रह गया, आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें रेशे हैं, तो वो फंसा रह जाता है, तो बहुत बार ब्रशिंग से वो नहीं निकलता है। तो आप डेंटल फ्लॉस का यूज रोज करिए। प्लस आप पानी बहुत पीजिए, जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा है, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है।
3: डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि डेंटल फ्लॉस का यूज करने से हमारे जो दांत है उनके बीच में गैप अगर नहीं है तो भी बन जाएगा, कितना सच है ये?
4: नहीं, ये एक मिथ है। डेंटल फ्लॉस से आपको कभी भी गैप नहीं बनता है। कितनी बार क्या होता है जो आप पायरिया समझते हो, उसमें क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत सारे कचरा मतलब हार्ड कोट आ जाते हैं जिसको हम प्लाक कहते हैं। जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो ये दो दांत के बीच का स्पेस भी लेता है
3: जी,
4: और गम्स को भी बहुत सूजन प्रोवाइड करता है
3: जी,
4: तो उसके वजह से आता है। कितने बार आपको एज के साथ भी आपके दांतों के बीच में गैप आता है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से आता है, फ्लॉस की वजह से कभी गैप नहीं आता।
3: डॉक्टर साहब, क्या ओरल हाइजीन को बनाए रखने में माउथ वॉश होता है, उसका भी कुछ
4: हाँ
3: यूज है?
4: आप माउथ वॉश यूज करिए। मैंने अभी आपको बताया ना कितने बार क्या होता है ना, जो डेब्रीज होते हैं दांतों के बीच में फंसे रहते हैं तो आप ब्रश से नहीं निकाल पाते हो, तो आप अच्छे से जोर से कुल्ला करोगे तो उससे आपको फायदा होगा। प्लस उसमें फ्लोराइड और बहुत सारे ऐसे चीज होती है जो आपको मदद करता है, वो
3: जी
4: मेडिकेटेड जो माउथवॉश होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए।
3: डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो होते हैं तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला इस तरह की तमाम चीजें खाते हैं, क्या इनसे भी हमारी ओरल हाइजीन प्रभावित होती है?
4: हाँ जी, ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है, क्योंकि ये एक तो वो मसूड़े में उसे रखते हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से आपके गालों में भी प्रॉब्लम होगा, और उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सलाइवा के साथ मिलके आपके शरीर के अंदर जा रहा है, सलाइवा से बॉडी में मतलब खून में जाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या सब कुछ आ सकता है। ओरल कैंसर का मेन कॉज यही है, तो ये तंबाकू और ये सब जो भी पान मसाला है वो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से।
3: डॉक्टर रीता झा, बच्चों में जो ओरल हाइजीन की अच्छी आदतें हैं, कोई भी माता पिता या गार्जियन है वो कैसे विकसित कर सकता है?
4: देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, जब वो मदर्स फीड पे रहता है, तब आप वाइप लेके उसके गम्स को साफ कर सकते हो। जब उसका पहला दांत आता है तब से आप उसको हल्के से ब्रश करो, जो आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे दांत आते हैं और जब वो खुद करने लायक हो केपेबल हो जाता है तो कम से कम 6 से 7 साल तक माँ के गाइडेंस में ब्रश करना चाहिए। और जितना जल्दी आप ब्रशिंग की हैबिट डलवाओगे बच्चों में उतना अच्छा है, और कम से कम 2 बार। सेकेंडली, बच्चों को आप चॉकलेट स्वीट्स जो भी है वो जितना कम दें उतना अच्छा है, पर अगर आप खिलाते हो तो कम से कम उसके बाद कुल्ला जरूर कराइए और रात को ब्रश करवाइए। और जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बॉटल लेके सो जाते हैं, उसमें चीनी होता है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो कभी भी बॉटल फीडिंग तो वैसे भी मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केरीज का या छोटे बच्चों में आप देखोगे जो सामने के दांत होते हैं बड़े काले काले से दिखाई देते हैं, तो उसका मेन कॉज यही होता है। बॉटल फीडिंग अगर है भी तो रात को कभी ना कराएं, कोशिश करें कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, पर अगर कितनी बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आपको बॉटल देना पड़ता है तो नाइट फीडिंग बॉटल से तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए।
3: डॉक्टर झा, बहुत से लोग अपनी जीभ साफ नहीं करते, जीभ साफ होने की कितनी भूमिका है ओरल हाइजीन को बनाए रखने में?
4: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टंग क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप याद करिएगा तो पुराने जमाने में लोग करते ही थे 2 बार, अगर आपने ब्रश किया है तो आप टंग क्लीनिंग भी करिए, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत बैक्टीरिया जमा होते हैं, तो जब आप उसको साफ करोगे तो वो सारे निकल जाते हैं। मेंटेन मतलब वो भी आपका एक कारण हो सकता है कि आपके मुंह से बदबू आए।
3: डॉक्टर रीता जी, क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको हम अपने खाने में शामिल कर लें और उनकी वजह से हमारा जो ओरल हाइजीन है अच्छा बना रहे?
4: आप लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, दाल, जिसमें मान लीजिए कैल्शियम या फॉस्फोरस ज्यादा है, वो अगर आप लोगे उससे क्या होगा, आपका एनामल बनेगा
3: जी।
4: जैसे आपके ये चेरीज हो गए, उसमें मैलिक एसिड होता है, वे आपके गम्स के लिए अच्छा होता है। ग्रीन टी हो गई, उसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, वो भी आपके गम्स को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है
3: जी।
4: तो बेसिकली अगर आप नॉन वेज खाते हो तो ये चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब आप लोगे तो फिर कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जो कि आपके दांत के बाहरी परत को मजबूत करने में बहुत मदद करता है।
3: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन को लेकर जो एक डेंटिस्ट हैं उनसे हमें कितने समय बाद मिलते रहना चाहिए?
4: हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। उससे ये होगा कि आपके डेंटिस्ट को पता चलेगा कि आपके दांतों में प्रॉब्लम क्या हो रही है
3: जी।
4: बेसिकली तो लोग जागरूक हुए हैं तभी जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पर साल में एक बार हर किसी को अपने दांतों की सफाई कराना चाहिए। उससे आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा और दांत भी ठीक रहेंगे। और 6 महीने से साल भर में एक बार तो डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आए। मतलब अगर कैविटी हो रही है तो उस वक्त अगर वो भर देंगे तो दांत में RCT नहीं कराना पड़ेगा।
3: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ घरेलू नुस्खों का चलन बहुत है, हल्दी वाला पानी से कुल्ला कर लो, नमक वाला पानी से कुल्ला कर लो, या नमक वाला मंजन कर लो, इस तरह की तमाम चीजें हैं, ये कितनी सुरक्षित है ओरल हाइजीन के लिए?
4: देखिए, गरारे तो ठीक है, अगर आप गरारे करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लौंग है, लौंग का क्लोविक एसिड, वो भी आपके दांतों के लिए सही है. पर इससे ज्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि हल्दी वल्दी आप यूज करें. हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो घाव वगैरह में आप लगा सकते हो, पर मुंह में उसका मेन कोई रोल नहीं है.
3: क्या उसकी वजह से हमारे दांत और पीले हो सकते हैं?
4: अगर वो देखिए, आजकल हल्दी कितना सिंथेटिक है या कितना नेचुरल है वो तो हम नहीं कह सकते ना, तो वो इफेक्ट कर सकता है.
3: डॉक्टर रीता जी, अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, ओरल हाइजीन में अगर कोई ओवर द

0: काउंटर ड्रग्स या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है, कितना सुरक्षित है?
1: देखिए, अगर ओरल उसमें लेता है और अगर ओवर द काउंटर अगर फार्मासिस्ट है दुकान पे, तो
0: जी
1: फिर भी वो जो दवाइयाँ देता है ठीक ही देता है, क्योंकि मेनली आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। पर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई एलर्जी है किसी दवाई से
0: जी
1: तो वो आपको रिएक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और आप सिर्फ जाते हो वहां पे, बोलते हो मुझे दर्द हो रहा है, आप दवाई दे दो, या
0: जी
1: मसूड़े से खून आ रहा है। पर जब तक उसे कॉज नहीं पता होगा और आप दवाई लोगे, तो बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको फायदेमंद होगा, कभी नुकसानदायक भी हो सकता है।
0: डॉक्टर रीता जी, कार्यक्रम के समापन में कोई तीन ऐसे टिप्स ओरल हाइजीन के लिए हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें?
1: आप दो समय ब्रश जरूर करें, पानी बहुत ज्यादा पिए, और शुगर जितना कम इंटेक करेंगे आपके दांतों के लिए उतना ही अच्छा है।
0: डॉक्टर रीता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत डॉक्टर रीता झा की ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर बातचीत। FM 106.5 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं, आकाशवाणी देहरादून से। रात के 8:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों के गाए गीत आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, रात के 8:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं निखिल डिसूजा और शेफाली के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है कॉकटेल।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
3: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विज्ञान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
6: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की

0: Aishwani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on a YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight. FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनाते हैं फिल्म साथियां का ये प्यारा सा गीत, साधना सरगम और मुर्तजा कादिर की आवाज़ों में।

0: Classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। तो आइए कार्यक्रम को जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं ये अगला प्यारा सा गीत सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

0: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी।

FM 100.5 MHz पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। रात के 10 बजे हैं और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, मैं वर्षा पंत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम वत्सल फरमाइश में। इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करते हैं आपके पसंदीदा गीत, आपकी पसंद और आपकी भावनाओं से जुड़े मधुर संगीत के रंग। तो जल्दी से आप हमें अपना नाम, अपने पते और अपने पसंदीदा गीत के साथ लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 7088000731, यानी कि 7088000731, और जुड़ जाइए हमारे साथ संगीत की इस सुरीली यात्रा में।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में ये पहली फरमाइश हमें मिली है सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से विनय मोहन खानवर, माफ़ करना, विनय मोहन खारवर, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी की तरफ से। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है राजनगर कांति निकेतन, कुश्वेश्वर कांति गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता और एस बाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, कुसुम और रूपा इलाहाबादी की तरफ से। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सौतन की बेटी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिश खातून की। नाज पैलेस, अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी की। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है अनपढ़ और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर जी ने।

0: The UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university, 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला मैसेज हमें मिला है मलियाना सरधना मेरठ से। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और सरधना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन की। इसके साथ ही आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा की। अगली फरमाइश हमें मिली है लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना की। अगला मैसेज गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आंधी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है वाइट फील्ड बेंगलुरु से। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल की। इसके साथ ही गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना की। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा। इसके साथ ही गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और इस गीत को गाया है मुकेश ने।

श्रोताओं, अगला मैसेज हमें मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। साथ ही लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है करणवीर हाउस भुचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से, परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है ग्राम पंजौनिया जिला जलौन उत्तर प्रदेश से, सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया की। अगला मैसेज हमें मिला है सदर बाजार कुरावती से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेचा, पूनम गंगनेचा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की। अगला मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी की और नाविया सिद्दीकी की। इसके साथ ही शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान की। तो आइए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है बाजपुर से गजेंद्र, ज्योति, रुद्रांश और भव्या की। साथ ही गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, बिल्लू नायक, मधु नायक की। साथ ही जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसके साथ ही अगला मैसेज हमें मिला है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, टूशी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश शाव, बसंत लाल शाव, हीरा मोती, पन्ना लाल शाव। इसके साथ ही कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमांश की। तो आए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है कन्यादान और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हैं, शामिल करते हैं ये अगली फरमाइश जो हम तक पहुंची है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की। साथ ही लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा की। अगला मैसेज हमें मिला है आकोट से विनायक वेंडे, श्रीमती मंगला वेंडे, विजय शुभम वेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबरेवी। इसके साथ ही रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है ये लांडू काठा गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना, एमी और बिल्लू की। अगली फरमाइश हम शामिल करें जो हम तक पहुंची है गांव राय खाना जिला भटिंडा पंजाब से परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, रानो दीपो, वीरपाल कुलदीप और कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान फरीन और फारिया ताहिरा की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति पौरुष की। अगला मैसेज हमें मिला है सहावर रोड गंजडुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शामसुल कमल राही की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी की। अगला मैसेज हमें मिला है कृष्ण की नगरी मथुरा से सांबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और

0: Programs at UPES, India's AI First University, 25% Uttarakhand Domicile Scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: Join the UPES classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI First University. 25% Uttarakhand Domicile Scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
2: अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। साथ ही परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। सिद्धपुरा टाउन से ये मैसेज हमें भेजा है ज़ुबैर अली खान, सबिया ज़ुबैर और अंजुमन खान ने। मनाली हिमाचल से ये मैसेज हमें मिला है हर्ष, विनय, विनीत और रोजेस की तरफ से। साथ ही चंडीगढ़ से सैफाली, सैफी, डेविस, विमला और सतीश अनीजा ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है शाही मार्केट शोहरा, जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुँचा है संग्राम हिंगड़ी अलोट, जिला रतलाम, एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ की। अगला मैसेज नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नहावकर और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपेन तायड़े, नारायण इंगले, आशीष मुरहेरकर की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी, आयशा, नदीम, अजीम, शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी और करुला। मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, सोहेब खान, सिंधौली बरेली से जिशान वारसी की। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: Classroom built with industry leaders like Google, Microsoft, Harvard, OpenAI, Salesforce, and more. Choose from 100 plus AI integrated programs at UPES, India's AI first university. 25% Uttarakhand domicile scholarship. Applications close 30th June. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है बलबीर रोड देहरादून से लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध की, साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल और गीतिका खोरवाल की। अगला मैसेज हमें मिला है नाहन हिमाचल से राजकुमार चौहान, नीलम चौहान, मनु चौहान, अंकित चौहान और स्वस्तिका चौहान की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुँचा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष की। अगला मैसेज हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने की। अगला मैसेज हमें मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी और हाशमी परिवार की। अगला मैसेज हमें मिला है बस स्टैंड फबरा चौक बाजार गया रोड छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती और हरिराम दशरथ, श्रीमती शीला, यशोदा और करण काजल की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पी एस नवणकर। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आह, जिसको गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।
2: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
3: क्या
2: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
3: सपनों में देखा होगा
2: जी, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन खान, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा और आयजा अनम की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक मिली है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रुचिका रामेकर की। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है अनुपमा और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
4: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
3: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bengababan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Centre in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 a.m. IST. And that's the end of this news bulletin.